0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बनो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गुरुदेव?
1: अवश्य। सदा सुहागन रहो। अब जल्दी से भोजन ले आओ कन्या, हम साधु लोग और बाट नहीं देख सकते।
0: बस थोड़ी देर और बैठिए गुरुदेव, वो आते ही होंगे।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति सिन्हा MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है सहनशीलता सफलता का आधार है। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि किसी भी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहनशीलता का दिव्य गुण धारण करना अति उपयोगी तथा आवश्यक है। विश्व इतिहास बताता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति, विभिन्न धर्मों की स्थापना, महान प्राप्तियों आदि में आने वाली कठिनाइयों, कष्टों, विघ्नों, रुकावटों आदि को सहन करके ही महान सफलताएं प्राप्त हो सकी है। महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, सुकरात व मीरा आदि ने विरोधियों द्वारा डाले गए विघ्नों, अत्याचारों, अपमान आदि को सहन करके ही अपने अपने लक्ष्य को हासिल किया। कुछ ही को तो अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी शुभ भावना व एक रस अवस्था होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमाइया सबसे महान व सर्वश्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त बने हैं, तो हमें अपेक्षाकृत अधिक विघ्नों, कष्टों, विरोध, अपमान आदि को सहन करके ही आगे बढ़ना है और हमें सहन करने की मानसिक स्थिति विकसित करनी चाहिए। हम स्वयं के 5 विकारों पर जीत पाकर निर्विकारी बनते हैं, फिर निराकार परमात्मा का सरल ज्ञान तथा सहज राजयोग दूसरों को सिखाते हैं। ये नया निराला, अलौकिक, अनुपम तथा सामान्य सोच से परे का ज्ञान होने के कारण परिवार व समाज इसका डट कर विरोध करते हैं, परंतु शिव परमात्मा के सहयोग के चलते हमें इतना कष्ट महसूस नहीं होता कि हम सहन ना कर सके। वैसे भी अल्पकाल की सुख शांति के लिए हम भक्ति के कष्टों, लौकिक परिवार व समाज के दुखदायी बंधनों आदि को भी सहन करते ही हैं। भले ही दुखी होकर करें, परमात्मा पिता ने सहनशीलता का वास्तविक अर्थ बताया है कि जब दुख, अशांति, तनाव, क्रोध आदि पैदा करने वाली विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति दुखी, अशांत न हो तथा सर्व के प्रति अपनी शुभ भावना व एक रस अवस्था बनाकर रखे, हाँ, तभी वह सहनशील कहलाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि सहनशीलता के क्या लाभ है, से लाभ भी है। जैसे शक्ति, हमें कष्टों को सहन करते देख अन्य लोगों की शुभ भावना व कामनाएं, सहानुभूति व सहयोग प्राप्त हो सकता है। हमारे सत्मार्ग को देख अन्य लोग हमें मन, वचन व कर्म से सहायता भी देते हैं। जैसा कि यज्ञ की स्थापना में हम देखते हैं होता रहा है कि इससे हमारी आत्मशक्ति, आत्मबल व हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जो हमें सफलता प्राप्त कराता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसके एक और लाभ है पवित्रता। सहन करने से हमारा जो है, हमारी जो सहनशीलता है अर्थात पवित्रता भी बढ़ती है। यदि कोई हमसे घृणा करता है, हमारे प्रति अपशब्द बोलता है, हमारी आलोचना आदि करता है, और यदि हम सहन नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में अपमान, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार उत्पन्न होंगे ही होंगे। इन सब को सहन करके हम अपनी आत्मा को निर्विकारी बनाकर अपनी पवित्रता अर्थात शील को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है सहनशीलता ही सफलता का आधार है। एक तरफ हम देखते हैं कि संतुष्टता तथा प्रसन्नता भी होनी चाहिए। परस्पर बातचीत में यदि किसी ने हमारा भद्दा मजाक या अपमान कर दिया तो तुरंत हमारे अंदर असंतुष्टता तथा दुख की महसूसता आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम सहनशीलता का गुण धारण करके यह समझे कि उस व्यक्ति का ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, ऐसे पार्ट के लिए वह दया व रहम का पात्र है। इस प्रकार ज्ञान युक्त सहनशीलता के आधार पर अपने दुख व असंतुष्टता की फीलिंग को समाप्त करते हुए हम सदा संतुष्ट व प्रसन्नचित रह सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि इसके लिए शांति भी बहुत जरूरी है। सहनशीलता को अगर इसका गुण अगर आने से क्यों क्या रूपी संकल्प समाप्त होते जाते हैं तथा मन शांत रहने लगता है। शांति आने से सहन करने की शक्ति अपने आप वृद्धि को पाती रहती है। सहन शक्ति आने से समाने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति व अंतर्मुखता आदि सभी शक्तियां अपने आप आ जाती है। इस प्रकार सहनशील आत्मा शीघ्र ही मास्टर सर्वशक्तिमान बन बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकती है। एक और हम देखते हैं सहनशीलता कैसे प्राप्त करें, ये भी हमें देखना है। तो इसके लिए एक मुख्य आधार है अमृत वेला। अमृत वेला यानी कि एकदम सुबह का जो समय होता है वो होता है अमृत वेला। सहनशीलता के महत्व को ध्यान में रखते हुए अमृत वेले में शिव बाबा से इस गुण की दिव्य किरणों को आत्मा में महसूसता के साथ भरते रहे। जब तक कि आत्मा इसका स्वरूप न बन जाए, इसके साथ संकल्प भी ले कि आज सारा दिन सहनशील बनकर रहना है और सायंकाल में बैठकर चार्ट में चेक भी करें कि कितनी सफलता मिली। सर्वशक्तिमान आत्मा बाप की याद से ही सहन शक्ति व कोई भी शक्ति आत्मा को प्राप्त हो सकती है। इसलिए याद को बढ़ाते रहना चाहिए। जब तक कि निरंतर याद ना बन जाए, यदि हम याद में हैं तो किसी भी परिस्थिति को सहज ही सहनशील होकर पार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है सहनशीलता ही सफलता का आधार है। एक तरफ हम देखते हैं कि सहनशीलता में ये भी हमें देखना हिसाब किताब का चुप्तू होना। कोई भी व्यक्ति हमें कटु वचन बोलता है, अपमानित करता है, तो समझना चाहिए कि पीछे का कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। यदि हम सहन नहीं करते बल्कि क्रोध में आकर के उल्टा बोल देते हैं तो हिसाब किताब बढ़ जाएगा। इसलिए निंदा आदि को समझना चाहिए कि हम पर फूल बरस रहे हैं, और यह भी समझना चाहिए कि वह माया की जो है माया के वशीभूत है। क्रोध अहंकार आदि के प्रभाव में आकर यदि हम उसकी आलोचना करते तो हमने माया से हार खा ली। हाँ, यहाँ पर हमें देखना है हमारा कर्तव्य तो उस व्यक्ति तथा अपने को माया से मुक्त करना है। याद रहे कि

लड़ाई तो माया से है ना, हाँ, ना कि किसी व्यक्ति से। इस प्रकार हम माया पर जीत पाते जाए तो सहनशीलता का गुण अपने आप ही आएगा। शिव बाबा कहते हैं कि मरजीवा अर्थात पुरानी देह व दुनिया से जैसे मर चुके हैं, मरा हुआ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मरजीवा बनना मरना नहीं बल्कि माननीय बनना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है कि कब तक हम सहन करें। कुछ लोग बार बार तंग करते व सताते रहते हैं। प्रश्न आता है कि कब तक सहन करें। यदि अपने हाँ आपने अगर उसे 9 बार सहन किया परंतु 10वीं बार सहन नहीं किया तो बाप दादा कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। बाबा हमें क्या कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। अतः हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम संगम योग पर सहन करना ही हमारा क्या है कि हम समझे कि हम महान कार्य हमारा संपन्न हो रहा है, सहन करना पड़ता है। यह न समझकर हमें समझना है कि मैं बाप दादा यानी कि हम बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बाबा ने मुझे सहन करने में आज्ञाकारी रहने का हमें स्वमान दिया हुआ है, मैं उस स्वमान रूपी तिलक को धारण कर रही हूँ। हाँ, समस्याओं को ड्रामा का नजारा समझ उड़कर पार करना होता है, यह झुकना नहीं उड़ना है। एक तरफ हमें ये भी देखना, पूर्वज आत्मा जो होते हैं वो मानव सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग के शुरू में ही हम आत्माएं धरा पर देवी देवता के रूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस कारण तुम अन्य सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हो। लौकिक में जब बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ शरारत करते हैं तो वे नाराज नहीं होते तथा कोई बात नहीं बोलकर सहन करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सदा स्वमान में रहो, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। इससे आप ही सबका हाँ सब में अपने आप सहन होता रहेगा, सबकी बातें आप सहन करते रहोगे और सहनशीलता आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरे श्रृंखला में बहुत सी चीजें हमने देखी, समझी कि कैसे खुद अपने आप को हम मैनेज करना सीख सकते हैं। चाहे उसमें बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, रिश्तों को भी देखा कितने रोल्स हम निभाते हैं, और अब हम पहुंचे हैं रिसोर्सेज पर। ये हमें समझ में आया कि हमारे सामने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, हमारे सामने मेंटल रिसोर्सेज, हमारी अपनी जो संकल्प की शक्ति है, जो थॉट पावर है, वो कितना बड़ा रिसोर्स है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। आज रिसोर्सेज को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि कुछ और भी हमारे पास निधि है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर, बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, रिसोर्सेज को थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि एक बार एक नए रूप में हमारे सामने आ रही है कि एक तो मेरी ये फिजिकल जो आपने बताया था कि ये मेरा रिसोर्स हुआ, और एक मेरी जो थॉट पावर है उसको मैं कैसे एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते।
1: थॉट पावर तो सबसे बड़ा रिसोर्स है ना, बिकॉज सारा दिन में हम जो कुछ कर रहे हैं, इट्स स्टार्टिंग विद अ थॉट। सो एवरीथिंग दैट्स, एंड वी आल्सो हैव अंडरस्टूड दैट मेरा थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट करता है। तो सबसे बड़ा रिसोर्स, मतलब चाहे आप अपने धन को रिसोर्स मानो, मैन पावर को रिसोर्स मानो, लेकिन उस सब को हैंडल करने वाला, उस सब को मैनेज करने वाला, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। बट द माइंड विच इज गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग, हु इज गोइंग टू मैनेज द माइंड एंड वो रिसोर्स। जैसे अगर किसी के पास बहुत धन है लेकिन वो उसको राइट विधि से यूज न करे, तो वो धन बढ़ने के बजाय या यू नो वो वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक स्टॉक ऑफ एनर्जी है, लेकिन सारा दिन में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। अब हम सबको पता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारी सबसे वैल्यूएबल जो रिसोर्स है, दैट इज थॉट पावर। क्योंकि सब कुछ जो हम करते हैं सारा दिन में, चाहे वो हमारा वर्क है, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हैं, इट ऑल इज बिगिनिंग विद अ थॉट। तो अपनी थॉट्स को राइट विधि से यूज करना, दैट विल डिसाइड एवरीथिंग दैट हैपेंस विद मी इन लाइफ। क्योंकि माय थॉट देन माय फीलिंग, इट विल कम आउट इनटू एक्शन, एंड जो मेरा एक्शन होगा उसी का रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। सो एवरीथिंग इज बिगिनिंग विद द थॉट। तो थॉट पावर तो सबसे बड़ा रिसोर्स है।
0: इनफैक्ट कई बार हम ये भी कहते थे शिवानी कि मैंने सोचा और वो हो गया।
1: हाँ,
0: अभी सोचा ही था और वो हो गया।
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि एनर्जी है ना, वो एनर्जी ही तो अब ये डिपेंड करता है कि हम कितनी पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमारे हाथ में है सब कुछ, लेकिन क्योंकि हम अवेयर नहीं है, जैसे धन है लेकिन मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ यूजफुल तरह से जाएगा, कुछ वेस्ट जाएगा। इसी तरह रिसोर्स है मेंटल पावर, थॉट पावर, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है। सारा दिन में कितने थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, किस किस के बारे में सोच रहे हैं, किस किस के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, अच्छा अपने बारे में कैसा सोच रहे हैं, मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, व्हाट इज ऑल दिस। वो ही एनर्जी कुड बी यूज्ड इन यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, बट नो, इंस्टेड ऑफ दैट फियर, इनसिक्योरिटी। एंड जितने पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्वांटिटी कम होती है, स्लो डाउन होते हैं, लेकिन नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स बहुत इतने फास्ट चलते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि कितने थॉट्स क्रिएट,
0: और वो उसके साथ लिंक जुड़ता जाता है, यू नो। और पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने में जो हम अभी करने की कोशिश भी करते हैं, जब हम करते हैं तो उसके आगे हमें नहीं आता ज्यादा।
1: क्योंकि आप पॉजिटिव थॉट कॉन्शियस एफर्ट करके क्रिएट करते हो, अवेयरनेस के साथ क्रिएट करते हो, लेकिन नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस नहीं चाहिए ना, इट जस्ट गोज वेरी वेरी वेरी वेरी फास्ट, पता भी नहीं चलता कितनी थॉट्स चली जाती है। जब हम रिएक्ट कर देते हैं वर्बली, तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं जब गुस्सा आता है, लेकिन जो हम बोलते हैं इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ जो हमने एक्चुअली सोचा होता है उस व्यक्ति के लिए। बहुत कुछ अगर सोचा होता है ना किसी के बारे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब अगर गुस्सा आ गया या ट्रिगर हो गया वो, तो उसमें से कुछ एक परसेंटेज निकलता है।
0: वो जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो जो वही निकल जाती है फटाफट।
1: लेकिन जो निकलता है वो भी हमें इतना हैरान करता है, और हम कहते हैं मैं नहीं बोलना चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, या मेरा तो भाव ही नहीं था ये बोलने का। व्हाई वी आर नॉट अवेयर कि हमने ये सारी थॉट्स कब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करके, अक्यूमुलेट करके, और वो जो बाहर निकलती हैं, तो वो दिखने में जैसे लाइक इतना सब कुछ आई सेड, बट व्हाट डिड आई थिंक, वो तो मुझे अवेयर। तो थॉट के ऊपर कंटिन्यूअसली एक, इट्स नॉट यू नो टू गेट स्ट्रेस्ड के वो व्हाट एम आई थिंकिंग द होल डे, लेकिन बीच बीच में रुक कर अगर हम देखते जाएंगे, इट इज लाइक बीच बीच में स्टॉप जो हम करते हैं, एक घंटे के बाद एक मिनट, दैट इज फॉर दिस, स्टॉप चेक, स्टॉप चेक. तो अगर बार बार ये होता जाएगा तो धीरे धीरे वो करना भी नहीं पड़ेगा ऐसे डेलिबरेटली, आपको सारा दिन में एक अवेयरनेस रहेगी. और ऐसा नहीं है कि एकदम से नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन अब जैसे ही आएंगी पता चल जाएगा. अब पता चल जाएगा, नाउ आई एम फीलिंग जेलस, यू विल कम टू नो, अब आई एम हर्ट, आपको पता चल जाएगा.
0: I'm insecure, you know, like,
1: yes. You can make out. Yes. You can make out what is going on. And this is self-awareness. बीमारी पता चल गई एक बार, तो फिर इलाज करना तो बहुत इजी है. If I can understand the minute it starts, कि मुझे hurt हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, then I can work on myself and stop. लेकिन पता ही नहीं चल रहा, हो रहा है, create हो रहा है, और यही सोच रहे हैं दूसरे की वजह से हो रहा है, तो आप अपना इलाज नहीं करवाते. तो जिस दिन बीमारी का रूट कॉज पता चल जाता है, फिर इलाज करना इज नॉट डिफिकल्ट. तो अगर सुबह हम थोड़ी देर ऐसे अपने साथ टाइम स्पेंड करें, जस्ट टू सी वॉट इज हैपनिंग हियर, एंड देन कॉन्शियसली क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स. क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हम खत्म नहीं कर सकते. यू नो समटाइम्स पीपल जस्ट फील कि मेडिटेशन मीन्स सोचना बंद कर दो, यू नो जस्ट फोकस ऑन अ पॉइंट और आप सोचना बंद कर दो. वन, इट विल नॉट हैपन. एकदम से आप फिफ्थ स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और आप बोल रहे हो अब एकदम से उसको न्यूट्रल में ले आओ, तो वो झटका लगेगा. अब यहाँ झटका मतलब क्या, कि बहुत फास्ट स्पीड पर आपकी थॉट्स है एंड सडनली अपने आप को कहते हो नो थॉट्स, आई एम नॉट टू थिंक, तो देयर प्रेशर गेट्स बिल्ट अप. तो नो थॉट्स इज नॉट द सोल्यूशन. एंड अगर नो थॉट्स हम कर भी लिया, बट वेन वी गो इन टू एक्टिविटी, तो मुझे ऑफिस में आज प्रोजेक्ट है, लोगों से मिलना है, यू नो सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, कैन आई से नो थॉट्स?
0: थॉट्स तो क्रिएट करने ही पड़ेंगे,
1: है ना. तो मेरी मेडिटेशन जो मैं करती हूँ, इट इज सपोज टू बेनिफिट मी इन माई डे टू डे. अगर हम नो थॉट्स अभी कर भी लें, हमें अच्छा लगता है थोड़ी देर, क्योंकि कुछ वेस्टेज नहीं हुआ. लेकिन सारा दिन में वो मुझे कैसे बेनिफिट करेगा? तो राजयोग मेडिटेशन में हम थॉट्स को बंद नहीं करते, हम कॉन्शियसली एलिवेटेड पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं. सो इट्स बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी कि हम सुबह उठकर टाइम निकालकर अपने माइंड को एक अलग दिशा में, उसको आदत नहीं है उस दिशा में जाने की, उसको आदत है ये फास्ट फास्ट वाले, तो उसको धीरे से धीरे धीरे हर रोज उसके साथ बैठकर प्यार से उसको दूसरी दिशा में लेकर जाना है. अब जब हम उसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना शुरू करते हैं, इट डजंट गो इमिजिएटली, फिर वही थॉट्स आते रहते हैं ऑफिस में ये. तो वी हैव टू वर्क विद इट वेरी जेंटली, नॉट हार्शली, बट नॉट टू गिव अप. अब कई बार हम ट्राई करते हैं मेडिटेशन, फिर हम कहते हैं नहीं होता एंड वी गिव इट अप. It will not happen in one day, two days, 10 days. It will take its time. जो चीज को इतने सालों से या कहें इतने जन्मों से शायद एक पर्टिकुलर दिशा में जाने की आदत थी, उसको हम धीरे धीरे दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं. It will take little time. But we have to not be harsh. We have to be very gentle with ourselves. लेकिन होगा क्या कि आप अब एक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं. You're tuning into a different frequency altogether. So, उसका जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ सुबह नहीं होगा.
0: हाँ, वो दिन भर में हो जाएगा फिर. Yes.
1: वो दिन भर में हो जाएगा कि आपने आदत डाली है अपने मन को अब पॉजिटिव सोचने की, तो फिर वो उसकी जो प्राप्ति है वो सिर्फ सुबह के 10-15 मिनट आधा घंटा नहीं, सारा दिन. अब आए सिचुएशन, अब आए लोग सामने जो कुछ कह रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं हमारे को, लेकिन मेरे मन को एक अलग दिशा में जाने की अब आदत पड़ गई है. फिर हमें सिचुएशन आने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा आई हैव टू थिंक पॉजिटिव. सो मेंटल एनर्जी इज वेरी वैल्यूएबल. अब तीसरी जो हमारी चीज है, हमारी मेमोरी. मेमोरी तो बचपन से हमें पता है कि ये बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई में हर टाइम वी हैव बीन यूजिंग आवर मेमोरी. लेकिन मेमोरी हमारी पर्सनैलिटी जो है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आज हम जो हैं, हमारा जो व्यक्तित्व, नॉट फिजिकल पर्सनालिटी, बट मेरी जो व्यक्तित्व है, दैट्स अ लॉट बेस्ड ऑन माय मेमोरी. बिकॉज इस मेमोरी में हमारे हर थॉट, हर फीलिंग और हर एक्शन रिकॉर्ड होता है. एवरी थॉट आई क्रिएट, फीलिंग आई जनरेट एंड एक्शन आई परफॉर्म गेट्स रिकॉर्डेड हियर. मेरी हर हैबिट, हर टेंडेंसी का रूट कहाँ पर है? मेमोरी में. तो लाइक कंप्यूटर में नहीं होता मेमोरी, तो मेमोरी में क्या करते हैं, जो प्रोग्राम आपको वर्क करना है उस कंप्यूटर में, आप उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर देते हैं. सो द प्रोग्रामर बेसिकली लोड्स द प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड देन द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग ऑन इट्स ओन. तो यहाँ भी हम एवरी थॉट जो सारा दिन क्रिएट करते हैं, इट गेट्स लोडेड इन टू द मेमोरी ऑफ माई कंप्यूटर हियर एंड एवरी दिस थॉट एंड हैबिट दैट गेट्स फॉर्म्ड इज फाइनली माई पर्सनल यू नो प्रोग्राम, दिस इज हु आई एम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हैबिट्स होती क्या है, हर कोई भी चीज जो हमने
0: बार बार
1: कई बार रिपीट कर ली, वो बार बार करने से यहाँ सेव होती गई. नाउ दैट हैज बिकम माय हैबिट. अब जब नेक्स्ट टाइम इम्पल्स आएगा, लेट से फॉर एग्जांपल सिगरेट पीना, किसी ने जब बहुत बार स्मोकिंग कर ली है, अब नेक्स्ट टाइम उसको सिगरेट दिखे या उसको स्मृति आए या कोई उसके सामने पी रहा है, उसको सोचना भी नहीं पड़ता है. यू डू नॉट इवन हैव टू क्रिएट अ थॉट, आई वॉन्ट टू स्मोक अ सिगरेट, ये थॉट भी नहीं क्रिएट करना पड़ता. तो माइंड यूज नहीं हुआ, इंटेलेक्ट भी यूज नहीं होती कि सिगरेट पीना राइट है या रॉन्ग है, ये भी नहीं होता. तो क्या हुआ, माइंड और इंटेलेक्ट जो हमारी दो वैल्यूबल रिसोर्सेज है, इसको बायपास करके हम सीधा एक्शन में आ गए. इसको हम कहेंगे इंपल्स, कि आउट ऑफ इंपल्स आई कम इनटू एक्शन.
0: आई फेल्ट लाइक हैविंग अ सिगरेट, यू नो, इट्स लाइक दे डोंट इवन थिंक,
1: दे डोंट इवन थिंक. सी, कि सोचना भी नहीं पड़ता कि मुझे पीना है, या किसको नहीं सोचना पड़ेगा, जिसने कई बार वो कर लिया है. तो इम्पल्स इज बेसिकली जहां आपको ना सोचना पड़ता है ना समझना पड़ता है. सो माइंड एंड इंटेलेक्ट बोथ फैकल्टीज आर टोटली बाईपास्ड एंड इट जस्ट कम्स आउट इनटू एक्शन लाइक दैट. लेकिन इम्पल्स मीन्स क्या, एक एक्शन जो हमने कई बार रिपीट किया था, अब गुस्सा भी ऐसे ही हो गया. जैसे सिगरेट पीना या ये सब बाहर की आदतें हैं, लेकिन गुस्सा क्यों हमें नहीं पता चलता कि ये एक्चुअली हम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार करने के बाद इट हैज बिकम माय हैबिट. अब ना हम सोचते हैं उसके बारे में, ना उस पर इवैल्यूएट करते हैं कि करना है नहीं करना, इट जस्ट कम्स आउट, दिस इज हाउ इट इज कमिंग आउट. सो लॉट ऑफ माय हैबिट्स हैव बिकम सो डीप रूटेड कि नाउ आई वर्क बाय इम्पल्स. मैं आई एम नॉट, एंड व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग बाय इम्पल्स, तो क्रिएटिव प्रोसेस बंद हो गया,
0: ऑटोमेटेड हो गया, इट्स अ रिएक्शन, यू नो,
1: क्योंकि मन और बुद्धि जो दोनों वो एनर्जीज हैं जो क्रिएटिविटी को लाएंगी कि एक नया रिस्पॉन्स करें, सोचें कि ये करूं या नहीं करूं, करूं तो कैसे करूं, वो तो दोनों फैकल्टीज बाईपास हो गई है एंड सीधा इट इज कमिंग आउट इनटू एक्शन. तो तब हमें पता नहीं चलता कि मैंने गुस्सा कर दिया, या तब हम बोलेंगे मैंने नहीं किया, उन्होंने दिला दिया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ना सोचा था ना डिसाइड किया था कुछ भी. तो ये जो हमारा पर्सनल प्रोग्राम यहाँ बन जाता है, यू नो, एक बार आपने प्रोग्राम कंप्यूटर में लोड कर दिया, आफ्टर दैट इट विल जस्ट वर्क ऑन इट्स ओन. तो इम्पल्स कैसे है, जैसे अगर कंप्यूटर पर आप काम करते हो, अगर आप कीबोर्ड पर कोई भी बटन प्रेस करो तो वो इमिजिएटली वो कैरेक्टर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा, लेकिन वो इम्पल्स से नहीं आया, उसका प्रोग्राम ऑलरेडी फीड किया होता है कंप्यूटर के अंदर कि ये की प्रेस होगी, दिस इज द कोड एंड दिस इज द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. लेकिन हमें वो प्रोग्राम नहीं पता चलता, हमें क्या लगता है, यहाँ बटन प्रेस किया, यहाँ वो आ गया. इसी तरह आपने ये बोला, मैंने रिएक्ट कर दिया, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आपके वो बोलने में और मेरे वो रिएक्ट करने के बीच में एक प्रोग्राम यहाँ ऑलरेडी कोड हो चुका है, एंड योर saying that was just a trigger, कि आपने बटन प्रेस किया, लेकिन जो मेरा रिएक्शन था that was based on जो प्रोग्राम. अब जैसे कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड और मॉनिटर के इंटरफेस में वो प्रोग्राम नहीं किया, आप कितनी भी कीज प्रेस करो उस कीबोर्ड पे, कुछ नहीं आएगा. आज हमें लग रहा है दिस इज मैजिक, हम प्रेस करते हैं वहां वो आता है, इट्स नॉट, देयर इज अ प्रोग्राम दैट हैज गॉन इनसाइड इट. तो एवरी थॉट दैट वी रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो हमारा प्रोग्राम यहाँ बन जाता है. हमें अब अवेयरनेस नहीं है कि वो प्रोग्राम ऑलरेडी बन गया, हमें क्या लगता है यहां से ट्रिगर आया, यहां से मैंने जेनरेट किया. तो जो हम रिस्पॉन्स जेनरेट कर रहे हैं, आई विल हैव टू रिमेम्बर आई हैव क्रिएटेड द प्रोग्राम एंड इफ आई वॉन्ट टू चेंज इट
0: आई कैन चेंज.
1: कोडिंग मैंने की थी.
0: वेरी ट्रू शिवानी की, जहां बात यह आई कि ये रियलाइज हो जाएगा कि की दबाने वाला और वो लिखने वाला जो जो पूरा प्रोग्राम था वो मैं था, तो मुझे पता है कि उसको मैं चेंज भी कर सकता.
1: की कोई भी दबा सकता है बाहर से, राइट, लेकिन मैं स्क्रीन पर क्या दूंगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन जो मैंने प्रोग्राम लिखा होगा. सो मेरे बटन्स प्रेस करने वाले आप हो एक्चुअली, सिचुएशंस जो बाहर से आती हैं, बट व्हाट आई विल फ्लैश ऑन माय स्क्रीन हियर विल बी बेस्ड ऑन व्हाट कोड आई हैव रिटन इनसाइड. नाउ अगर जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, इफ आई डोंट लाइक इट, आई कांट टेल यू आपने ये बटन क्यों प्रेस किया, आई कैन ओनली चेंज माई कोडिंग, तो वो कोडिंग मुझे कहाँ चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो यहाँ फीड हुआ हुआ है, इसकी जो डीपेस्ट लेयर्स हैं वो है हमारी बिलीफ सिस्टम, बचपन से एक एक बिलीफ जो यहाँ बैठी हुई है, तो वो बिलीफ से हमारी एक एक थॉट, एक एक फीलिंग क्रिएट होती है. अब शुरू में तो इट विल जस्ट स्टार्ट फ्रेश, यू नो, एक एक थॉट, एक एक फीलिंग, लेकिन वही थॉट्स जब बार बार क्रिएट होने लगे, नाउ इट बिकम्स माई हैबिट. सो इफ वी लुक एट इट लाइक अ ट्री, तो जो जो पेड़ के जो रूट्स हैं, दैट इज आर बिलीव्स एंड परसेप्शंस, जो ट्रंक है, दैट इज आर थॉट्स एंड फीलिंग्स, एंड देन द ब्रांचेस आर आर एक्शंस. लेकिन ये जो सारे एक्शंस आ रहे हैं, ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं, हमारे बिलीफ से. अब ये जो वृक्ष है, कि यहाँ बिलीव्स एंड परसेप्शंस, द ट्रंक इज थॉट एंड फीलिंग, एंड देन इज द एक्शन. अब ये वृक्ष जब बड़ा होता जाता है, तो इट बिकम्स लाइक अ क्रीपर, यू नो, जो अपने और ही फिर लपेट लेता है. तो ये मेरी पर्सनालिटी बनती जाती है, कि ऑल माय एक्शंस, ऑल माय थॉट्स एंड फीलिंग्स, इट जस्ट गोज ऑन. तो जैसे ही ये क्रीपर या बेल जो है लिपटती जाती है, माय ट्रू सेल्फ गेट्स हिडन समवेयर इनसाइड, एंड दिस माय हैबिट्स एंड टेंडेंसीज बिकम्स माय एक्चुअल पर्सनालिटी. आई थिंक दिस इज हु आई एम, एंड माई ट्रू सेल्फ हियर, द ओरिजिनल सेल्फ गेट्स हिडन इनसाइड. तो ये जो बेल बन जाती है, इट्स ऑल्सो लाइक अ फेंस जो मेरे चारों तरफ बन गया, एंड दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोक्यूटेड. अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, इट इज लाइक आपने वो जो फेंस है जो मेरे चारों तरफ बन गई है, आपने आकर उसको छेड़ दिया, एंड आई विल रिएक्ट. मुझे ऐसा कहा, एक्चुअली आपने मुझे नहीं कहा, आपने किसको कहा, वो जो मेरे हैबिट्स बन गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किस चीज से किया कि मैं ये हैबिट्स हूं. तो अगर आपने मेरी किसी हैबिट के बारे में, मेरी किसी आदत के बारे में कुछ कह दिया, आई टेक इट वेरी वेरी पर्सनली कि आपने मुझे कहा, एंड आई विल रिएक्ट. सो दैट इज व्हेन वी से पर्सनालिटी क्लैश, कि ये दो पर्सनालिटीज का क्लैश क्यों हो रहा है, जब वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, यू नो, दैट वायर जो इलेक्ट्रिक हो चुके है, इट विल जस्ट स्पाइक अगेंस्ट ईच अदर, एंड देयर विल बी फायरवर्क्स बिटवीन द टू पीपल.
0: आई थिंक वी नीड टू टेक इट बैक.
1: यस, वी नीड टू रियलाइज दैट दिस इज नॉट हु आई एम, जो ये लिपट चुका है इसके अराउंड, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने बिलीफ सिस्टम्स ये बनते जाते हैं, कि कहीं वो जो बीज है वो तो बिल्कुल ही अंदर छुप जाता है, और ये सारी लेयर्स ऊपर से बनती जाती हैं. नाउ मेडिटेशन, व्हाट इट हेल्प्स मी टू डू, गोज टू द कोर, कि वो जो बिल्कुल बीज है उस पर जाना है, एंड अपने इस जो पूरे हमने हैबिट्स और टेंडेंसीज बनाए हैं, आई नीड टू रीप्रोग्राम. मुझे रीप्रोग्राम करना है. अभी क्यों रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि जब बटन यहाँ से प्रेस हो रहा है, जो मेरा यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे पसंद नहीं है, इट्स अ रिएक्टिव रिस्पॉन्स. मुझे अपने रिस्पॉन्स को चेंज करना है, तो मुझे रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी मतलब थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे. थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन थॉट्स का सोर्स क्या है, बिलीफ सिस्टम. तो मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. अब ये बिलीफ सिस्टम सारे कहाँ हैं, दे आर इन द सबकॉन्शियस माइंड, दे आर नॉट इन द कॉन्शियस माइंड. मेजोरिटी ऑफ अस को पता भी नहीं है कि हम कैसे कैसे बिलीफ सिस्टम्स पकड़ कर बैठे हुए. तो मेडिटेशन में क्या होता, जब हम अपने माइंड को साइलेंस करते हैं, तो हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड पर चले जाते हैं. सो इट्स लाइक बेसिकली गोइंग इन द लोअर लेयर. अब वो लोअर लेयर पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग, कोडिंग पहले की हुई है बिलीफ सिस्टम. लेट्स से एंगर इज नेचुरल, ये वो लोअर लेयर पे कोड किया हुआ है. अब हम एक नया प्रोग्राम लिख रहे हैं, आई एम अ पीसफुल सोल. तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो हमारी सबकॉन्शियस में डीप रूटेड है, एंड दैट्स व्हाई वी से ये तो मेरी नेचर है, आई कांट चेंज इट, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि मैं कॉन्शियसली वो कर रही हूँ, क्योंकि वो एज एन इम्पल्स हो रहा है, कि वो बिलीफ सिस्टम फिट किया हुआ है कि एंगर तो गुस्से के बिना काम नहीं होता. अब मन सोचता भी नहीं है कि गुस्सा करूँ या नहीं, बुद्धि तो बीच में आती नहीं बताने के लिए, क्योंकि सो इट्स हैपनिंग इम्पल्स. सबकॉन्शियस लेयर प्रोग्राम फिटेड है, गुस्से के बिना काम नहीं हो सकता. जैसे ही कीबोर्ड से बटन यहाँ प्रेस किया, स्टिम्यूलस आया, गुस्सा, इट्स कम एज अ रिस्पॉन्स. अब जब हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मेनी पीपल ट्राई टू डू इट फ्रॉम आउटसाइड, गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे इट विल नॉट वर्क. वो टेम्पररी होगा, फिर कुछ ना कुछ अपने माइंड को अपने आप को डेविएट करने की कोशिश करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं. दीज आर वेरी टेम्पररी थिंग्स. वो एक दो दिन काम करेंगे, उसके बाद नहीं काम करेंगे. प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा. रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड इज मेडिटेशन. सो उस प्रोग्राम को चेंज करना मतलब उस सबकॉन्शियस लेयर पे जाना और वो बिलीव सिस्टम को चेंज करना. तो उसको हम नहीं हटा सकते, वो है, लेकिन हम एक नया वाला क्रिएट कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हेन वी सिट इन मेडिटेशन एंड वी फीड इन दिस इनटू द बिलीव सिस्टम. आई एम अ पीसफुल सोल, नॉट आई वांट पीस. आई वांट पीस इज नॉट द बिलीफ, आई एम. तो यहाँ जब वो बिलीव सिस्टम फिट हुआ तो नेक्स्ट टाइम थॉट्स किस बेसिस पे क्रिएट होंगे, क्योंकि हमने देखा कि मन की शक्ति, थॉट पावर इज अ रिसोर्स, लेकिन उसका सोर्स क्या है?
0: बिलीफ्स,
1: हमारी पर्सनालिटी जो बनी है. तो मैं थॉट लेवल पर एकदम से चेंज नहीं कर पाऊंगी, वो जाता नहीं है, बिकॉज थॉट्स ग्रो कहाँ से हो रहे हैं? बिकॉज थॉट्स आर द ट्रंक.
0: बिलीव सिस्टम इतना एम्बेडेड है कि वो हमने थॉट तो मैं चलो क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही सिचुएशन आती है वो एकदम से रिएक्शन जो है,
1: क्योंकि वो बना हुआ है ना बहुत टाइम से, तो इसलिए इतनी जल्दी अपने साथ वो हताश भी नहीं हो जाना. मैंने तो थॉट क्रिएट किया था, आई एम अ पीसफुल सोल, फिर मुझे गुस्सा कैसे आ गया? वी आर रीप्रोग्रामिंग. इट्स लाइक रीफॉर्मेटिंग द होल कंप्यूटर. इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट डू नॉट स्टॉप, कंटिन्यू. तो जैसे ही हम ये बार बार अपने आप को ये बिलीफ सिस्टम डालते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, तो नेक्स्ट टाइम थॉट कौन से बिलीफ से ग्रो होगा? जो रूट्स हैं, हम रूट लेवल पर चेंज कर रहे हैं. अभी तक रूट्स वो सारे थे, एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नॉर्मल, वो सारे रूट्स थे. तो ट्रंक में थॉट्स भी कैसे आएंगे उस वृक्ष के? वैसे ही आएंगे. एक्शंस कैसे होंगे? गुस्से वाले होंगे. अब हम उसको जड़ों से, जिसको कहते हैं ना जड़ों से बदलना है, तो संस्कार को जड़ से बदलना है. तो जड़ में ही अगर परिवर्तन ले आए संस्कार में, तो फिर थॉट लेवल पे परिवर्तन लाना नहीं पड़ेगा, एक्शन लेवल पर ध्यान रखना नहीं पड़ेगा. अभी हम जड़ को नहीं चेंज करते तो एक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, थॉट को चेंज, एंड देन इट्स टू मच ऑफ अ स्ट्रगल, एंड देन आई गेट वेरी हैवी ट्राइंग टू डू इट, एंड देन आई ऑल्सो फेल many times because I'm doing it on the outer level. तो जड़ों को नरिशमेंट देने, पानी वही देना है, बाकी वृक्ष तो अपने
0: एक एक ठीक एक एक पौधे को या एक एक उसको नहीं देने,
1: उसको नहीं चेंज.
0: इनफैक्ट एक और जो बात देखी है मैंने अपने इस प्रोसेस में कि अगेन एंगर, हर्ट, ये जेलसी, ये सारी चीजें जो है, जो सारा ये नेगेटिव पूरा है, ये मुझे हटाना नहीं है. जैसे अंधेरे को बाहर नहीं निकालना, जैसे कई बार कहा जाता है कि अंधेरे को उठा उठा के बाहर निकालो तो उजाला आएगा. लाइक आई रियलाइज इट, यू नो, कि द मोमेंट आई एम एबल टू टेल माई सेल्फ आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई डोंट गेट एंग्री.
1: एब्सोल्युटली. अब ये आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, ये सिचुएशन आने के बाद थॉट नहीं क्रिएट करनी है. अभी क्या होता है, थॉट सिचुएशन आए से आई एम अ पीसफुल बीइंग, देन हम यही ट्राई कर रहे हैं. ये साइलेंस में बैठकर वो लोअर लेयर पे जाके बिलीफ को चेंज करना है पूरी तरह से. जब वो हो जाएगा, जब सिचुएशन आएगी सामने, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा.
0: इनफैक्ट अब आपको पीसफुल बीइंग
1: ये भी नहीं क्रिएट करना पड़ेगा.
0: इट डजंट कम आल्सो,
1: इट डजंट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. कि जब परिस्थिति आई आप थॉट क्रिएट करेंगे आई एम अ पीसफुल बीइंग, नहीं, आपकी थॉट्स ऑलरेडी पीसफुल हो गई हैं. अब आपका एक्शन क्या होगा? यू विल नॉट से इन एक्शन आई एम अ पीसफुल बीइंग, यू आर अ पीसफुल बीइंग. नो, इट्स जस्ट दैट द एक्शन विल रिफ्लेक्ट पीस. वो एक्शन जो आपका व्यवहार आएगा उसमें अग्रेशन नहीं, तनाव नहीं, लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जड़ से चेंज कर दिया है आई एम अ पीसफुल सोल. एंगर इज नेचुरल, इसको हटा नहीं सकते, लेकिन एक लेयर तो चेंज कर सकते हैं ना. और जैसे ही ऊपर से एक लेयर आएगी आई एम अ पीसफुल सोल, नीचे वाली लेयर अपने आप चली जाएगी. अब कई बार क्या होगा, सुबह उठकर बोलेंगे आई एम अ पीसफुल सोल, फिर सारा दिन करते करते बोलेंगे रहने दो, होता तो है नहीं गुस्से के बिना. तो फिर क्या हो रहा है, एक तरफ से एक बिलीफ क्रिएट कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से पुराने बिलीफ को रीअफर्म कर रहे हैं. सो थिंक अबाउट इट फर्स्ट, इवैल्यूएट वेदर यू आर लाइकिंग दिस बिलीफ एंड यू फील इट विल वर्क फॉर
0: यू. मेक इट योर बिलीफ सिस्टम एक्चुअली.
1: यस, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू टेक इट वंस, एक्सपेरिमेंट विद इट. अगर आपको उसका रिजल्ट पसंद आता है, देन इट बिकम्स द ट्रूथ फॉर यू. यस, आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ये पसंद है, दिस मेक्स मी फील कम्फर्टेबल. गुस्सा करके कभी कम्फर्टेबल नहीं. फिर अपने बिलीव्स को एक बार बना दिया, फिर उनको बार बार सारा दिन में चेंज नहीं करना है, चाहे परिस्थिति

0: ये पर्सनालिटी है। तो अगर ये रिसोर्स राइट नहीं होगा तो बाकी वृक्ष भी हेल्दी नहीं हो सकता। जब तक रूट्स हेल्दी नहीं है, सीड हेल्दी नहीं है, तो पूरा वृक्ष हेल्दी नहीं होगा। इसलिए जड़ लेवल पर चेंज कर लिया तो फिर वृक्ष को कुछ नहीं करना पड़ेगा।
1: That's very true. In fact, जहां मेरे को फील अच्छा नहीं हो रहा, so I think I need to change the program.
0: Absolutely.
1: And I have to realize that. Thank you so much.
0: I'm Shanti.
1: आप तो ये कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आपका अपना है, कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। Awakening with Brahma Kumaris में आज इतना ही। इस श्रृंखला में हमने बहुत कुछ जाना है अपने बारे में और खुद को मैनेज करने का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने लिया है। आगे अभी बहुत सी बातें करनी बाकी हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.
1: आप सुन रहे हैं रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
2: नमस्कार और स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत शय वो होती है जब प्यार हो जाता है. ढाई आखर प्रेम के, ये भी कहा गया है. लेकिन प्यार में अगर कभी आपको वो नहीं मिल पाता जिसे आप प्यार करते हैं, या लगता है कि धोखा हुआ, ऐसे में जो डिप्रेशन होता है वो काफी सीवियर होता है. कभी आपके किसी अपने को ये डिप्रेशन हो या फिर आप भी इससे गुजर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है जिंदगी. डिप्रेशन की जो हम पूरी बातचीत कर रहे हैं उसमें आज हमने आपसे वादा किया था, बात करेंगे कि अगर प्यार में आपको धोखा मिले या प्यार में लगे कि आप डिप्रेस्ड हो गए हैं तो फिर कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, फिर से जिंदगी जीने का एक नया अंदाज सीखना है और प्यार के जो सही मायने हैं उसको तलाशना है. और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. आपका हार्दिक स्वागत.
3: नमस्कार.
2: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी. आपका स्वागत.
4: ओम शांति.
2: ओम शांति. आज सबसे पहले डॉक्टर गिरीश, प्यार के सही मायने की बात करते हैं. सही मायने में अगर हम प्यार को जाने, खासकर यूथ के लिए, युवा जब होता है 17-18 साल में प्यार अमूमन हो जाता है और वो प्यार ही हम कई बार देखते हैं कि वो लंबा चलता है, कई बार बीच में ही रुक जाता है क्योंकि प्यार के नए रूप दिखने लगते हैं. क्या है ये ढाई आखर प्रेम का?
3: तो जैसे आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि भी सही मायने क्या है. अगर सही मायने को समझना है तो गलत मायने की चर्चा करनी.
2: बिल्कुल.
3: गलत क्या है वो समझ में आ जाएगा तो सही ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होगा. तो आज वर्तमान स्थिति क्या है कि जो वास्तव में गलत है. सबसे पहले तो आज जो प्यार है ना वो डोमिनेटिंग प्यार है. ये चाहते हैं जिससे प्यार हो गया वो मेरा ही होना चाहिए,
2: पोजेस कर लूं.
3: हाँ, वो किसी से बात भी नहीं करे. अगर वो किसी से बात भी कर रहा है तो कहते हैं कि भी कुछ गड़बड़ है इसमें. तो एक डोमिनेटिंग स्टेज है कि विच इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है. व्यक्ति किसी से बात तो करेगा, शेयर भी करेगा अपने व्यूज. जो दूसरी स्टेज है कि जिसके अंदर शर्त का प्यार है,
2: कंडीशनल.
3: हाँ, कि भाई तुम्हारे अच्छे रैंक आएगी तो हम आपको प्यार करेंगे ना, तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो हम आपसे प्यार करेंगे. तो जो भी शर्त है वो शर्त वाला प्यार है कि जो भी गलत है वास्तव में. तीसरा है कि हमने स्वार्थ से प्यार किया है. नहीं कि भाई बहुत पैसे वाला लड़का है तो चलो उससे फ्रेंडशिप करो, तो वह शर्त है. जब भी शर्त वाला प्यार है तो भी यह सदा के लिए नहीं रह सकता है. तो इस प्रकार से यह सब गलत चीजें. शिवानी बहन भी शायद कुछ ऐड कर सकते हैं, गलत प्यार क्या है.
2: बिल्कुल नहीं, ये गलत प्यार के तीन आस्पेक्ट तो हमें समझ में आए कि भाई शर्त के साथ अगर आप प्यार करते हैं, कंडीशंस हैं कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे आप तो मैं आपसे प्यार करती हूँ. दूसरा आपने कहा कि लोभ के साथ, कि अगर वो इतना स्वार्थी, स्वार्थ के साथ जुटे. और तीसरा जो है
3: डोमिनेटिंग,
2: कि हाँ मैं, आप मेरे हैं तो आप किसी और के नहीं हो सकते. ये जो तीन आस्पेक्ट है ये तो नेगेटिव है. आपसे सवाल ये है कि हर बार हम आपसे इनर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, प्यार के सही मायने आज हम तलाश रहे हैं. प्यार अगर हम देखें, हमारी कविताओं में भी देखते हैं, पुराना देखते हैं, तो ये है कि प्यार मतलब आप समर्पण है. तो क्या मैं किसी व्यक्ति को इतना समर्पित हो सकती हूँ कि अपना सब कुछ खो दूंगी, अपना खो दूंगा या खो दूंगी? क्या मैं अपनी इतना अधिकार दे दूंगी? क्या हम ये बात करते जो आ रहे हैं पूरी एक इंटरनल जर्नी की, एक पूरे उसको खुद को पहचानने की, कि मैंने अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं खोऊंगा मैं या खोऊंगी किसी भी सिचुएशन में. प्यार एक ऐसा मोड़ है जिंदगी का जिसमें कुछ नहीं नजर आ रहा होता.
4: प्यार हम किसी और से कर नहीं सकते हैं जब तक हम पहले अपने आप से प्यार नहीं करते. प्यार मतलब क्या? एक्सेप्टेंस, यू नो, इट्स एनर्जी. प्यार इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी विच कैन बी देयर इन एनी रिलेशनशिप. लेकिन सबसे पहले अपने साथ, क्या हम अपने आप को प्यार करते हैं? इतना दर्द अपने आप को देते हैं हर रोज, इतने टॉर्चर अपने आप को करते हैं, सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देते हैं, सबसे ज्यादा चीटिंग अपने आप से करते हैं. तो जो हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, अपने अंदर इंटेग्रिटी नहीं ला सकते, तो और किसी से प्यार करना ये पॉसिबल नहीं है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो चाहते हैं दूसरे से वो चीज हमें मिल जाए, यू नो. और फिर उसके लिए हमें दूसरे से वांटिंग है हर टाइम. हम प्यार दे नहीं रहे हैं, हम प्यार मांग रहे हैं. अब दूसरे की मनोस्थिति क्या है,
2: वो भी उसी सिचुएशन.
4: हाँ, तो दो लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज जो उनके पास नहीं है. सो how will it be successful? You know, so we have to first love ourselves. अपने आप को जानते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम वो एनर्जी दूसरों को देना शुरू करते हैं, दूसरों से मांगना शुरू नहीं करते हैं. आई कैन नॉट गेट इट फ्रॉम एनीबडी. द ओनली सोर्स इज माई इनर सेल्फ एंड गॉड.
2: शुड आई चेंज माई सेल्फ? दिस इज अ मेजर क्वेश्चन, यू नो, लाइक खासकर आज युवा पीढ़ी के सामने ये सवाल है बहुत, जो आपने भी बात की कि पोजेस करना चाहते हैं हम, डोमिनेट करना चाहते हैं. लेकिन बात ये आती है कि हम जिसे प्यार करते हैं, हम एक वन उसको चेंज करना चाहते हैं, दो हम चेंज हो जाना चाहते हैं, हम उसकी तरह बन जाना चाहते हैं जो वो हमसे चाहता है उतनी देर में, जितनी देर हम उसके साथ हैं या जितनी देर वो हमारे पूरे दिमाग पर हावी है, हम अपना सब कुछ बदल देना चाहते हैं. शुड वी डू दैट और नॉट?
4: That's because again in both the cases, या तो वो जैसा मैं चाहूँ दूसरा व्यक्ति वैसा बन जाए, या दूसरा जैसा चाहता है मैं वैसा बन जाऊं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं किया है. यू सी, तो या तो आई एम फाइंडिंग द नीड कि दूसरे को चेंज कर दूं या दूसरे को इन्फ्लुएंस करूं. तो वेयर इज द लव? लव मीन्स के एक्सेप्टेंस. I accept you the way you are. If I say I like you but you do this, it's over.
2: That's what he said. That's not what love is.
4: That's
2: so kya hai pyar?
3: वास्तव में देखे तो प्यार unconditional होना चाहिए. प्यार में कोई भी स्वार्थ ना हो, प्यार में expectation भी ना हो. अगर ये स्टेज बन जाए तो सदा के लिए टिक सकता है. और दूसरी एक बात, जो प्यार हो वह व्यक्ति की जो इनर क्वालिटीज है, वैल्यूज है, वैल्यूज के साथ आज व्यक्ति ना शरीर के साथ अटैच होता है, शारीरिक आकर्षण से प्यार होता है, वो वैल्यूज के साथ अटैच नहीं होता है. अगर वो वैल्यूज के साथ अटैच हो तो सदा काल के लिए वटी.
2: लेकिन अगर हम वो वैल्यूज के साथ अटैच हो जाते, बहुत से हमारे यंगस्टर्स के सामने ये सवाल, जब 18-19 साल में हम होते हैं तो हम बड़े फुल ऑफ आदर, हमारे पास बहुत सारे आदर्श होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज की हम बात कर रहे होते हैं, हम दुनिया बदल, शरीर के भी परे जाके वो वैल्यूज और वो सारी बातें जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. एंड वी जस्ट यू नो लाइक की हाँ, बहुत मोहब्बत है, प्यार है. आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट, समाज के साथ इंटरेक्शन और जिंदगी की जब मुश्किलें सामने आती हैं, उसमें वो वैल्यूज टूटती हैं, तब क्या मेरा प्यार खो जाना चाहिए? क्या मेरा प्यार भी बदल जाना चाहिए? अगर मेरा पार्टनर बदल गया है तो क्या मुझे बदल जाना चाहिए?
3: नहीं, वो खोना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज एडजस्टमेंट. शुरू में अगर वैल्यूज से आप अटैच हुए हैं ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी.
2: लेकिन अगर उनकी वो वही वैल्यूज गिर गई,
3: हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इसे शरीर से अटैच हुए ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब, क्योंकि वो आकर्षण थोड़े ही समय रहेगा, वैल्यूज वाला लंबा है, फिर भी उसमें ऊपर नीचे हो सकता है. तब अगर आप वैल्यूज से अटैच हुए तो यू हैव अ पावर टू एडजस्ट एज वेल. और अल्टीमेटली लाइफ इज फुल ऑफ एडजस्टमेंट.
2: सिस्टर शिवानी, इस सफर में चलते हुए वैल्यूज से अगर हम अटैच हुए थे और अगेन एक्सेप्टेंस के साथ, दोनों की एक्सेप्टेंस है, आगे चल के वो वैल्यूज गिरी आपके पार्टनर की या जिससे आप प्यार कर रहे हैं, हाउ डू आई रिएक्ट? अगेन आई गो इनटू अ डिप्रेशन?
4: नो, आई डोंट. आई हेल्प द पर्सन टू एम्पावर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. यू नो, इट्स लाइक वो, ये तो फिर कंडीशनल हो गया ना कि आई लाइक यू, अ पेरेंट, अ टीचर, अ फ्रेंड, एनीबडी, इट कैन बी इन एनी रिलेशनशिप, कि आई लाइक यू टिल यू आर लाइक दिस. यू नो, द डे यू चेंज टू समथिंग एल्स, नाउ आई डोंट लाइक यू. तो इसका मतलब हमने उस व्यक्ति से नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर इमेज जो हमने उस व्यक्ति की बनाई हुई थी उससे प्यार किया. तो वो इमेज तो बदलती जाएगी. एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ चेंज. तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं है. हमने उनके बारे में अपने लाइकिंग के अनुसार कोई इमेज बनाई है और उस इमेज से अटैच्ड हो गए हैं. तो जैसे ही वो इमेज चेंज होने लगती है, यू नो, जैसे ही वो व्यक्ति चेंज होने लगता है एंड इट क्लैशेज विद द इमेज दैट आई हैव, then there is a disturbance of energy.
2: So that image has to be constantly changed?
4: There is no image. I first of all understand what the person is. And I accept the person. Wo jo hai, जैसा है। परमात्मा का प्यार इसीलिए अनकंडीशनल होता है। परमात्मा कहता है तुम जो हो जैसे हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो,
5: मुझे बहुत
4: मेरे बहुत प्यारे हो। और फिर वही प्यार हमें वैसे भी एम्पावर कर देता है, वही प्यार हमें परिवर्तन कर देता है उसकी तरह बनने की कोशिश करने का, क्योंकि उसने पहले हमें एक्सेप्ट किया। अगर वो हमें डांटते और कहे नहीं अभी अच्छे नहीं हो, ऐसे बन जाओगे तो अच्छे मुझे लगोगे, वी विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गॉड्स लव। इट्स दैट एक्सेप्टेंस विच मोटिवेट्स टू चेंज ऑल्सो। दैट एक्सेप्टेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट।
2: ब्यूटिफुल डॉक्टर पटेल, इस पड़ाव पर एक मेल मैं लेना चाहूंगी, और ये मेल हमें लिखा है विकास ने, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं ये, और ये लिख रहे हैं कि मैं एक लड़की से फर्स्ट ईयर से ही प्यार करता था और मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि अब मैं इन दिनों बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि मैंने उसे कहा कि मुझे लगता था कि मैंने सारी जिंदगी अपनी उसके आसपास अपनी बुन ली थी एक, और मुझे लगता था कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पूरी तरह से मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मुझसे ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, मेरी जिंदगी का कोई एम नजर नहीं आता है। अब ये क्या है सर, ये डॉक्टर पटेल टेम्पररी फेज है या इट कैन लीड टू अ मेजर डिप्रेशन का जो रूट कॉज हो सकता है?
3: इट कैन, इट इज मोस्टली अ टेम्पररी फेज, बट इट कैन लीड टू मेजर डिप्रेशन एज वेल। अब इसमें करना क्या चाहिए? वास्तव में सारी बुद्धि की बात है। आजकल का जो यूथ है दे आर ओवर इमोशनल, इनफैक्ट और वो हेड को यूज नहीं करते, हार्ट को यूज करते।
2: एक्चुअली कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पूरी बात ये करते आ रहे हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता, वक्त नहीं मिल रहा होता, अकेलापन इतना ज्यादा है, तो शायद जहां उन्होंने सपना देखा वहीं मान लिया। तो क्या करें विकास?
3: अब यहाँ पर उन्हें बुद्धि का उपयोग करना है। अगर बुद्धि का सही उपयोग करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही वो इट वॉज वन साइडेड थिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और फिर जैसे उन्होंने वो बात कही और सामने से रिजेक्शन आया, उसका अर्थ यह है कि भी सामने वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी 5% भी वो इमोशंस नहीं है। और ये तो अच्छा हुआ, अगर ये बात और आगे बढ़ती तो फिर तो नेचुरली वो मिसमैच होना था।
2: एक इनका आगे ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कभी वो मुझसे प्यार करेगी?
3: नहीं, नहीं करो।
2: हाँ, ये जो उम्मीद एक छोटी सी लगाए रखते है ना। हाँ।
3: नहीं, जब उन्होंने फर्स्ट सेट ये हुआ रिजेक्शन हुआ है तो फिर एफर्ट नहीं करनी चाहिए। उल्टा यू ट्राई टू यूज योर टैलेंट्स, है ना, और कोई क्षेत्र में जैसे बीटेक कर रहे हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करें, अच्छे से करें, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाए, ही कैन गेट बेटर पर्सन आल्सो इन हिज लाइफ। तो इसलिए जब भी ऐसी वन साइडेड बात है तो वहां एफर्ट करने से फायदा नहीं, उल्टा ही विल लूज हिज एनर्जी।
2: लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इनकी सिचुएशन जिसमें है, जिस तरह की हालात में होंगे, क्या पता हॉस्टल में रह रहे हों, जैसे अभी ये नहीं बताया इन्होंने, तो ऐसे में अकेलापन, और जब डिप्रेशन की बात आ गई, पीयर प्रेशर भी होता है कई बार। सो व्हाट इज इट यू वुड लाइक टू टेल हिम, दैट हाउ टू टॉक टू सेल्फ काउंसलिंग की हम हर बार बात करते आ रहे हैं।
4: यहाँ जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो रिजेक्शन की हुई है, तो वो उससे हमारी अपनी सेल्फ वर्थ कम होने लगती है, हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं कि ऐसा क्या मेरे अंदर इनको नहीं, मतलब क्या है मेरे अंदर प्रॉब्लम जो द अदर पर्सन डिड नॉट एक्सेप्ट मी। यू नो, इवन दिस इज टू बी कंसिडर्ड कि आपने बिना जाने, बिना पहचाने, बिना कुछ भी पता हुए आपने डिसाइड कर लिया कि सामने वाले व्यक्ति के साथ आप अपनी पूरी जीवन बिताना चाहते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि आप जानते ही नहीं है दूसरे व्यक्ति को, तो आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया? यू नो, सो द वर्ड लव आई डू नॉट थिंक वुड बी द राइट वर्ड टू फिट इन हियर। तो आपने डिसाइड कर लिया, अब आपके डिसीशन से तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी सेम चीज को एक्सेप्ट करेगा। टू पीपल टूगेदर शुड वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ टूगेदर, यू नो, देन द जर्नी इज मीनिंगफुल, अदरवाइज इफ इट कैन नॉट बी वन पर्सन। तो हमने किसी से जाके ऑफर किया, लेट्स से कि हम किसी से जाकर कहते हैं हम यहां से शिमला जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलेंगे? इफ द पर्सन एंजॉयज माय कंपनी, सेज चलो हम आपके साथ चलेंगे, बट इफ आई डोंट एंजॉय समबडीज कंपनी, आई से नो, यू नो, एंड थैंक यू बट आई डोंट वांट टू गो। अब उसमें रिजेक्शन की कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट टू पीपल डोंट वेरी एंजॉय टूगेदर,
2: दैट्स परफेक्टली फाइन एक्चुअली,
4: इट्स जस्ट नेचुरल। सो इफ द अदर पर्सन हैज, यू नो, इट्स नॉट अ रिजेक्शन, इट्स जस्ट दैट द अदर पर्सन इज नॉट कम्फर्टेबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है या कुछ हो सकता है, इट्स जस्ट दैट आप उस व्यक्ति के साथ एक राइट कंपनी नहीं शेयर करते।
2: और अभी तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड 18 इयर्स, अभी तो अच्छा है कि अभी नहीं मिला, हो सकता है 25 साल में कोई और मिलता तब प्रॉब्लम ज्यादा आती है, या 30 साल में कोई और मिल जाता जो ज्यादा कंपैटिबल होता,
3: और डेफिनेटली हो सकता है।
2: हाँ, तो इतनी जल्दी
3: तर्क से भी समझाना चाहिए। वास्तव में चीज तीन है शक्तियां, ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छी बात बताते जो मुझे भी टच कर, जब मैंने पहली बार 18 साल का था ब्रह्मा कुमारी इसकी बातें सुने तो सबसे अच्छा यही लगा कि भी अपने आप को मैनेज करने के लिए हमें तीन सूक्ष्म शक्तियों को मैनेज करना है, जो एक है मन, दूसरी है बुद्धि और तीसरे है हमारे संस्कार। और तीनों का मैनेजमेंट डिफरेंट है। जब भी मन को प्यार से समझाना, कहा कि भी मन वह जंगली घोड़े जैसा है,
2: डांटना नहीं है।
3: हाँ, जंगली घोड़े को फोर्स से कंट्रोल नहीं कर सकते, प्यार से करना पड़ेगा। हाँ, उसको बहुत पानी पिलाओ, बहुत घास खिलाओ, हाथ फेरो, तो एकदम आप जैसे कहेंगे वैसे जंगली घोड़ा करने लगेगा। मन का भी ऐसा ही है ना। मन को अभी इस केस में भी प्यार से समझाए कि देख शांत हो जा, अभी पढ़ाई में ध्यान दे, जितना तू पढ़ाई में आगे बढ़ेगा और अच्छा पार्टनर तुझे मिल सकता है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ऐसे बहुत सारी बातें मन को प्यार से समझाए। बुद्धि व तर्क की भाषा समझती है, बुद्धि जज जैसी है, आपने खून भी किया, अच्छा एडवोकेट मिल जाए, जज को कन्विंस कर दे कि निर्दोष है तो आप छूट जाए।
2: बहुत सुंदर बात जी।
3: तो ऐसे बुद्धि भी तर्क से समझती है, जज जैसी है। तो यहाँ भी अगर तर्क से अच्छी तरह से बुद्धि को समझा दे तो ये बात खत्म हो जाएगी। और संस्कार न तो प्यार से समझते न तर्क से समझते, संस्कार वो फोर्स की भाषा समझते। संस्कार के ऊपर फोर्स करना पड़ता है कोई भी बात का, यहाँ पर भी फोर्स करे। और उदाहरण, सवेरे जल्दी उठना है, आप नहीं उठ पाते तो फोर्स करो कि भी 5 बजे उठना ही है, कुछ
2: फोर्स
3: भी होली
2: काटना पड़ेगा,
3: एक बार काटना। तीनों चीजें करनी पड़ेगी, प्यार से भी समझाओ, तर्क से समझाओ, और अल्टीमेटली फोर्स से भी अपने आप को उससे जुदा कर दो। थोड़े समय में बिल्कुल भूल जाएंगे इस बात को,
2: क्योंकि भूलना बहुत जरूरी है आगे, क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इतना लंबा इतनी लंबी जर्नी है। बहुत उम्मीद करते हैं कि विकास अगर आप सुन रहे हो तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, लेकिन बाकी और जो दर्शक जो इससे गुजरते होंगे इस उम्र में, उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। अब बात हम करते हैं, क्योंकि हमने रिश्तों की बात करनी थी इस बार, आज इस कड़ी में, और प्यार की बात करनी थी, पेरेंट्स और जो बच्चों का प्यार है, वहां जब रिजेक्शन होती है, क्योंकि प्यार वहां पे भी कंडीशनल हो जाता है, अगर तुम इतना परसेंट लेके आओगे तो मैं तुम मुझसे प्यार करते हो या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम फर्स्ट आओगे क्लास में तो तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो, मेरे राजा बेटा हो, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं और उस उम्मीद पर नहीं खरे उतर पाते बच्चे, तो वो जो रिजेक्शन है वो एक डिप्रेशन में लेके जाती है। हाउ टू हैंडल दैट रिजेक्शन?
3: सबसे पहले तो पेरेंट्स की गलती है,
2: वो तो है,
3: अगर वो कंडीशन डाल रहे हैं, और वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव तो बच्चों पर पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ बच्चे उससे बाहर भी आ जाए और कुछ डिप्रेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले तो हर माता पिता को यह जरूर ध्यान देना है कि उनके अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें भेदभाव नहीं करो, दोनों को इक्वल प्यार दो। माइकल जैक्सन ने बहुत अच्छी बात कही है, उसने कहा कि मेरी माँ तो बहुत गरीब थी, नहीं हम गरीबी में बड़े हुए, कि उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने सबको स्पेशल रखा, हम सभी जो भाई बहन थे सभी को ये लगा कि मैं स्पेशल हूँ, किसी को भी उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया, इसलिए हम सभी भाई बहन जीवन में आगे बढ़ पाए। तो ये सचमुच करना चाहिए, भले आप पैसे नहीं दे सको कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को इक्वल प्यार जरूर दो। कई बार हो सकता है भेदभाव भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तब व्यक्तिगत बात करके उनको समझाया जाए कि भाई किसी को हमने थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, कोई बच्चे को तुम्हें कहीं कम दिया, बट यू आर ऑल्सो स्पेशल। ये बताना चाहता था मैं कि भी उस बच्चे को भी ये समझाए कि भी समझो एजुकेशन में भले आप थोड़े कमजोर हो, तुम्हारा बड़ा भाई तेज है, हमने कहीं उसकी प्रशंसा की, बट यू आर स्पेशल इन सर्टन अदर एरियाज, और उस एरियाज में आप आगे बढ़ो, हम आने उसके लिए आपका हमारा पूरा सपोर्ट है।
2: लेकिन कई बार शिवानी बहन अनजाने ही हो जाता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो कंपेयर कर रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तो अगर उनसे बात करेंगे तो वो तो ये कहेंगे कि हम तो कभी उम्मीद नहीं करते, हम तो कभी बच्चे पे प्रेशर नहीं डालते। आप किसी पेरेंट से बात करके देख लीजिए, वो हर पेरेंट यही सोचता भी है, कहता ही नहीं है, सोचता भी है कि हमने तो अपने बच्चे पे कुछ कोई उम्मीद नहीं लगाई, हमने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया, उसे पूरी आजादी है और वो जो करना चाहता है। अनजाने में ही जब ये हो जाए, बच्चा कैसे हैंडल करे इस रिजेक्शन को या इस एक्सपेक्टेशन को?
4: Actually, I feel के parents love children unconditionally. This is what I feel के मात पिता ही एक संबंध है जो बच्चों को बिना कोई expectation के प्यार दे सकते हैं। अगर इस संबंध में भी वो नहीं है तो फिर और किसी संबंध में ये possible नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्यार तो आप करते हैं, प्यार के साथ साथ आप उनके ही भले के लिए, अपने लिए नहीं, वो अगर डॉक्टर बन जाए उसमें आपको उनके लिए खुशी है कि वो पदवी तक पहुंच जाए, तो आप उसको पुश करते रहते हैं कि आप ये बन जाओ, आप मेहनत करो, आप ये अचीव करो। कई बार जब वो नहीं अचीव कर पाता, आप थोड़ा सा विड्रॉ हो जाते हैं, आपका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका थोड़ा सा बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। दैट इज ऑल्सो टू मोटिवेट हिम एक्चुअली, और टू शो दैट आई एम नॉट लाइकिंग वॉट यू आर डूइंग, यू नो यू शुड डू दिस, बट एक्चुअली The methodology is probably not right. लेकिन वो भी भाव ये नहीं है कि मेरे को नहीं लगता पेरेंट्स एक बच्चे को ज्यादा प्यार करेंगे अगर वो डॉक्टर बन जाए, नहीं, इट्स जस्ट अ वे ऑफ पुशिंग, बट मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ द चाइल्ड परसीव्स इट। बच्चा ये फील करने लगता है कि आज इन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, आज ये मुझे, मैं खुश नहीं कर पाया इनको,
2: वल्नरेबिलिटी।
4: हाँ, तो ये एक्चुअली पेरेंट के दृष्टिकोण से नहीं, आई फील बच्चे के दृष्टिकोण से आता है कि उसे ऐसे लगने लगता है कि ये मुझसे अब प्यार नहीं करते क्योंकि मैं वो नहीं बन पाया जो ये चाहते थे। देन ही फील्स दैट रिजेक्शन। इफ ही जस्ट रिमूव्स दैट इमेज, सी ज्यादा हमारे अपने बिलीफ सिस्टम, अगर वो अपने बिलीफ सिस्टम को हटाए, वो देखेगा पेरेंट इज एज द पेरेंट वॉज, पेरेंट विल नॉट चेंज टूवर्ड्स द चाइल्ड। पेरेंट बच्चे की ही अच्छाई के लिए शायद उनको पुश कर रहे हैं, विधि समवेयर इज डिबेटेबल कि क्या यू नो विदड्रॉ करके या डांट के आप मोटिवेट कर सकते हैं या और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन के साथ आप मोटिवेट कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, और आज के वक्त में जैसा हम कह रहे हैं,
3: मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, मैं लोगों के साथ, बच्चों से, पेरेंट्स से भी डील करता हूँ। कई पेरेंट्स आते हैं, पहले काफी ऐसे होंगे आप जो स्पिरिचुअल अप्रोच ले रहे हो, अच्छा ही है, परंतु आज देखा है पेरेंट्स ने अपनी एम्बिशन बच्चों पर डालना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना है। तो नहीं बना तो आई माइट फील डिप्रेस्ड और फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन उस पर भी होगा।
4: या बट विल द लव फॉर द चाइल्ड रिड्यूस?
3: लव में नॉट, यू नो दैट इज द इशू।
4: हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार, पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाएंगे कि बच्चा वो नहीं कर पाया। अभी इस केस में जैसे आपने कहा पेरेंट डॉक्टर है तो वो चाहता है बच्चा भी डॉक्टर है। कई केसेस ऐसे हैं पेरेंट अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाए तो उनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन क्या उनका स्नेह और प्यार उस चीज पर आधारित है?
3: प्यार शायद कम नहीं होगा लेकिन वो व्यवहार बदले।
4: हाँ, वही बात हो रही
2: है। लेकिन आज के दौर में जब हम कह रहे हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आज के इस वक्त में ये बात तो हम मानेंगे कि विजडम हो या ना हो, वाइज है या नहीं, इंटेलिजेंस लेवल, अवेयरनेस लेवल बच्चों में बहुत ज्यादा है। तो अगर वो बच्चे जो देख रहे हैं प्रोग्राम, माँ बाप जो देख रहे हैं वो तो समझेंगे, और माँ बाप अपनी तरफ से आज के बाद इतनी बात की जाती है माँ बाप के लिए कि माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए, माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये परसीव करना है, ये डिफरेंट तरह से अगर परसीव कर ले तो शायद इतनी मुश्किल ना आए।
4: इट्स आवर वे ऑफ लुकिंग एट इट।
3: 50% है बच्चों को भी, और शिवानी बनी है तो राइट कहा, क्योंकि भी आई एम लाइक नो ऑब्जेक्ट, मैं सफर कर रहा हूँ तो मुझे चेंज करना है, दूसरे चेंज करे या ना करे। तो ऐसे अगर यूथ इससे अफेक्टेड है तो अगर यूथ को हम ये ठीक से मैसेज दे सके कि अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज
2: और
3: करें।
2: हम जैसे बात करते हैं कि खुद ही हमारा एक हर पॉजिटिव थॉट रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, अगर हमें ये लगे ना कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, हम पॉजिटिव रहे, बच्चा भी पॉजिटिव रहेगा, तो पेरेंट्स विल एक्चुअली मे बी यू नो नॉट फील दैट बैड।
4: आई थिंक व्हाट विद द पेरेंट्स इज आल्सो, क्योंकि पेरेंट्स भी तो किस दौर से वर्तमान समय गुजर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। जब आप खुद भरे हुए होंगे तब आप औरों को दे सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी तो शायद वो डिप्रेशन या टेंशन और एंग्जाइटी के दौर से गुजर रहे हैं, तो जहां उनकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती है तो वो उनके व्यवहार में तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाता है और वो रिफ्लेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है।
2: और यहाँ एक और साथ में मुद्दा खड़ा हो जाता है, वो है पीयर प्रेशर। पेरेंट्स के लिए भी पीयर प्रेशर है, लेकिन उससे बड़ा पीयर प्रेशर है बच्चों के पास। एक मेल मेरे पास आया है मानविका का, और वो कह रही है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरी क्लासमेट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मतलब वो अगर फर्स्ट आती है तो मैं सेकंड आती हूँ, लेकिन मैं उस वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं फर्स्ट आऊँ, तो क्या ये कॉम्पिटिशन हो जाएगा, क्या वो मुझे मेरी दोस्ती नहीं रहेगी अगर मैं फर्स्ट आ गई, इस डर से मैं फर्स्ट भी नहीं आना चाहती। तो ये जो प्रेशर ऑफ रिजेक्शन है इस बच्चे का, अगर हम देखें, ये नहीं पता किस क्लास में है, लेकिन इस बच्चे का जो प्रेशर ऑफ रिजेक्शन है कि अपने पीयर प्रेशर, मेरी फ्रेंड है तो क्या अगर मैं उससे ज्यादा अचीव कर गई तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी?
3: नहीं, करे तो भी कोई बात नहीं है, प्लीज यू विल गेट अनदर फ्रेंड।
2: No, but
3: here you are no progressing.
2: No, but then should she fear ki wo fir wo lose out kar
3: jayegi? No,
4: then she doesn't trust the friendship.
2: So,
4: you see, where is it a friendship? Agar if I say ki aap meri friend hain, then your success should give me a lot of happiness. If you're going to say it gives happiness,
2: but it ki ye perceive ye kar rahi hai. Again, perception.
4: दूसरे के दृष्टिकोण में शायद कुछ भी नहीं होगा, ये हमारी अपनी इनसिक्योरिटी है, यू नो, कि दूसरा मुझे छोड़ के ना चला जाए। हम संबंधों पर विश्वास नहीं करते हैं आज, हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं है।

0: अपने पे ट्रस्ट नहीं है, अपने को सारा दिन में इतनी बार धोखा देते हैं तो सारा दिन एक डर में रहते हैं कि दूसरा मुझे धोखा देने वाला है, और वो डर हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से लेकर जाता है. इफ आई ट्रस्ट कि दूसरा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे धोखा क्यों देगा, बट ये मैं ट्रस्ट आप पर तभी कर सकूंगी अगर मैं खुद अपने आप को बहुत ज्यादा धोखा नहीं दूं.
1: हाँ, खुद अपने ऊपर भी कंप्लीट ट्रस्ट होगी.
0: यस.
1: अच्छा, और दूसरी एक और बात, ये आपने कहा कि आप पर मैं पूरी ट्रस्ट करूं, एक और उम्मीद होती है कि आप मुझ पर पूरी ट्रस्ट करें. ये जो विश्वास का एक गेम है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज के वक्त में हम इतने धोखों में जी रहे हैं कि विश्वास के कहीं पूरी परिभाषा ही बदल चुकी है. तो वो जो विश्वास का एक एस्पेक्ट है, खासकर यंगस्टर्स में, ये जो विश्वास टूट के, अगर हम दोस्ती की बात करते हैं, वो जो डिप्रेशन आता है वो भी बहुत खतरनाक होता है. तो वो जो पूरी हैंडलिंग है कि विश्वास वो कायम रहे या वो मुझ पर विश्वास करे, वो कैसे किया जा सकता है?
2: मतलब पहले तो हम अपने आप पर विश्वास करें और फिर लोगों पर भी विश्वास करें, है ना. बेसिकली पीपल आर रियली गुड. ये दोनों अगर स्टेट हुई तो सामने वाला व्यक्ति जरूर आप पर फेथ रखेगा, और अगर नहीं रख रहा है तो उसकी गलती है.
1: लेकिन एक बात ये कही जाती है सिस्टर शिवानी और डॉक्टर साहब की, आज के इस वक्त में अपने आप को बचा के विश्वास करना चाहिए. आप आंख बंद करके विश्वास नहीं, एक आंख खोल के विश्वास करना चाहिए, ये भी कही जाती है, एडवाइस दिया जाता है. हाउ गुड इज दैट, एंड किस तरह का फेथ होना चाहिए?
0: ये एडवाइस पे वो ही देंगे जो खुद उस डर में रहते हैं. You see, you have to have the courage to trust. विश्वास करने के लिए आज के समय में एक्चुअली बहुत नेचुरल है विश्वास करना, लेकिन आज के समय में थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी दूसरे के ऊपर संपूर्ण विश्वास करने में. उसी से डर लगता है. और डर भी इस बात का है, कहीं आप मुझे धोखा ना दे दे, इसलिए मैं विश्वास नहीं करती. क्यों मैं पहले करूं, फिर आप धोखा दे, फिर मैं दर्द से गुजरूं, इससे अच्छा मैं विश्वास नहीं करूं, सेफ चलूं. Why? Because I live with the belief you can hurt me. Okay? जहां से ये belief बाहर गया कि you cannot hurt me, so where is the harm if I trust you? No loss. दर्द, अगर मुझे ये belief है ना कि आप मुझे दर्द दे सकते हैं, तब मैं trust करने में डरती हूँ. क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा से गुजर जाते हैं, trust करते हैं, दूसरा धोखा देता है, फिर सालों साल दर्द से गुजरते हैं. Experience teaches them, किसी पर विश्वास नहीं करो, बहुत तकलीफ होने वाली.
1: कदम कदम फूंक कर रखना चाहिए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक.
0: उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहते. लेकिन जब ये सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा कि दूसरा मुझे तकलीफ नहीं देता, अब विश्वास करना नहीं करना ये मेरी चॉइस है, दूसरा उसको कैसे रेसिप्रोकेट करे वो उसकी चॉइस है, लेकिन वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता. सो आई लाइक टू ट्रस्ट पीपल देन, बिकॉज दैट लाइकिंग मेक्स मी फील गुड. इट मेक्स लाइफ वेरी सिंपल. नहीं तो सारा दिन एक डाउट में चलते जाते
1: हैं. पूरी जर्नी फिर हमारी जो
0: ट्रस्टिंग पीपल मेक्स लाइफ वेरी ब्यूटिफुल.
2: मतलब प्रोटेक्ट करो, जो आपने बात कही उसमें कहीं जैसे फाइनेंशियल बातें आज बहुत सारी, लाखों का नुकसान होना इफ यू ट्रस्ट समबडी, तो तब प्रोटेक्ट करो. नहीं, उसको प्यार से बताओ कि भी ये स्टेट है, ऐसा हो सकता है, एंड नो देन इफ यू हैव ट्रस्ट देयर इज नो हार्म.
1: तो डॉक्टर साहब, आज पूरे रिश्तों को हमने जानने की कोशिश की, खासकर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कि हमने प्यार की बात की, हमने पेरेंट्स के साथ रिश्तों की बात की, वहां जब रिजेक्शन मिलता है, या फिर जो पीयर प्रेशर है, पीयर ग्रुप का जब रिजेक्शन है, तो वो तीनों रिजेक्शन से हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं. उनसे कॉम्बैट एक बार फिर जल्दी से रिकैप करते हैं कि हाउ टू रियली हैंडल दैट.
2: तो यहाँ तो एक बात ऐड करना चाहता हूँ, इफ लिटिल टाइम
1: जी,
2: परमात्मा के प्रति प्यार को जोड़ो. यह एक बहुत बड़ी बात है. और वो कैसे हो सकता है अगर परमात्मा के प्रति प्यार को जोड़ना है? आज लोग भी कहीं मुझे भी प्रश्न पूछते हैं कि भी हम सब ध्यान करना चाहते हैं, कोई ना कोई रीति से कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन मन भटकता है. नहीं, और चीजें याद आती है, व्यक्ति याद आते हैं, वैभव वस्तुएं याद आती है. तो वहां यह बात है, यह सोचो कि भी लोग भी आपको रिस्पेक्ट देते, प्यार देते हैं, और परमात्मा प्यार देते, उसमें फर्क क्या है? जहां से मैंने शुरुआत ही की थी कि जो लोगों का प्यार है उसमें स्वार्थ है, उसमें कंडीशंस है, उसमें डोमिनेशन है, कि परमात्मा जो प्यार देते उसमें कोई स्वार्थ नहीं, भगवान ही हमें निस्वार्थ प्यार देते हैं. नहीं, आज हर व्यक्ति, इवन चाइल्ड साइकोलॉजी में भी माना गया है कि हर बच्चे की आशा होती है कि माता पिता मैं जो हूं जैसा हूं मुझे प्यार करे, कोई मेरी स्पेशलिटी के लिए प्यार ना करे, वो यह सिर्फ परमात्मा के लिए पॉसिबल.

0: चिंते, परमात्मा ही आपको आप जो हो जैसे हो अनकंडीशनल प्यार दे सकते, तो ये सोचो तो ऑटोमेटिकली मन भगवान की ओर जाएगा। और तीसरी बात भी कि डोमिनेशन तो भगवान का है ही है। और एक बात कोई ये भी कहे एक इमेजिनरी एग्जाम्पल, इट्स नॉट पॉसिबल, फिर भी इमेजिनरी एग्जाम्पल कि कोई कहे कि कोई एक व्यक्ति है जीवन में जो मुझे बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार देता है, कोई उसकी शर्त नहीं है, तो क्यों नहीं मैं उसे प्यार करूं? भले आप करिए, परंतु ये सोचिए कि रिश्ते को निभाना है। वास्तव में परमात्मा ही एक ऐसे है कि जिससे कभी आपको जुदा नहीं होना है। उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और कहीं वो आपसे दूर चला जाएगा तो आपको उससे दूर जाना पड़ेगा, तो और डिप्रेशन आएगा। परंतु आत्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है, इसलिए अगर परमात्मा से प्यार जुटाएंगे तो सदा के लिए टिक सकते।
1: वही अल्टीमेटली बात वही आती है कि समर्पण की, जो हमने शुरू में ही बात की कि गिवन इट हैज टू बी टू दैट सुप्रीम सोल, यू नो, जो 100% गिवन की बात है, आज मैं समर्पित होना भी चाहती हूँ, तो वो सुप्रीम सोल को ही समर्पण जो है वो सफल है, क्योंकि वही मुझे अनकंडीशनल दे रहा है। अदरवाइज आत्मा से आत्मा का मिलन कंडीशनल रहेगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वही एक है, जो एक शाश्वत सच है।
0: जिम्मेवारी निभानी है इसमें भी, ये कई बार ये बातें सुनते हैं लोग, समझते हैं हमें डिटैचमेंट हो गए, वैराग आ गया, ये वैराग नहीं लाओ, जिम्मेवारियों को जरूर निभाओ, वो जरूरी है। ये समझो कि मेरे बच्चे हैं, माता पिता है, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा हूँ, परंतु बस एक ट्रस्टी के रूप में कर रहा हूँ।
1: स्नेह का रिश्ता है, एक प्यार का रिश्ता है,
0: वो भी ठीक है, लेकिन मैं ट्रस्टी और कर रहा हूँ। ट्रस्टी तो करोड़ों का कारोबार संभालता है, लेकिन वो सोचता है ये मेरा नहीं है। ब्रह्मा कुमारी इसमें ये बात बहुत अच्छी है कि इसको कुछ भी करो ना ट्रस्टी के रूप में करो, तो उससे बिल्कुल न्यारे रहे।
2: और एक और चीज होती है, जब परमात्मा से प्यार मिलता है तो फिर दूसरों को देना शुरू करते हैं, दूसरों से मांगना नहीं रहता,
1: कटोरा लेके नहीं,
2: या बिकॉज somebody इज फिलिंग यू, जो सोर्स है वो आपको भरता जा रहा है, तो आप भरे हुए हैं, आपको देना भी नहीं है, लेकिन आप भरे हुए हैं तो वो नेचुरली आपसे फ्लो होता जाएगा, देन योर रिलेशनशिप्स बिकम यू नो वेरी लवफुल, बिकॉज यू आर एक्सचेंजिंग यू नो द एनर्जी दैट यू हैव गॉट। आप जहां जा रहे हैं वो आपसे औरों तक ऑटोमेटिकली पहुंचती जा रही है, मांगने की चीज खत्म हो जाती है क्योंकि दूसरे के पास है नहीं देने के लिए, तो why ask somebody for something they don't have?
1: And when we know that there is somebody who has, why not take it from there? बहुत अच्छा लगा इस प्यारे से और खूबसूरत से मुद्दे पे आज हमने इतनी अच्छी बात की। सिस्टर शिवानी और डॉक्टर पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ढाई आकर प्रेम के हमने शुरुआत इसी से की थी, आज प्रेम के उस स्वरूप को जाना जो शाश्वत है, जो सच है, और वो यही कि परमात्मा से किया गया प्रेम सचमुच अनकंडीशनल है और कहीं ना कहीं हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। डिप्रेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स लेकर फिर आपसे मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर आप हमारे से कोई बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो इसी के साथ अब दीजिए इजाजत,
3: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन और मैं आरजे शांतनु आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के एपिसोड में। जिंदगी संगीत है, या ऐसा कहे बगैर संगीत के जीवन क्या है। स्नान करते हुए व्यक्ति गुनगुनाता है, गाड़ी चलाते हुए व्यक्ति गुनगुनाता है, कुछ लिखते हुए, खाना पकाते हुए, हर समय हमारे मन के अंदर कोई ना कोई धुन बज रहा होता है। कभी ये धुन बॉलीवुड के फिल्मों की होती है, कभी ये धुन जस्ट कुछ शब्दों का होता है जो हमने हमारे जीवन से उतारा हुआ होता है। कई बार ये धुन लोक संगीत के होते हैं जो आपने अपने मम्मी से या दादी से, नानी से, या अपने आस पड़ोस के लोगों से सुना होगा। ये धुन हम गुनगुनाते हैं और इन धुनों में हमारे जीवन के अनुभव बुने हुए होते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में साथियों, एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में है, डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी हमारे बीच में है, ये एक गिफ्ट कहेंगे हम हमारे लिए एक तोहफा कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर माधुरी जो है वो हमारे बीच में पहाड़ों से आई हुई है। पहाड़ों का गीत, उत्तराखंड के गीत, लोक संगीत को उन्होंने धरोहर की तरह बचाए रखा है और उसको आगे भी बढ़ा रही हैं। तो हम हमारे बातचीत में डॉक्टर माधुरी जी से बहुत चीज सुनेंगे, बहुत चीज जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। माधुरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: सबको प्रणाम करती हूँ, सबको मेरा नमस्कार।
0: माधुरी जी, आपका नाम ही मधुरता से भरा हुआ है, तो इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, कुछ गुनगुना दीजिए जरा।
1: हमारे यहाँ एक मांगल लोकगीत होता है जिसमें कि मंगल कामना होती है और सबके लिए ईश्वर से जय और यश प्रदान करने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो वही है कि

0: इसी तरह से गणपति देव के को शुरू में उनके उनसे प्रार्थना की जाती है, उनका आवाहन किया जाता है। इसी प्रकार सारी देवी देवता, जल देवता, थल देवता, सब से विनती की जाती है कि सबको यश और जय प्रदान करें, पूरा समाज का कल्याण करें। ये मंगल कामना का लोकगीत है।
1: मैं तो आपके मंगल कामना में मैं पूरी तरीके से खो गया था। मुझे पता भी नहीं अब मैं आपको क्या सवाल पूछूं। क्योंकि जो धुन आपने पेश किया उसमें एक सम्मोहन शक्ति है, एक सुला देने की शक्ति है, जहां पर कोई आत्मा जो बहुत दिनों से तड़प रही हो या अंदर में एक खलबली हो एकदम से शांत कर देने की ताकत है। ये धुन इतना पावरफुल था, मुझे लगता है हमारे श्रोता साथी जो सुन रहे होंगे वो भी एक इस प्यारे से सम्मोहन करने वाली लोरी को सुनते हुए, मतलब आपने कहा जशोगान है, मंगल कामना है, बट मेरे लिए बहुत सुकून देने वाला ये सॉन्ग था। इसी से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज हमारे देश में, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से बहुत प्रकार के संगीत उपलब्ध हैं, उसमें से लोकगीत भी एक है, शास्त्रीय संगीत है, उपशास्त्रीय संगीत है, फिल्मी संगीत है और फिर लोक संगीत है। अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा प्रचलन में होता है वो फिल्मी संगीत है। ऐसे में लोक संगीत को बचाने में या उसको संरक्षण देने में कितनी तकलीफ आती है, कैसा रहा है आपका संघर्ष?
0: देखिए, संगीत जो है ऐसी चीज है कि जो हमेशा साथ में रहता है, संग ही तो है। मेरे पिताजी बोला करते थे, आज मुझे उसका आभास होता है कि उन्होंने कितनी बढ़िया परिभाषा दी इसकी, कि मैं टीचर थी अपने लैंसटाउन में, ये गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज लैंसटाउन में, तो वहां पर जो है मैं अकेली थी, सब भाई बहन गांव जा रहे थे, तो मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि ये अकेली कैसे रहेगी, कौन इसके खाना बनाएगा, कैसे रह पाएगी यहाँ पर, एक हफ्ता इसको रहना है यहाँ पर। तो पिताजी ने कहा कि अरे संग ही तो है उसके। तो माँ ने कहा कि संग ही कौन है, उसके साथ तो कोई भी नहीं है। पिताजी ने कहा संग ही है, संग ही तो संगीत है, संगीत है ना उसके साथ, वो अकेली नहीं है। ऐसा संगीत, ऐसी चीज होती है कि गायन वादन नृत्य तीनों कलाओं को साथ लेके चलता है और सबको एक साथ मिलकर रहना सिखाता है संगीत। तो शास्त्रीय संगीत एक ऊंची पायदान है। देशी संगीत और मार्गी संगीत दो संगीत होते हैं। मार्गी संगीत तो वो होता था जिनमें अनहद नाद होता है, जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उसको ये ऋषि मुनि उसका प्रयोग करते थे। दूसरा होता है देशी संगीत। देशी संगीत में एक होता है शास्त्रीय संगीत और एक होता है भाव संगीत। तो शास्त्रीय संगीत तो नियमबद्ध होता है, वो तो ऊंची पायदान है, लेकिन जो भाव संगीत है उसमें सुगम संगीत और लोक संगीत। अब सुगम संगीत ऐसी बढ़िया चीज है कि वो उसके दोनों हाथ में लड्डू है, वो शास्त्रीय संगीत भी ले लेता है और लोक संगीत से भी ले लेता है और उसके अपने फिर मौज उड़ाता है वो। अब जो लोक संगीत है वो मूल है शास्त्रीय संगीत के भी और लोक सुगम संगीत के भी। मूल में क्या है, लोक संगीत, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है राग रागनिया कहां से उत्पन्न हुई, थाट से। थाट कहां से आए, सप्तक से। सप्तक कहां से आया, स्वरों से। स्वर कहां से आए, नाद से। नाद कहां से आए, तो मधुर ध्वनि से। ध्वनि कहां से आई, आम जनता से। तो लोक संगीत सर्वप्रथम इस दुनिया में आया और उसके बाद उसको नियमबद्ध करके सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत का रूप दे दिया गया। तो लोक सुगम संगीत में बहुत सारे फिल्मी गाने ऐसे भी हैं जिनमें लोक संगीत के धुने हैं। कैन चुराया म्यार बड़ालो, ये हमारा गढ़वाली लोकगीत है, ये घसियारी लोकगीत।
1: और इसका फिल्मी वर्जन हमने सुना है बिछुआ वाले सॉन्ग में। बिल्कुल,
0: चढ़ गई हो पापी बिछुआ। बहुत सारे लोकगीत हैं ऐसे जिनको कि फिल्म संगीत, फिल्म वालों ने उसको, क्योंकि वो तो विद्वान लोग हैं, वो थोड़ा सा सुनेंगे उसी में वो चमत्कार कर देते हैं, और उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया हमारा लोक संगीत। तो ये उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना उसको जीवंत रखा, जो कि इस दुनिया से बिल्कुल हमारे क्षेत्र में खत्म हो चुका था जी। इस तरह से
1: माधुरी जी, जैसे आपने कहा कि कुछ विद्वानों ने इनको सुना और उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन विद्वानों को ये भी बताना चाहिए था कि ये प्रेरणा उनको लोक संगीत से मिली, क्योंकि जब मैंने कहीं से प्रेरणा ली और उसको मैं एक्नॉलेजमेंट नहीं देता हूँ, उसको मैं वो धन्यवाद नहीं प्रदान करता हूँ समाज के सामने, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति छुप जाता है, वो संगीत छुप जाता है, वो रिसोर्स जहां से मैंने वो प्रेरणा ली, वो संसाधन छुप जाता है। और इस छुपने में ही कहीं ना कहीं उसका जो लाइफ है वो छोटा हो जाता है। तो जैसे आपने ये बिछुआ वाले सॉन्ग को मेरे को एकदम तुरंत से याद दिलवा दिया, मुझे वो फिल्मी सॉन्ग तो याद था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसकी प्रेरणा हिमाचली गीत से आई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि लोक संगीत को बचाने में या उसको संरक्षण देने में कौन से मुख्य आयाम होते हैं?
0: देखिए, लोक संगीत को संरक्षण देने के लिए तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले अगर हमको संगीत के लिए हम समर्पित हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है और हमारी जो भावी पीढ़ी है उसका भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता से अपने मूल को जाने, क्योंकि मूल अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो गुनेर जी की जो ये दो पंक्तियां मुझे हमेशा झकझोरती रहती हैं और शायद ये मेरे मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं कि भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। जड़ हमारी लोक संगीत ही है, और जब लोक संगीत से हम कुछ वो करते हैं तो कभी कभी हम जिससे हम प्रेरणा लेते हैं उसका नाम नहीं ले पाते, उसको उनको भी दोषदारी नहीं मानती हूँ मैं, क्योंकि मैं हर चीज को सकारात्मक लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ईश्वर ने फिर मुझे क्यों सौंपा, फिर इसे सौंपा सौंपा कि मेरा पूरा जीवन इसमें निछावट है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना खाना ना सोना ना रहना, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक चीज चाहिए मुझे, और वो भी संगीत। मैंने इसको सीखा बहुत बहुत परेशानियों से, बहुत विडंबनाओं में थी, बहुत झकझोरता हुआ जीवन मेरा रहा जीवन भर, बहुत कठिन परिश्रम कर करा, कांटों पर चली तब मैं, पर मैं डिगी नहीं। ये उसने ही दिया, ऊपर वाले ने ही मुझे इसका ये गुण उसने ही दिया मुझे। तो मैं
1: माधुरी जी, तो मैं ये जैसे आपने अभी बताया कि आपका पथ कोई साधारण या सरल पथ नहीं रहा है, शुरुआत मैं आपके ही जीवन से करना चाहूंगा कि जब आपके आसपास में ऐसे लोग रहे होंगे जिनको आपने देखा होगा कि उन्होंने जीवन के कठिन परिस्थितियों में, जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ एक किशोरावस्था की कठिनता होती है कि क्या करें। आज भी हमारे टीनेजर्स इस दौर से गुजरते हैं कि अभी मुझे क्या करना, चलो पढ़ाई तो हो गई, व्हाट शुड बी माय फील्ड ऑफ लाइफ, मुझे क्या चुनना है, ये चुनाव करना बड़ा कठिन होता है। ऐसे में लोग जनरली वो फील्ड चुन लेते हैं जहां पर धन बहुत आसानी से दिखता है, इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया या आदि आदि इस प्रकार के पेशे लोग चुन लेते हैं जहां से उपार्जन बहुत सहज लगता है। लेकिन आज भी हम ये मानते हैं कि कला, साधना, संगीत ये वो क्षेत्र हैं जहां पर धन उपार्जन शायद इतना ज्यादा नहीं है। और आज से कई वर्षों पूर्व आपने ये कठिन निर्णय लिया, तो क्या प्रेरणा थी, कैसा रहा आपका सफर, थोड़ा आपके बारे में बताएं।
0: ये सबसे पहले तो मैं अपने घर से ही इंसान सीखता है, और मेरे पिताजी जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उन्होंने भी बहुत यातनाएं सही हैं, तो उनको ही देख देख कर मैं, मेरे को लगता था कि हम जीवन में अगर कुछ करना चाहें तो जितने भी हमारे बीच में रुकावटें आती हैं हमको उनको बिल्कुल अडिग होकर के उन रुकावटों को दूर कर देना चाहिए, लेकिन एक साथे सब सधे सब साधे सब जाए, एक ही मार्ग चुनना पड़ेगा। अब मेरे साथ ये है कि मुझे कला में भी बहुत अच्छी थी, मैं ड्राइंग ड्राइंग में भी बहुत अच्छी थी, मैं ये क्या बोलते हैं उसके लिए
1: तीरंदाजी,
0: बंदूक, हाँ तीरंदाजी नहीं, बंदूक बंदूक चलाने में भी
1: अच्छा
0: नंबर
1: बंदूक,
0: एक थी मैं, क्योंकि लैंसडाउन हमारा ये पूरा गढ़वाल राइफल्स का ये पूरा सैनिक छावनी है, तो वहीं पर जीवन मेरा बीता, तो देखा देख देख के मेरे दिल में भी वही ये बंदूक भी चलाना मैंने सीखा, और वो भी बहुत अच्छा था मेरा। मुझे मैं रेसर भी बहुत अच्छी थी, घुड़सवारी भी कर लेती थी, लेकिन सब एक किनारे रख करके एक ही सूत्री कार्यक्रम जब हम करते हैं तो उसके फल फल स्वरूप हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी
1: तो
0: कभी
1: संगीत को क्यों चुना आपने?
0: संगीत
1: आप सब
0: इसलिए
1: में
0: चुना,
1: अच्छे थे, फिर संगीत को क्यों चुना?
0: संगीत इसलिए चुना उसमें कि इसमें जो है ना, इसमें गायन वादन नृत्य तीनों है, और जब मैं गाती थी, जब अकेले बैठे रहो तो गा रही हूँ, जब थोड़ा सा मन कर रहा है कि नृत्य करूं तो नृत्य भी कर दिया, और फिर कभी कभी कनस्तर भी बजा लेती थी मैं, जब कनस्तर जब साज नहीं था ना, तो कनस्तर बजा लेती थी। बंदर आ रहे थे गांव में, गांव में जाती थी, 2 महीने की छुट्टी होती थी हमारी, और गांव में जाते थे हम जो है कनस्तर बजाते थे, बंदरों को भगाते थे, तो उनके सामने गाना भी गाती थी मैं, फिर कनस्तर बजा।
1: हाँ, ये तो बहुत अच्छा है कि बंदर भी भाग गए और साथ में आपने एंजॉय भी कर लिया। मुझे यहाँ एक चीज पूछना था, जो शास्त्रों में लिखा है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम मुच्यते, तो ये जो है क्या ये लोकगीत के लिए भी है?
0: जी हाँ, ये लोकगीत के लिए भी है। सबसे पहले गाना ही हुआ, और गाने के बाद फिर थोड़ा सा मनुष्य ने जो है, जब प्रकृति में मनुष्य आया होगा, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी, सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी, तो हमारे लोकगीतों में है कि

0: जल थल में जब सबसे पहले ओम शब्द स्थापित हुआ तो उसे आहत नाद पैदा हुआ, तो वही था। और उसके बाद मनुष्य कीड़े कीड़े मकोड़े सब पैदा हुए होंगे, उसके बाद मनुष्य जन्म हुआ और मनुष्य सबसे पहले बोलना सीखा होगा उसने, और उसने फिर जब वो खुश हुआ होगा तो गाना शुरू कर दिया उसने, जब और खुश हुआ तो बजाना शुरू कर दिया, और जब पराकाष्ठा हो गई नृत्य, जब बहुत ही खुश हो गया तो नृत्य करना भी शुरू हो गया। तो यही तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं इसीलिए। और नृत्य जो है वो वादन के अधीन है, वादन गायन के अधीन, जब गाया जाएगा तो उसमें वादन होगा, जब वादन होगा तो नृत्य होगा। और वैसे तो हर चीज में जो है ताल है, हर चीज में लय है, चाहे हम सांस ले रहे हैं, चाहे पानी बरस रहा है, चाहे कुछ भी है, सब में ताल है। और ओम शब्द तो अपने आप में गायन है ही। तो इस तरह से इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं।
1: और आपके पिताजी ने ये भी कहा था कि संग ही तो है।
0: हाँ जी।
1: तो इसीलिए संगीत का ये परिभाषा जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संग ही तो है। संगीत हमेशा हमारे अंदर रहता है, कभी हम उसको जाहिर करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता है।
0: बिल्कुल। और यही संगीत मेरे साथ नहीं होता तो मैं कोरोना पीरियड में जो है मैंने 15 किताबें लिखी।
1: वाह।
0: वो जो अंदर मेरे दिमाग में जितना रहा होगा वो सब मैंने किताबों में लिख दिया, और वो भी स्वरलिपि सहित। स्वरलिपि सहित वो मर नहीं सकता वो संगीत। ऐसा लोकगीत है, ऐसे ऐसे लोकगीत है कि बहुत बढ़िया लोकगीत। चल

0: जी गदाना आयूं चाहिए। आह कितना बढ़िया है, तो इसको कैसे तिरा सकती हूँ मैं, नहीं तिरा सकती।
1: इसका तो मतलब क्या था वैसे जो आपने अभी गाया?
0: ननद भाभी दोनों हैं वो, और वो नदी के किनारे खड़ी हैं और वो घास काटते हुए, उन्होंने अब घर जाना है वापस, तो भाभी ननद से कह रही है कि ननद ननद रानी ये जो नदी बह रही है इसके उस तरफ जाएंगे और वहां मीठी बेर खाएंगे।
1: वाओ।
0: और ननद फिर बोल रही है भाभी से कि भाभी तुम ज्यादा नहीं हो रही हो, ज्यादा लालच नहीं कर रही हो बेरी के लिए, तुम्हें लगता नहीं है कि इतनी नदी बह रही है, बह जाओगी, और ये नदी आई हुई है, वहां जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा उसके लिए। मतलब नीति परक लोकगीत भी है, कितनी बढ़िया जो भाभी ननद।
1: और मुझे ऐसा लगता है इस तरीके का संवाद जो है ननद और भाभी का आजकल टीवी में देखने को नहीं मिलता। टीवी में भी तो ननद भाभी एक दूसरे का वो एक दूसरे के पीछे ही पड़े हुए होते हैं, लेकिन इस तरीके के संवाद जो है ये इतने मधुर है, इतने रोमांचक है और इतने संवेदनशील है कि ऐसे संवाद अगर हमारे टीवी पे भी आए, सिनेमा में भी आए और घरों में भी आए, तो घरों में भी इसका असर होगा कि ननद और भाभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं, वो एक दूसरे की सहेली भी हो सकते हैं।
0: इतनी बढ़िया सहेली होती है कि इसके इसके बराबर कोई नहीं हो सकता। देवर भाभी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी दोस्ती होती है उनमें, और कभी कभी तो ऐसे भी मैंने देखा है कि अगर जवान है और बहू, उसने उस पहले जमाने में जो है बाल भी भाभी हो जाते थे और सास भी खत्म हो गई, ससुर जी भी खत्म हो गए, और तब जो है भाभी नहीं पाला देवर। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। भाभी भी माँ भाभी, माँ समान है वो भाभी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं जिनको कि मैंने संरक्षित कर दिया किताब के रूप में,
1: अलग वो भी लॉकडाउन के समय। हाँ, जब लोग परेशान हो रहे थे कि क्या करें, हाँ, समय नहीं कटता है, उस समय आपने समय को इतने अच्छे से पिरो दिया, बहुत बढ़िया।
0: तो मैं सोचती हूँ, मैं तो अपने को ही दोषदारी समझती हूँ उसमें, क्योंकि ईश्वर ने अगर मेरे को इस चीज के लिए भेजा है तो फिर मुझे उसका संरक्षण भी करना चाहिए था। जब मैंने सब महिलाओं को सिखाया लोक संगीत और वो उनको स्टेज पर मैं प्रदर्शन करवाती हूँ और लोग सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लोक संगीत तो लोक संगीत है, उसके बराबर तो कुछ नहीं है दुनिया में। तो तब जो है फिर मेरे को, मैं उनके साथ जाने लगी थी तो फिर मेरा ये सब छूट गया था कि किताब कैसे लिखूं। तो मेरे लिए ईश्वर ने कहा कि चल एक जगह में बैठ जा, और ये है तेरे लिए सजा, उसने सजा मुझे दी। तो फिर मैंने उसका सदुपयोग करा और फिर उसको जो है वो वरदान साबित हो गया मेरे।
1: जी, अभी जब आपने कहा कि ईश्वर ने आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया, तो वही मैं वहां से ही फिर से शुरू करना चाहूंगा कि जब आपने चुना कि भाई संगीत को ही मुझे लेना है, क्योंकि इतने सारी चीजें हैं जिनमें मैं पारंगत हूं, बट संगीत वो है जिसको मुझे करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो क्या क्या लोगों ने आपको नहीं बोला होगा कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, तुम पढ़ लिख करके कुछ और कर सकती हो या कुछ और कर लो, या आपने अपने दोस्तों को भी देखा होगा कुछ और करते हुए? तो ये जो अंदर में आया आवाज कि नहीं ईश्वर ने मुझे इस चीज के लिए चुना है, इसका कोई घटना, कोई कहानी, कुछ ऐसी बात जो आपको लगता हो कि हाँ ये वो बात थी जिसकी वजह से मैं संगीत के साथ जुड़ी रही?
0: असल में ऐसा है कि मेरी आदत यह है, अगर कोई किसी का वो करता है कि ये नहीं है, बेकार है, ये बेकार है, तो मैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी आदत है, अगर कोई किसी को कुछ नहीं आ रहा है और वो उससे बोले बिल्कुल बेकार खाना बनाया, तो मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसे बना, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी कर। तो सकारात्मक रूप में लेंगे आप अगर सब चीजों को, तो वो सकारात्मक होगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं 2.5 साल की थी, तो हमारे यहाँ लैंस टाउन में उस समय, उस बहुत पहले 50 के दशक में, तो उस समय मेरे को वहां पर एक डुगडुगी पीटी कि छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को यहाँ पर ले आए, हम उनको एक कोई कार्यक्रम करवाएंगे। तो मेरे पिताजी मेरे को ले गए वहां, तो वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, और मेरे को राधा बनाया उन्होंने, तो अरे एक लड़की और थी उसको कृष्ण बनाया। तो हम लोग दोनों फर्स्ट आए उसमें पूरे प्रदेश में, और जब फर्स्ट आए तो फिर मेरा एडमिशन करा दिया उसी समय। और जब स्कूल में एडमिशन हो गया तो फिर रोज मेरे ही गुणगान हो रहे थे वहां पर, फिर कभी मेरे को स्टेट रैली में ले जा रहे, कभी मेरे को डिस्ट्रिक्ट रैली में ले जा रहे, और सबके मुंह पर मेरा ही नाम था सब पे। तो यही होता है, तो वो ईश्वर ने पहले मेरे को खूब वो दी, क्या खूब, मतलब सबके नजरों में बहुत बढ़िया बना दिया। और उसके बाद जब मैं 6th क्लास में आई, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा अभी स्टेज पर नहीं जाना, और गाना भी नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते लड़कियों को गाना बजाना नाचना। तो फिर मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं तो बिल्कुल जमीन में धस गई और मैं जो है फिर बीमार पड़ गई। फिर एक मुरादाबाद की रहने वाली थी प्रिंसिपल हमारी, तो वो हमारे घर में आई। उन्होंने पिताजी से कहा कि आपने क्या कराई, आप जो है माता पार्वती के पुजारी हैं, आप उनको मानते हैं, और आपने जो है सरस्वती माता का मुंह बंद कर दिया, आपको इतना बड़ा वरदान दिया उन्होंने और आपने उनका मुंह बंद कर दिया। तो पिताजी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। पिताजी ने कहा कि मेरे को जो है ना मेरे समाज से मेरे को निष्कासित कर दिया जाएगा और समाज से मेरे को मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लड़की को नहीं गायन वादन नहीं करवा सकता। तो उन्होंने कहा कि आप छुप कर भी तो करवा सकते हो इसको, आप इसको मरते हुए देखोगे क्या, ये जिंदा नहीं रहेगी इसके बिना। तब फिर पिताजी ने कहा कि ठीक है फिर ऐसे करता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए तो करूंगा ही, मुझे समाज से लुक करके। तब वो मुझे छुपा करके तब नजीबाबाद ले जाते थे और 4 दिन के लिए ले जाते थे, तो बोलते थे बेटा बेटा 40 दिन का याद करेगी, तू जाने तेरा काम जाने, अगर तू संगीत सीखना चाहती है तो। तब उन्होंने मेरे को 4 दिन अगर ले गए होंगे तो फिर उन्होंने कहा कि किसी से मत बोलना, झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं है और किसी से बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर तेरे से कोई पूछे कहाँ गई थी तो ऐसे बोलना पिताजी के साथ गई थी, बस पिताजी के साथ गई थी, खत्म बात। और उसके बाद फिर मैंने छुप करके, हमारे यहाँ एक होता है एक कमरा होता है, कमरे के ऊपर एक छोटा सा कमरा जैसा बनाया रहता है, वहां सामान रखा रहता है। तो उस कमरे में जाकर के मैंने रियाज करा बहुत धीरे आवाज में, बहुत धीमे आवाज में, मेरे गरे मेरे सारे गे ऐसे करके, ताकि आवाज बाहर ना जाए। और जैसे ही मैंने हाई स्कूल करा अपने स्कूल से, उसी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नेस्टोन में पहली गढ़वाली महिला म्यूजिक टीचर बन गई मैं। और उसके बाद तब सबको पता लगा है ये लड़की कहाँ जा रही है भाई। अभी मेरे को बहुत सारे पुराने मेरे जो मेरे मेरे बुजुर्ग है वो मेरे को मिलते हैं तो मेरे को मेरी बात बताते हैं कि हम बेटा ऐसे सोचते थे, हमने सोचा कि ये फ्रॉक पहनने वाली लड़की यार ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही है, ये रोज साड़ी पहन के कहाँ जाती रहती, कैसे ड्रामा करती रहती है, ये इतने ड्रामाबाज है, ऐसे से बोलते थे हम। अब तब पता लगा हमें कि तू तो टीचर बन गई। तो सबने कहा कि ऐसे टीचर कैसे बन जाएगी, ना इसने बीएड करा ना इसने कुछ करा ना इसने बीटीसी करी ना कुछ करा। तब सबको पता लगा कि भाई गाना बजाना भी विषय होता है। तब उन्होंने कहा बेटा हमारे बच्चों को भी कर ले। तब हजारों बच्चों को सिखाया, आज वो प्रिंसिपल हो के बड़े बड़े कलाकार हो के रिटायर हो रहे। उसके बाद फिर एक प्रेरणा स्रोत बनी थी। और दूसरी चीज, जब गाँव में जाती थी मैं तो अपनी भाभी दादी नानी सबके साथ उनके पल्ला पकड़ करके और जंगल चल जाती थी, और तब वहां पर जोर जोर से गाती थी मैं, बहुत जोर जोर से। तो जितनी देर में गाती थी उतनी देर सारे पक्षी चुप रहते थे, और जैसे ही मैंने गाना बंद कर देती थी वैसे चिल्लाना शुरू कर देते पक्षी। तब मेरी भाभी मुझसे कहती थी चल तू ही गा, ये इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया, कितना चिल्ला रहे हैं ये। फिर मैं गाना शुरू कर देती थी। तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि गांव में कोई नहीं था, वहां जंगल होता था बिल्कुल, वहां की आवाज कहीं नहीं जाती थी, जंगल में ही गुम होती थी। तो ये भी था मेरे साथ, जब कभी मेले वेले में गई होंगी तो वहां पर अगर कोई बुजुर्ग महिला मेरे को मिली तो पिताजी मेरे को अगर जलेबी उलेबी खाने के लिए देते थे तो मैं उनको खिला देती थी कि दादी मुझे गाना सुना दो आप, तो मुझे गाना सुनाती थी, है ना।

0: अभी इस तरह से लोग गीत उनसे सुना, पर एक जब आपकी लगन अच्छी होती ना तो ईश्वर रास्ता जरूर देता। पहले उसने मुझे टीचर बनाया, फिर उसने मुझे आकाशवाणी नजीबाबाद में भारत की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर बनाया। भारत की पहली महिला, उस जमाने में सब पुरुष होते थे म्यूजिक डायरेक्टर, पहली म्यूजिक डायरेक्टर बनी महिला। तो वहां पर भी फिर मेरे को एक मंच मिल गया, एक रास्ता मिल गया। तब मैं हर गांव में गई और गांव में जा जाके जितनी महिलाएं अच्छे गाती थी उनको रेडियो से अप्रूव करवाया, फिर उनको उनको कलाकार बनाया। वो भी उनका भी जीवन सुधर गया और फिर जो है वही लोकगीत जो है अपने दिमाग में भरती गई और अब लोकडाउन में वो सारे लिख दिए, क्योंकि वो लोग तो इस दुनिया से जा चुके, जिनसे मैंने सीखा वो इस दुनिया से जा चुके, उन बेचारों को किसी ने पूछा तक नहीं। तो फिर मेरे को फिर मैंने लिखा, फिर आज मैं सबके सामने ये बताती हूँ कि भाई ये हमारा लोकगीत है कितना सुंदर है। अब जैसे वो दयारे दयार, वो जो था दयारे दयार चढ़ गए पापी पिछुआ, ऐसे बहुत सारे लोकगीत है। ओ पार भीड़ की बसंती छोरी रुमा झूमा गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो ये है कि नहीं, कितने बढ़िया बढ़िया लोकगीत है, कितने सुंदर सुंदर लोकगीत है। और उनमें क्या नहीं है, रहन सहन खान पान रीति रिवाज सब कुछ है लोकगीतों में। लोक संस्कृति के असली असली संवाहक है लोकगीत, उनमें सब कुछ है। अगर एक माँ का बर्ताव अच्छा नहीं था तो वो भी लोकगीत में गाए गए। अगर एक सास का बर्ताव बहुत अच्छा है तो वो भी लोकगीत में। अगर एक सास का बर्ताव अच्छा नहीं है तो वो भी लोकगीत में। उसमें कोई नहीं दुराभाव कहीं नहीं है, सब यथार्थ उकेरा गया है, सच्चाई। और वो जो है आज वो
1: इसका मतलब है। इसका मतलब जो लोकगीत है वो जस का तस है, जैसा किसी ने अनुभव किया वैसा उसने रख दिया। उसमें कोई लेप शेप या उसमें किसी प्रकार का ऑर्नामेंटेशन नहीं किया गया, डाइल्यूशन नहीं है,
0: ना ना यथार्थ है, सारा यथार्थ जैसा था वैसा ही है। और ऐसा आश्चर्य भी होता है लोगों के, क्यों ऐसा भी हो। और धुने कितनी सुंदर थी, कितनी सृजनात्मकता थी उन महिला उन लोगों में, कि कितनी सुंदर सुंदर धुने उन्होंने करी। और वही राग जो है फिर हमारे राग तो ये है ना कि कोई धुन है कोई वो है, और उनको नियमबद्ध करके वो राग का नाम रख दिया। अब जैसे वो है सारे गा पधा सादा पगरे सा हो गया, जिया बेना गीना जिया ढोल बाजी, भोपाली राग है इसमें, कितना सुंदर है। गजिया गुड़ी के नवेली गुड़ी, ये जो है दुर्गा राग, कितने सुंदर सुंदर राग है। ऐसा भी देखा मैंने कि कर्नाटक पद्धति का राग भी है हमारे लोकगीतों में,
1: एक तो सुनाई कर्नाटक पद्धति शैली का।

0: सा नी ध प म ग सा, ये गोपिका बसंत राग। अभी इसी राग को अगर दक्षिण भारत के लोगों को मैं इस लोकगीत को सिखाऊंगी तो कितना बढ़िया गाएंगे वो। आहा, पूरा विश्व मतलब वसुधैव कुटुंबकम है इन लोकगीतों पूरा विश्व।
1: माधुरी जी सच में आज मुझे ना बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं जागा हूँ, मैं जैसे सो रहा था, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था, मैं बचपन से संगीत में रुचि रही है, सीखा है, और हमेशा से मुझे ऐसा लगता है जैसे शास्त्रीय संगीत जो है वो नींव है, ऐसा लगता था
0: ना।
1: लेकिन और ऐसा लगता था कि भाई लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत कैसे जाएगा, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है वहां पर कि रोजमर्रा के कामों को छोड़ करके कोई संगीत सीखने बैठे, ग्रामर सीखे, व्याकरण सीखे संगीत का। तो मुझे ऐसा लगता था शायद लोकगीतों में इतना शास्त्रीय व्याकरण नहीं है, लेकिन आपसे बात करते हुए, आपकी बातों को सुनते हुए ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैं उल्टा सोचता था। सब कुछ शुरू तो लोकगीत से हुआ है और धीरे धीरे वो परिष्कृत होते हुए शास्त्रीय रूप लिया है उसने
0: जी। और फिर मैं सोचती हूँ ना कि ईश्वर जो है, ईश्वर ने मुझे बात बात में मुझे उसने सजेशन भी दिया है। मुझे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था लखनऊ में, वो संगीत निर्देशिका के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ जब लखनऊ में, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई लोकगीत गाइए आप, तो मैंने गाया था, तो उन्होंने कहा कौन से राग में है, मैंने कहा ये भूपाली राग में है, तब उन्होंने कहा भूपाली राग सुनाइए, फिर मैंने भूपाली राग सुनाया। तो इस तरह से मेरे को लगा कि मेरे को यही लोकगीतों पर पीएचडी करनी चाहिए। तो तब मैंने कहा कि गढ़वाली लोकगीतों में राग राग दिया, तब मैंने उसमें बताया इतने राग जो है ये लोकगीतों से ही उपजे हैं।
1: ये भी एक इंटरव्यू है लेकिन लखनऊ वाला नहीं, ये तो दिल से दिल का इंटरव्यू हो रहा है। इसमें अगर आप वो गीत गा सके जो आपने अपने इंटरव्यू में गाया था तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: वह यही था कि जिया बिना गीना जिया ढोल बाजे, कितना सुंदर। और ये मैंने बचपन में जब गांव में गई होंगी वो उसमें, तो वहां पर मैंने उनसे सुना। और ये नाग देवता का, नाग भाई थे तो उनके जो है माता थी तो बहुत।
1: और ये जो गीत आपने गाया, इस गीत में झेणामता मैंने आवाज वर्ड सुना जो कि शायद ओडिसी डांस में भी आता है।
0: अब ये देखिए, आपने शास्त्रीय संगीत में देखा होगा त्रिवट या चतुरंग, आपने सुना उसमें देखा होगा, तो वही त्रिवट ही है इसमें। इसमें शब्द भी है, अगर इसमें जो है हम वो स्वर बोल देंगे, और उसमें जो है झेणामता, झेणामता हमारे यहाँ ढोल होता है, ढोल सागर, तो ढोल के बोल है वो झेणामता, झेणामता।
1: हाँ। तो और यही ढोल के बोल जो है ओडिसी नृत्य में भी आता है, झेणामता झेणामता। तो मतलब कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी संगीत बसा हुआ है वो कनेक्टेड है, वो आपस में जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संगीत जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र से, वहीं से हुई, ठीक है। उसके बाद जो है मनुष्य जन्म भी शुरू हुआ, लेकिन संगीत की उत्पत्ति भी भगवान शंकर ने यहीं पर, क्योंकि पार्वती का जन्म भी यहीं हुआ, भगवान शंकर भी यहीं निवास है, तो वो संगीत की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। तो वो ही फिर सारे दुनिया में फैल गई धीरे धीरे धीरे धीरे। तो स्वाभाविक है यहाँ का, यहाँ उत्तराखंड में जो है ना पूरा हिंदुस्तान निवास, पूरा विश्व निवास करता है। इसीलिए तो मैं वसुधैव कुटुंबकम की तरह उसको प्रणाम करती हूँ। आप देखिए कि उड़ उड़ रे मारा काड़ा रे कागड़ा, जिद मारे पियो जी घर आवे, जिद मारे पियो जी घर आ, खीर खांडला जी मणा जी माऊ, है कि नहीं, हमारे यहाँ भी है सही।

गा सुना की ठूंडी है। मतलब हे कागा, तुम वृक्ष में बैठो और सबको संदेश भेजो और निमंत्रित करो सबको, और शगुन वचन बोलो तुम, और तुम्हारे बराबर वचन कोई नहीं बोल सकता, और तुम ये करोगे तो तुमको मैं सोने की चोंच दूंगी, ये सोने की वो चांदी की तुम्हें खुर दूंगी, और तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगी, खीर खांड खीर खिलाऊंगी। कितनी बढ़िया बात, वही भाव वहां है, वही भाव यहाँ। कोई गुजराती गरबा देखिए आप, गुजराती गरबा देखिए आप, कि गौराबा पर आधारित होता है गरबा। गौराबा गौराबा का ही, गौराबा से ही गरबा बन गया, निमित्त गौराबा गौराबा की है। और गौराबा के पास जो है पूरे विश्व भर की जो राजकुमारियां होती थी उस जमाने में, वो उनसे शिक्षा लेने आती थी। तो गुजरात से भी आई होंगी। अब गुजरात से कौन आई ये तो अब भावी पीढ़ी को ढूंढना पड़ेगा, गुजरात से कौन राजकुमारी आई माता से सीखने के। और तब उन्होंने सीखा, माता ने उनको चौंपला लोक गीत सिखाया, वो भी ऐसे ऐसे कर ऐसे वो होता है। और उसमें नृत्य भी बिल्कुल पदचाप भी वही है, हाथ भी वही है, सब चीज वैसी है, भाव भी वैसी, और धुन भी मतलब सब कुछ एक जैसा है। तो इस तरह से तो वो चौंपला लोक नृत्य सीखा होगा उन्होंने। तो वो अपने साथ जो है न तो धुन ले जा पाई, न वो उसके बोल ले जा पाई, वो अपने साथ क्या ले गई, रिदम। और रिदम के साथ वहां जब ले गई तो वो स्वाभाविक है, भगवान कृष्ण का जो वो डांडिया है उसके साथ उन्होंने उसको मिक्स कर दिया, और वो गरबा के नाम से उसको वो करा, संरक्षित किया उन्होंने। तो उन्होंने उसको जीवंत कर दिया इस चौंपला को। तो ये है उसका घोरन।

0: तारे द्वार है, कोई गर्व, कोई फर्क है? कुछ फर्क नहीं, एक ही चीज। तो हम इस तरह से पूरे विश्व को हम एक सूत्र में बांध सकते हैं संगीत के द्वारा। तो इसमें बहुत काबिलियत है, बहुत ज्यादा, संग ही रहता है, कोई इसको सीमा रेखा में नहीं बांध सकता इसको सीमा।
1: ये जो आपने बात कही कि संगीत जो है पूरे विश्व को जोड़ सकता है, जोड़ता ही है
0: जी,
1: कुछ भी नहीं तो सिंपल हैप्पी बर्थडे टू यू भी जोड़ता है लोगों को, सब जगह की धुन में गाते हैं लोग। लेकिन संगीत जो है कई कुरीतियों का भी सामना कर सकता है, उनको भी तोड़ने का कदम उठा सकता है। क्या आपने अपने जीवन काल में इस चीज को होते हुए या किया है या करते हुए आपने कुछ ऐसे उदाहरण है आपके पास जहां पर आपने लोक संगीत के माध्यम से कुछ कुरीतियों को तोड़ा है या उनके तरफ लोगों का ध्यान खींचा है?
0: शुरू में तो जो है शास्त्रीय संगीत सीख करके फिर मैंने उसका वो कुरूतियों को तोड़ा। फिर दूसरी चीज ये है कि पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर बनी, वो भी एक सकारात्मक मार्गदर्शन था मेरे सबके लिए। और तीसरा चीज ये है कि यहाँ पर जब देहरादून आई मैं, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ किसी को कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता था। फिर वो महिलाएं जो घर में खाना बनाती हैं, क्योंकि एक माँ सब कुछ काम कर सकती, सफाई भी वही करती है, खाना भी वही बनाती है, डॉक्टर भी वही बनती है, सब कुछ वही, बच्चे भी वही पालती है, सब कुछ कर सकती है, तो इस संगीत क्यों नहीं बना सकती वो आगे, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती। तब फिर मैंने उनको मांगल लोकगीत जो मैंने आपको सुनाया था सबसे पहले, वो मांगल लोकगीत संस्कार लोकगीत फिर मैंने उनको सिखाए अपने घर में। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी कि हमको दीदी ये मांगल गाने के लिए ना किसी के घर भेजेंगे नहीं हमारे हाथ में, मतलब घर वाले। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं भेजेंगे तो मैं जाऊंगी ना, जो मेरे साथ चलना चाहे चले। तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ चले गए। जब मैंने एक जगह गाया तो मैंने मेरे भाई के लड़के की शादी थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन इनको सबको 1000-1000 रुपए टीका लगा दे और इनको दक्षिणा दे दे 1000-1000 रुपए। तो जब सब उनको पता लगा कि है पैसे भी मिलते हैं इसमें, तब सबसे बड़ा रुपया। तो फिर सबके सब है आज जो है सैकड़ों हजारों ग्रुप बन गए, क्योंकि जिनको मैंने सिखाया उन्होंने सबने ग्रुप बना लिया अपने। कुछ सीखा तो सही, आज वो कहां से कहां लाखों रुपया कमा रही हैं वो महिलाएं, अपना घर चला रही हैं, अपने सशक्त कर दिया उन्होंने अपने आप को, और किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पति से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों का देखरेख भी करती हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करा रही हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। दूसरी चीज ये है जब इन महिलाओं ने जैसे ग्रुप बना लिए, तो इन्होंने फिर पुरुष वर्ग के उसमें आश्रय में रहे कि वो ढोलक बजाएंगे, वो हारमोनियम बजाएंगे, तब हम उनके साथ जाएंगे, या हम कैसे करें कैसे करें। तो मैंने कहा तुम ढोल दमाऊ सीखो, तो ढोल दमाऊ हमारी बहुत पौराणिक परंपरा है, वो खत्म हो चुकी। तो जब पुरुष वर्ग नहीं कर रहा है उसको तो तुम करो, तब उनको मैं उनके गले में ढोल डाल दिया मैंने। तब फिर वो जो है मेरे साथ, तब उन्होंने ढोलक वो करा। तब तक यहाँ पर एक कोई IAS ऑफिसर थी, उन्होंने कहा कि दीदी आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जरा आप उनको यहाँ स्टेज पर करा दे। तो मैंने यहाँ पर उनको स्टेज पर भी उनको ढोल दमाऊ बजवाया मैंने उन महिलाओं से। तो सारे कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो कि नकारात्मक भी होते हैं, तो उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, तो वो मेरे पास आई, तुमने क्या करा ये महिलाओं के गले में डाल दिया ढोल, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ नहीं होता होगा, मैं कर सकती हूँ इसको। तब उसने कहा, मैंने कहा तुम लोग बन गए अंग्रेज और तुमने अपनी संस्कृति सब खत्म कर दी, तुम हो गए अंग्रेज, तुमने अपनी पोती के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल दिया, किसका काम है बताओ, जवाब दो किसका काम है, जो हमारे भाई हैं उनके उनका काम है, तुमने भी तो अपनी पोती को उस लड़की पुरुष वर्ग का काम करवाया, तो तुमने क्यों करवाया, तुमने उस समय क्यों नहीं सोचा ये चीज। बिल्कुल चुप होगी, ऐसी बैठ गई होगी जिसकी कोई हद नहीं है ना। तो ऐसे उनके लिए जवाब भी बहुत सकारात्मक होना चाहिए, तब वो सकारात्मक सवाल से कोई सामने उसको डिनाई नहीं कर सकता है ना, ये बहुत जरूरी है।
1: और माधुरी जी, जैसे आपकी कहानियों को मैं सुन रहा हूँ तो मुझे भी और मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये लगता होगा कि संगीत ना केवल हमारे अंदर रस लाता है लेकिन हमको सशक्त भी बनाता है, सामना करने की भी शक्ति लेकर के आता है और हमारे अंदर उपार्जन के नए नए तरीके ढूंढ के लाता है। जैसे मांगल गाने वाली महिलाओं को एक उपार्जन का साधन मिल गया कि भाई मैं तुम्हारी मंगल कामना कर रहा हूँ लेकिन उसमें करते करते मेरे परिवार के लिए भी मैं कुछ संजो सकता हूँ,
0: बिल्कुल
1: ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें जो अभी की पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसको इसमें भी इतना ही मजा आता है जितना आपको या आपके जनरेशन के लोगों को आता है?
0: देखिए जब मैं उनके सामने ना वैज्ञानिक रूप से सामने रखती हूँ किसी चीज को, तो उसको मानते हैं वो, और फिर मेरे पास सीखने भी आते हैं, हमको ये वाला सिखा दीजिए। अब हजारों लोक गीत हैं, तो उनमें से अगर कुछ भी सीखेंगे तो वो भी बहुत है, बहुत बड़ी चीज है। अगर अगर 100 बच्चों में से 10 ने 10 ने भी सीखा ना, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जो 100 बच्चे में 90 लोग कुछ भी करें तुम चलो, और 10 लोग अगर सीख रहे हैं तो बढ़िया तरह से सीखें और उसको फिर आगे बढ़ाएं, तो उसमें जो है उसमें सकारात्मकता होती है। दूसरी चीज ये होती है कि उसमें सबका भला होता है, और उसमें कोई जो है ना, कोई जिस समय वो इधर उधर कोई उठपटांग बात सोचता है तो उस समय संगीत भी अपने साथ रहता है, तो फिर उसको सकारात्मकता भी मोड़ देता है वो, है ना। जैसे देखा आपने कि चाहे कितने बड़े हो जाओ, चाहे कितने बड़े भी हो जाओ तुम, और उसके बाद तुमको जमीन में कोई पटकता है, बहुत बहुत सारी ऐसी होती है कि तुम्हारे को उसकी भाषा अच्छी नहीं लगती, तुमको उसने विचलित कर दिया, तुम्हारे लिए उठपटांग बात कर दी, तो अगर तुम्हारे साथ संगीत है ना, तो तुम एक वैसे ही दर्द दर्द वाला गाना गा दोगे तो उससे तुम्हारा सारा दर्द गायब हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है, जब तुम्हारे में खुशी होती तो तुम खुशी का गाना गाते, जब तुम अकेले रहते हो, मुझे अकेले रहने दो, तो अकेले कमरे बंद करके भी बैठा हुआ है कोई, यार उसको रो रहा है वो, तो उस समय भी अगर कोई चाहे भजन गाए, चाहे वो फिल्मी गाना गाए, चाहे वो सुगम संगीत का कोई भी गाए या लोकगीत गाए, जो भी गाएगा, तो उसको उसका साथी होता है, वो उसका दर्द खत्म कर देता है। ये भी होता है। अब मुझसे लोग बोलते हैं कि दीदी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं इनका क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ है ना ये, बस सब एक जैसे नहीं होते।
1: हाँ, तो इसका मतलब भले सामने जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, भले सबके सब इस चीज को नहीं समझे और ना अपना सके, लेकिन कुछ भी अगर अपनाते हैं तो भी ये बहुत बड़ी बात है। और उन कुछ लोगों को ढूंढने के लिए आपने अपने जीवन को हमेशा से तत्पर रखा है, एक तपस्विनी की तरह आपने तपस्या की है। शुरुआत आपने जंगल में पक्षियों को गीत सुनाने से की थी, लेकिन कब उनको गीत सुनाते सुनाते आप वो कोकिला बन गए जो पूरे समाज को गीत सुना रही, इसका आपको भी नहीं पता चला। लेकिन नजीबाबाद से आपका कुछ विशेष कनेक्शन है, क्योंकि आप सीखने भी वहीं जाते थे, आकाशवाणी के डायरेक्टर भी आप वहां के बने, तो नजीबाबाद के लोग जब सुनते थे आकाशवाणी में आपके कार्यक्रमों को, कोई ऐसा रिमार्क, कोई ऐसा एप्रिसिएशन, कोई ऐसा प्रोत्साहन जो आपको याद आता हो, क्योंकि आज हमारे बीच में रेडियो के श्रोता हैं, तो जी, जी। कैसे रेडियो, क्योंकि आप टीवी में भी जा सकते थे, आपने आकाशवाणी को चुना, तो क्या कनेक्शन है रेडियो का?
0: अब देखिए आकाशवाणी में गई मैं, तो मेरे लिए फिल्मों से भी बहुत सारे आए, बहुत सारे मेरे को फिल्मों में भी काम करने के लिए, क्योंकि शक्ल भी ठीक ही थी उस समय, तो
1: अभी भी बहुत अच्छी है
0: तो इसलिए जो है वो मतलब हर कुछ ड्रामा भी कर सकती थी मैं, उसमें भी मैं सब कुछ गा भी सकती थी, और तो मेरे लिए मतलब आए थे पिताजी के पास, तो पिताजी ने कहा कि वो तो नहीं जाएगी, वो मना करती है, उसने बस उसी में संलग्न है वो, कुछ जाएगी नहीं कहीं, तो मेरे को कितना उन्होंने प्रलोभन दिया लेकिन मैं नहीं गई। तब फिर मैं क्या करा कि जब मैं वहां पर चली गई तो एक महिला थी मैं, तो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो वहां पर घूंघट में महिलाएं रहती थी, तो उनको भी मैं बाहर लेके आई, अगर कोई महिला बाथरूम में गा रही है मैंने सुन लिया उसको, तो उसको भी सीधे आकाशवाणी में कलाकार बना के, और आज बहुत बड़ा नाम उनका होता है, तो वही अपने लिए बहुत बड़ा पुरस्कार मेरे को लगता है, इससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं है। आज वो मैं नजीबाबाद जाती हूँ तो मेरे को छुप कर जाना पड़ता है, किसी को पता न लगे, नहीं तो एक बोलेगा दीदी मेरे घर, एक बोलेगा दीदी मेरे घर, और बस फिर मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, कई महीने गुजर जाएंगे मेरे को सबके घर जाने जाने में ना, तो इसलिए फिर मैं कभी कभी, अभी जब से पद्मश्री मिला तब से मैं, वो मेरे को कितना बार बुला रहे हैं लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही, तो मैंने कहा जरा सब फ्री हो जाऊंगी तब जाऊंगी, पर नजीबाबाद मेरा क्या बोलूं, मेरे लिए तो मेरा जीवन पूरा वहीं गुजरा, और 32 साल मैंने वहां सर्विस करी, असली जीवन तो वही बीता मेरा, जवानी वाला ये सारा जो कर्मठता जिसमें मैंने दिखाई, और क्या नहीं करा वहां, नाटक भी लिखे मैंने, नाटक भी प्रसारित करे, एक अगर चपरासी अगर बैठा हुआ है तो उसको भी एक रोल दे दिया मैंने, चल इसको याद कर, चल इसको ये बोल, हाँ अगर ये माता तुम्हारी जय हो ये धारावाहिक बनाया, तो उसमें जो है अब इतने आर्टिस्ट को मैं ला नहीं सकती थी बहुत सारे, फिर उनके फिर एक रूल रेगुलेशन भी होता है कि 3 महीने के पैसे पहले इनको बुकिंग नहीं दे सकते, 3 महीने बाद दे सकते हैं, ये भी था, फिर बहुत सारे नियम भी होते हैं, बहुत सारे नियमों में तब्दीली भी मैंने उनको भी करवाने के लिए बहुत कर जोड़ प्रयत्न करा, और जो है तब जो ये धारावाहिक बनाया एक धरोहर, उसमें जो है उसमें बहुत सारे सारी मतलब रोहिलखंड और उत्तराखंड की पूरा पूरी धरोहर है उसमें संरक्षित आकाशवाणी में। तो उसमें नाटक भी है, उसमें कथाएं भी है, उसमें लोकगीत भी है, उसमें सब कुछ है। और फिर इसी के साथ साथ जो है उन्हीं उन्हीं दिनों में जब मेरे पर इतना बड़ा वज्रपात हुआ कि मेरे पति दूसरे लोक में चले गए, तो फिर मैं उसमें कोमा में ही चली गई थी, लगभग कोमा में। अब देखिए कि कोमा में क्या चली गई, मतलब मैं दूसरे लोक में भी चली गई थी और उसके बाद 20-25 सेकंड के बाद फिर मेरी जान वापस आ गई। और वही चीज मैंने आपके यहाँ जब मैं वहां गई माउंट आबू में, तो वही जो आपका ये मधुबन है उससे पहले जब मैंने देखा वहां पर, तो मैं जो है स्तब्ध रह गई, क्योंकि वो मैंने जब मैं दूसरे लोक में गई थी तो वही ले गए थे मेरे को भगवान शंकर अपने पीछे पीछे, और फिर

0: उन्होंने मेरे को वहां से वापस भेजा और तब मेरे में प्राण वहां पर, तब डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा इनका। उसके बाद 3 साल तक मैं लगभग कोमा में ही रही। तब मेरे ऑफिस वाले मेरे को गाड़ी में ले जाते मरी हुई जिंदा लाश को, और फिर उन्होंने स्टूडियो में बैठा करके तब मुझसे बोल, दीदी इसमें इसके बाद क्या है, दीदी इसके बाद क्या है। तब उन्होंने मेरे को पुनर्जीवित करा। जब मैंने अपने थीसिस लिखी गढ़वाली लोगी तो मैं राग रागनी, तो वो जब उसमें कर नहीं पाई मैं, तो फिर वो फिर दोबारा से मेरे को अप्लाई करना पड़ा। फिर मैंने उसका अब अप्लाई करा, तो फिर वहां के जो प्रोफेसर थे वो मेरे घर आए। फिर उन्होंने, मैं दिन में भी नहीं सोती थी, रात में भी नहीं सोती थी, बस आंखें खुली रहती थी। तो बोलते थे कि दीदी क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या मतलब है, कौन लिखेगा वो? पहला चैप्टर ये है कि गढ़वाली लोकगीतों में भौगोलिक अध्ययन, तो कौन लिखेगा? अच्छा, मैंने कहा लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, लिखती जाओ। 4,000 पेज लिख गई उस स्थिति, 4,000 पेज लिख गई। और तब उन्होंने मेरे को जीवंत करा, उनके मैं धन्यवाद देती हूँ। कितने बड़े लोग हैं वो लोग ना, तो एक नौटियाल, डॉक्टर नौटियाल है, डॉक्टर भट्ट है, सब लोग। तो इन्होंने जो है फिर मेरे को जीवंत करा। और फिर मैंने, तब जो मेरे गाइड थे तो उन्होंने कहा कि दीदी कितने पेज लिखे। मैंने कहा देख लो 4,000 पेज है ये। तो कहने लगी कि 300 पेज होने चाहिए। तब उसमें कार्ड की केवल जो है 300-400 पेज की। मैंने कहा 400 से ज्यादा कम नहीं कर सकती मैं, 400 पेज की तब वो थीसिस मेरी जमा हुई, तब उसको मेरे को डॉक्टरेट मिली ना। तो इसलिए इंसान अगर अपने आप, मतलब दूसरे तो उसको जान देते ही हैं, लेकिन खुद भी उठना पड़ता है, खुद भी सजग होना पड़ता है ना। तो इसलिए बहुत
1: दूसरे तो जान देंगे लेकिन खुद भी उठना पड़ता है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा लाइन है, बहुत बड़ा सशक्त करने वाला एक प्रेरणादायी वाक्य है। लेकिन आपकी कहानी जो है कईयों को प्रेरणा देती है, और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो ये कि न केवल 2018 में भारत सरकार ने आपको एक सशक्त नारी, नारी सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन 2021-22 में आपको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। ये जो पुरस्कार है, ये जो सम्मान है, ये दरअसल उस व्यक्ति का नहीं है, परंतु उसके पीछे जो वो विचार है, वो जो प्रेरणा है जिससे उस व्यक्ति ने ये मुकाम हासिल किया है, उस विचार को पुरस्कृत किया जाता है, उस विचार को मानोन्नत किया जाता है। इसलिए माधुरी जी, आपका नाम तो मधुर है ही, आपके जीवन में हर प्रकार का रस रहा है, लेकिन फिर भी जो माधुर्य रस है वो सबसे ज्यादा खिल करके आता है। आपने अभी हमसे जितनी भी बातें की उसमें मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं उनको भी ये उमंग उत्साह आएगा कि उनके आसपास में भी कोई ऐसा धुन गुनगुनाने वाला व्यक्ति हो अगर, तो उसको वो सुने जरूर और उस धुन को अपनाए जरूर। क्योंकि लोकगीतों में, जैसे आपने कहा, लोकगीतों में हमारे पूर्वजों का, हमारे प्राचीनतम इतिहास का प्राण बसता है, तो इन लोकगीतों को धरो के रखना, संजो के रखना, इनको संरक्षित करना केवल एक माधुरी जी का कर्तव्य नहीं है दोस्तों, मेरा, आपका, हम सबका कर्तव्य है। मैं तो यहां तक भी इस मंच के थ्रू कहना चाहूंगा कि माधुरी जी आप एक ऐसी शख्सियत हैं इस देश के लिए जिनके कहे हुए वाक्यों पर सरकार भी बहुत ज्यादा गौर करेगी। मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर स्कूल में हर बच्चों को अपने अपने क्षेत्र के लोकगीतों को जरूर कंपल्सरीली सिखाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर ना केवल अपने क्षेत्र के प्रति जागरूकता, प्यार और भावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ उन लोक कलाकारों के लिए भी भावना बढ़ेगी जो इस चीज के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। तो मुझे लगता है ये रिक्वेस्ट मैं आपके थ्रू सब तक पहुंचाना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक, मैं खुद भी अपने यहाँ के स्कूलों में भी मैं चाहती हूँ ऐसा कि अगर एक स्कूल में मैं जाकर के 4 लोकगीत भी सिखा दूंगी, 4 लोकगीत, 4 लोक नृत्य, 4 किस्म के साजों को उनको सिखा सकूंगी, तो वो अगर 1,000 भी स्कूलों में गई मैं, तो 4,000 लोकगीत संरक्षित हो जाएंगे, जीवंत हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और कल नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा जमाना आएगा कि अपने माता पिता को भी भूल जाएंगे कि माँ का नाम क्या रहा होगा, पिताजी का नाम क्या रहा होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे हिंदुस्तान से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है, पूरे विश्व में फैली। और देखिए आपकी कि मतलब इसमें जो है बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जैसे ये पद्मश्री मिला मेरे को, तो ये ईश्वर ने सोचा होगा कि ये नहीं तो यहीं दुबक के रह जाएगी अपने ये करने। तो इसलिए इसको सबके सामने आना बहुत जरूरी है। वरना एक गुरु तो जो है ना पर्दे की

पीछे ही रहता है, तो मैं पर्दे के पीछे ही थी, मैंने सबको आगे बढ़ाया लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। अभी भी मेरा आदत वही है कि बस अपने सबको सिखा दो और जाओ, और बढ़िया आहा बहुत सुंदर ना, तो ऐसा भी है। तो ये भी उन्होंने सामने लाए तब आपको आपको भी पता लग गया कि मेरे से बात करो। तो यही कहां से होता वरना, तो इसलिए मैं बहुत जरूरी है ये कि एक दूसरे से मेल मिला। और ये सीमा रेखा नहीं होती, मैंने आपको बताया कि पूरे एक ही भाव है, सब सब में एक ही भाव है ना, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ एक वो है, इनमें नीति परक लोकगीत भी है ना, नीति परक भी कि झंगोरा की बाला, झंगोरा की बाला, सारे गा मगर सा आहा, भैरवी राग है इसमें। अब देखिए

0: बदर। अब इस लोकगीत में कहा गया है कि तेरे बहुत सारे बच्चों से तो मेरे दो बच्चे ही अच्छे हैं, अगर वो कुछ वो अच्छे बच्चे निकलेंगे तो, बहुत सारे बच्चे अगर काबिलियत ही नहीं है उनमें तो क्या करना उनका, है ना। ये भी कहा गया है इन लोकगीतों में, हजारों साल पुराने लोकगीत है। आज हम बोल रहे हैं कि दो बच्चे अच्छे होते हैं, और जो है कि गोरी मुखड़ी है, गोरी है बिल्कुल, मुंह बहुत गोरा है, और उसमें कुछ लक्षण ही नहीं है, उसमें कोई वही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है उनमें कोई, या कुछ गुण ही नहीं है, तो क्या करना उस गोरी मुखड़ी का। तो 10 दिन चलेगी, जब तक जवानी है तब तक रहेगी, क्या करना उस गोरी मुखड़ी का अगर उसमें काबिलियत नहीं है। उससे तो मेरी चपटी नाक वाली ही ज्यादा बढ़िया है अगर वो गुणवान है। ये भी कहा लोगों की कितनी बढ़िया बातें हैं, मतलब जो हम बात कई शब्दों में नहीं बोल सकते वो हम एक लाइन में बोल देते हैं लोकगीतों में, कितनी बढ़िया बात है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी, सब में काबिलियत सब में होती है, लेकिन उसको देखना पड़ता है कि हमने हम में कौन सी काबिलियत है, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ तो मैं, ये नहीं कि मैं दूसरा काम उसमें फेल हो जाओ तो क्या फायदा, उसी चीज को चुनो जो तुम्हें काबिलियत है।
1: तो जैसे आपने बताया कि लोकगीत जो है इतनी लंबी लंबी बातों को दो शब्दों में सार रूप में ला सकता है, वो शक्ति है, ऐसे अभी हम आपकी शक्ति को परखने वाले हैं एक रैपिड फायर राउंड के साथ, जिसमें हम आपको एक कड़ा सवाल देंगे और उसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा और एकदम तुरंत देना होगा। अच्छा। तो माधुरी जी मुझे लगता है आप रेडी है।
0: हाँ।
1: ओके, तो पहला सवाल आपके लिए, लोकगीत क्या है?
0: लोकगीत अपनी आत्मा है।
1: वाह, आप तो बहुत कड़ी खिलाड़ी लग रहे हैं, आपके लिए सवाल भी थोड़े और कड़े होने चाहिए। आपने पूरे भारत देश का भ्रमण किया है, भारत की सभ्यता के बारे में आपने पढ़ाई भी की है, जानते भी हैं, भारत क्या है?
0: भारत तो भरत मुनि जो है, तो भरत जो थे ना वो हमारे यहीं पैदा हुए थे, शकुंतला के पुत्र, तो भरत पूरा हमारे यहीं है, तो भरत ने सब कुछ करा, तो इत्तेफाक से वो भी, मैं उसी भूमि की रहने वाली हूँ, तो मैं तो भारत से प्रणाम करती हूँ।
1: संस्कार क्या है?
0: संस्कार जो हमारी पूर्वजों ने हमें दिए हैं, जो हमारा घर घर से उपजता है संस्कार, जिसमें हमारी पहचान हो, वो हमारे संस्कार।
1: संघर्ष क्या है?
0: संघर्ष तो वो है कि जो हम डिगे ना, और चाहे रास्ता कैसा भी हो हम चलते चले जाएं और उसको मात दे दें।
1: सफलता क्या है?
0: सफलता तो सफलता ही है जो कि कुछ तो करती है, लेकिन ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए उसको, वो गिरा भी सकती है।
1: संगीत क्या है?
0: तंग रहने वाला।
1: संगीत तो है,
0: तंग ही तो है।
1: माधुरी कौन है?
0: माधुरी तो वो है कि जो एक माँ है, वो धुरी ही है, पूरे परिवार की धुरी ही है, तभी वो माधुरी बन सकती है।
1: माधुरी जी आपसे बात करते हुए तो मुझे ऐसा लगता है 10 एपिसोड आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि केवल आपके साथ बात करने में मजा नहीं आता, जो बीच बीच में आपने पूरे इस इंटरव्यू को जो आपने अपने धुनों की खूबसूरती के साथ जो पिरोया है ना, ये दैट इज प्रीशियस, मतलब ये अनमोल है, और इस वजह से मैं तो चाहूंगा कि आपसे हम और भी मिले, लेकिन आपका समय बहुत बेशकीमती है, लेकिन फिर भी आप जरूर हमको समय दे ताकि हम आपसे ऐसी ही कुछ और बातें करें। हाँ। जिससे हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
0: अरे काबिलियत आप में है ना, तब आपने मेरे को ऐसे ऐसे दिन याद दिलाए कि जिनको मैं फटाफट बोलती रही, तो कितनी, ये भी तो बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन भी तो अपने आप में बहुत सुरीला होना चाहिए।
1: आपका आपका आशीर्वाद है। माधुरी जी, मैं इस कार्यक्रम का अंत अपनी आवाज से नहीं, आपके धुनों से करना चाहूंगा, तो इसलिए एंडिंग अगर आपको एक बहुत सुंदर सा गीत गा करके करें, और उस गीत का थोड़ा भाव पहले सुना दे और फिर उस गीत से एंडिंग करें।
0: ठीक है, अब ये जो है सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी, अनुरोध ही होता है, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, है ना, तो उनसे मैं ये गुजारिश और अनुरोध करना चाहूंगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कभी मत सोचना कि मेरी उम्र बहुत बड़ी होगी अब मैं कैसे करूंगी, अपने पीछे अपने भूतकाल को देखें, और उससे जो है जो आप नहीं कर सके उसको अब आप कर सकते हैं बुढ़ापे में भी, और क्योंकि मन बूढ़ा नहीं होता, तन बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन नहीं होता, इसलिए बहुत काबिलियत सब में होती है, और उसको ढूंढो अपने अंदर से, और उसके बाद उसको परिलक्षित करो सबके सामने, और फिर उसके ऊपर समर्पित हो, लेकिन ये नहीं है कि आज एक करा कल दूसरा करा परसों तीसरा करा, नहीं, एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, एक सूत्री कार्यक्रम, यार ये बस मेरा मन भर गया, अब नहीं करता मैं। अरे भाई उसके जड़ तक जाओ, उसको पूर्ण रूप से ढूंढो उसको, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि संगीत सीख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो फिजिक्स वो कर रहे होंगे, तो संगीत में फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी है, सब कुछ है संगीत में, क्योंकि उसके बीणा के 36 इंच लंबे तार पर स्वरों की स्थापना करी गई है, तो वो तो फिजिक्स ही है ना। और उसमें जो है 7 स्वरों को स्थापित किया गया। लेकिन हमारा ऐसे ऐसे लोकगीत हैं जिसमें कि बोला गया है कि 9 स्वर होते हैं, 9 सुरिया बांसुरी। अब जीतू बग्रवाल जो था उसकी 9 सुर की बांसुरी थी, और तब परियां उसको हरण करके ले गई थी। या भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आए थे हमारे केदारनाथ साइड में, इस साइड में हमारे हिमालय पर्वत पर, तो उन्होंने भी यहाँ पर 9 सुरिया बांसुरी बजाई थी भगवान शंकर को थोड़ा सा उनको। तो बहुत जरूरी है कि ये 9 स्वर कौन से, पहले 3 ही स्वर होते थे, उसके पास 7 स्वर बने, वो भी तो विद्वान थे, उन्होंने भी तो 7 स्वर ढूंढे। तुम 9 स्वर ढूंढो ना, 9 स्वर कौन से हैं। बहुत सारे लोग गीत ऐसे इन 7 स्वरों में भी नहीं आते, ये मैंने देखा है ना। इसलिए कोई भी चीज पूरी तब होगी जब उसको समझोगे तुम, कि उसके पीछे भागोगी जब, है ना। और पूरा कौन करेगा, हमारी भावी पीढ़ी करेगी उसको पूरा। और मेरी जरूरत जब भी पड़ेगी मैं जरूर सबके सामने, क्योंकि अपने साथ कुछ नहीं ले जाना चाहती मैं इस दुनिया से, मैं तेरा तुझको अर्पण करना चाहती हूँ। तो मैंने एक किताब जब अभी छपवाई, मांगल दो गीतों की किताब, उसको मैं भगवान बद्रीनाथ जी के शिव चरणों में अर्पित करके आई, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ना, हमको उसको संरक्षित करना और पूरे विश्व को उसके साथ जोड़ना और पूरे सबका भला करना, सबका भला करना। अब ऋतु मारी तो करी तो बड़ी, ऋतु मारी तो करी तो बड़ी। अब ऋतु ये कठिन नहीं है, ऋतु मारी तो करी तो बड़ी, कौन ऋतु सबसे बड़ी है, ऋतु मारी ऋतु बसंत बड़ी, बहुत सरल है, ये सबकी समझ में आएगा, इसलिए मैं इसका अर्थ नहीं बता रही। ऋतु मारी तो करी तो बड़ी।

0: देव पाड़ो, देव माँ देव पाड़ो, गंगा माँ गंगा को गंगा पाड़ी, गंगा माँ गंगा भागीरथी पाड़ी, देव माँ देव को देव पाड़ो, देव माँ देव माँ देव पाड़ो, नारियो माँ नारी को नारी पाड़ी, नारियो माँ नारी व सीता पाड़ी, और वेदों माँ वेद को वेद पाड़ो, वेदों माँ वेद सामवेद पाड़ो। संगीत सबसे बड़ा है विषय, सामवेद है उसमें। तो ये हमारा लोकगीत है, और इसको मैंने जब मेरठ यूनिवर्सिटी में सिखाया बच्चों को, क्योंकि संगीत की कोई सीमा रेखा नहीं होती, उन्होंने मेरे को बुलाया था, मैंने वहां बच्चों को सिखाया, और ऐसे ऐसे लोकगीत सिखाया कि उन्होंने उन लोकगीतों में कथक करा, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे बढ़िया लोकगीत है, और ये इनमें उन्होंने चौंपला और थड़िया सारे लोकगीत करे, तो कितनी बढ़िया बात। तो ये है मेरा लक्ष्य भी यही है, और सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार है कि मेरे अपनी संस्कृति को सब संरक्षित करें, जहां भी जो रह रहा है वहां की संस्कृति को संरक्षित, ये सबका कर्तव्य है। इसमें कर्तव्य में कोई अहंकार भी नहीं होता, और उसमें निर्वहन करने के लिए ईश्वर रास्ता भी जरूर देता है, अगर सच्ची दिल से अगर आप करोगे।
1: तो सुना दोस्तों आपने, अगर सच्ची दिल से अगर आप करते हैं तो उस कार्य को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईश्वर भी आपको मदद करता है, आपके आसपास के लोग भी आपके मददगार बन जाते हैं, और वो लक्ष्य फिर आप पा ही लेते हैं। तो माधुरी जी से हम बात कर रहे थे आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में, जिसमें हम आपसे ऐसे शख्सियतों का मुलाकात कराते हैं जो कि अपने कर्तव्य से उन्होंने देश को एक नई परिभाषा दी है। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी हमारे एक ऐसी भारत की बेटी हैं जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है, भारत की एक परिभाषा में एक स्वर अपना भी जोड़ा है। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी से हम फिर कभी दोबारा मिलेंगे, और उनसे फिर से ऐसे ही हम उनके मधुर आवाज में उनके गीतों को सुनेंगे, लोकगीतों का आनंद लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन की तरफ से मैं आरजे शांतनु आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

के साए, लेकिन साजन तुम नहीं आए। ढलते जाए शाम के साए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए वहां, वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: विश्वास और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियाँ बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन।
2: नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बीके लीना और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल थोड़ा पीछे छूट गया है, वो है सादगी। जी हाँ, सादगी यानी सिंप्लिसिटी। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान घर, लेकिन क्या असली खुशी इन चीजों में है? कभी सोचा है एक कप चाय की चुस्की लेते हुए अपनों के साथ कुछ पल बिताने में कितनी शांति मिलती है, या फिर सुबह सुबह उगते सूरज को देखना और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना? ये छोटी छोटी चीजें, ये सादगी हमारे जीवन को कितना खूबसूरत बना सकती हैं। सादगी का मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ न हो, इसका मतलब है जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना, दिखावे से दूर अपने दिल की सुनना। तो आज से कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में थोड़ी सादगी लाने की, अपनों के साथ वक्त बिताइए, प्रकृति को महसूस कीजिए और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए। याद रखिए, असली खुशी सादगी में ही छिपी है।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो खुशियां बांटो।
3: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Bliss.
1: Thank you.
0: Sister, हमारी बातें हो रही थी रिश्तों पर, कैसे किसको एनर्जी एक्सचेंज होती है. भले मैं ऊपर से अच्छी बात करूं और मैं ये बोलूं भी, देखो मैंने तो बिल्कुल यही बोला था एग्जैक्टली. और यूजुअली लोग एक्ट आउट करके, एनेक्ट करके बताते हैं, जैसे एक्टर करते ना. मैंने तो सिर्फ एग्जैक्टली ऐसे ही बोला. उनका रिएक्शन कितना बुरा था आपको मालूम है? पता नहीं इनके दिल में मेरे प्रति क्यों इतना गुस्सा है, इनके दिल के अंदर पता नहीं क्या है. ये जो अंदर वाली बात है, क्या हमको खुद को नहीं मालूम होती?
1: थॉट्स जो हमारी है वो इतनी सटल है कि कई बार हमें भी नहीं पता कि हमने क्या क्या सोच के किसी के लिए रखा हुआ है. मे बी जस्ट नाउ आई एम थिंकिंग वेरी नाइसली अबाउट यू एंड स्पीकिंग ऑल्सो नाइसली, राइट? तो इस समय इस परिस्थिति में मेरी सोच भी ठीक है, मेरे बोल भी ठीक है. तो अगर मैं अपनी चेकिंग भी करूं तो ऐसे नाइस थॉट्स, नाइस वर्ड्स, नाइस एक्शन सब ठीक था, लेकिन फिर भी उनका रिएक्शन ऐसा क्यों था? पता नहीं, जैसे आपने कहा, पता नहीं वो उनके मन में मेरे प्रति क्या भरा हुआ है. इस क्षण मेरी सोच ठीक थी, लेकिन काफी बार मेरे मन में उनके प्रति क्या भरा हुआ होता है, ये मुझे चेक करना होगा. नॉट सिर्फ इस क्षण मेरे मन में उनके प्रति क्या चल रहा है, क्योंकि जो थॉट्स एक्सचेंज है वो सिर्फ उस मिनट की नहीं है ना, कि अभी मैंने ये सोचा, आपने ये सोचा, फिर मैंने ये सोचा, आपने ये सोचा. थॉट्स एक्सचेंज मींस ओवरऑल मैं आपके बारे में जो सोचती हूँ वो आप तक पहुंचने वाला है.
0: लेकिन सिस्टर, ये इतना पक्का होता है कि मैंने तो ऑनेस्टली, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, और अब मुझे महसूस भी होता है कि मैंने रियली प्यार से बात किया.
1: बिल्कुल प्यार से बात
0: की. और लगता भी नहीं कि मेरे अंदर कुछ है, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ.
1: हमें चेक करना होगा इसको. अगर हमारा किसी के साथ भी रिश्ता स्मूथ नहीं है, जितना एक हार्मनी, एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है. अगर हमारा किसी के प्रति एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे मन में उनके प्रति कुछ चलता है या उनके मन में हमारे प्रति चलता है और वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं, देयर इज जस्ट एब्सोल्युटली नो वे कि हमारे मन में भी उनके प्रति नहीं चल रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है. सिर्फ ये है कि थोड़ी सी बैठकर, गहराई में जाकर अपनी सोच को देखना होगा.
0: पहले किसने शुरू किया
1: वी डोंट नो, हमें नहीं पता. मैंने आपके बारे में गलत सोचा, फिर आपने मेरे बारे में गलत सोचा, या आपने सोचा फिर मैंने सोचा, आई डोंट नो. बट हाउ डज इट मैटर, उससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले किसने सोचा. अगेन वी आर गोइंग इन टू द पास्ट कि पहले क्या हुआ था. इम्पोर्टेंट है अब मुझे क्या करना है. जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, किसी भी दो आत्माओं के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो एक हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना है कि दूसरे के पास भी कोई रीजन है क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम उनके संस्कार को, उनके पर्सपेक्टिव को धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं. दूसरा, अगर हमें उस रिश्ते को ठीक करना है, तो उनको देखने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना है हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं. इसकी चेकिंग कर लें, इसको क्लीन करते जाएं.
0: हम क्या बोलते हैं, लगता ऐसे कि हम तो बहुत ही क्लीन हैं, हम तो देखो कितना प्यार करते हैं, बट ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस कैसे करेंगे जब लगता है कि आई एम राइट.
1: अंडरस्टैंडिंग. सपोज आपके अंदर भी कई संस्कार है, मेरे अंदर भी कई संस्कार है. मुझे मेरे संस्कार कंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि वो मेरे संस्कार है. अब आपके किसी संस्कार के साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है. एडजस्ट मतलब वो संस्कार मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, बट आई विल से ओके आई एडजस्ट. नाउ व्हेन आई एडजस्ट इट क्रिएट्स सम डिस्कम्फर्ट, मतलब आई एम नॉट एक्सेप्टिंग बट आई हैव टू लिव विद दैट संस्कार. कि मुझे वो संस्कार सामने वाले का पसंद नहीं है, बट हम अपने आप को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, परिवार है, रहना है इकट्ठे, कोई बात नहीं, ये संस्कार है। लेकिन जितनी बार हम ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने आप से कह रहे हैं मुझे उनकी इस बात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे आजकल घर पे बता के नहीं जाते, मुझे इस बात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है।
0: कई बातें पसंद नहीं है, फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें?
1: एक्सेप्टेड, ये बात सच है कि मुझे कई बातें उनकी
0: पसंद
1: नहीं है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन उतनी ही वो बात दूसरे के दृष्टिकोण से भी उतनी ही सच है कि उनको भी हमारी कई बातें पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ता है।
0: ये बॉर्डर लाइन थी, यही पूछ रहा था।
1: हमें ये नहीं लगता। सी, जब हम चेकिंग करते हैं एंड इफ वी से कि हाँ मुझे उनकी कई बातों में एडजस्ट करना पड़ता है, हम ये कहते हैं लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैंने कभी उनको कुछ नहीं बोला।
0: एडजस्ट किया उस दिन, ये बोला तो भी सुन लिया, ये किया तो भी सुन लिया, ये किया तो, हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट रहती है।
1: yes.
0: और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उधर से हमको दिखता नहीं, वो कौन दिखाए?
1: वी डोंट हैव टू सी इट, वी हैव टू नो दैट इट विल ऑलवेज बी देयर। मुझे ये देखना
0: just
1: नहीं है,
0: बिकॉज़ आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स, उधर होना ही होना है।
1: इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कोई भी दो आत्माएं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, इम्पोर्टेंट इज इट्स टू सोल्स, दो आत्माएं, दो डिफरेंट सेट ऑफ संस्कार। तो एक संस्कार को दूसरा संस्कार थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये कैसी चीज है, क्योंकि इसके पास वो नहीं है, तो इसको वो वाला संस्कार अजीब लगेगा। और वैसे ही इनके पास भी अलग संस्कार है, इनको ये संस्कार अजीब लगेंगे। लेट्स से एक के अंदर संस्कार है कि हर बात बतानी है, कहीं जा रहे हैं बता रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं बता रहे हैं, कुछ भी घर में हो रहा है शेयर कर रहे हैं। दूसरे के अंदर संस्कार है कि हर बात थोड़ी बतानी है, इसमें क्या है बताने जैसा, वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा, उसके अंदर वो संस्कार ही नहीं है। अब जो हर चीज बताता है, ठीक से इन्फॉर्म करता है, कम्युनिकेट करता है, उनको ये संस्कार कि कोई कम्युनिकेट ही ना करे ठीक से, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जो नहीं कम्युनिकेट कर रहा, उसके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है कि हर छोटी छोटी चीज कम्युनिकेट करते रहते हैं एक दूसरे को।
0: सिस्टर एक बात बताइए, इसमें कई बातें तो ऐसी लगती हैं कि ये तो नेचुरल है कि वे कहीं गेट के बाहर जा रहे हैं, लंच पे नहीं आ रहे हैं, वो तो बोलना ही है ना,
1: वो आपके लिए नेचुरल है क्योंकि
0: मतलब फिर उनके लिए खाना बनवा दें, एक्स्ट्रा बना के वेट करें, पता ही नहीं आ रहे जा रहे, तो फिर घर का मतलब हॉस्टल तो नहीं है ना।
1: सी, ये सारी चीजों के पीछे कितनी लॉजिक होती है, लेकिन ये लॉजिक उसके लिए लॉजिक है जिनका वो संस्कार है, जिनका वो वे ऑफ लिविंग है, जिसका वो है ही नहीं अभी। हाँ, हम एक नया क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। वे नॉट सेइंग कि अगर बच्चे के अंदर ये संस्कार नहीं है कि बताता ही नहीं है तो हम उसको छोड़ दे जीवन भर, उसको सिखाए नहीं ये चीज, हमें सिखाना है। लेकिन पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो संस्कार उसके अंदर मिसिंग है। See, we have carried past संस्कार्स, we have created present संस्कार्स, दोनों आत्माओं पे संस्कार का बंडल अलग अलग है। जितना नेचुरल आपको ये लग रहा है कि बताना ही होता है, कितना नेचुरल लगता है, मतलब इसमें दो थॉट भी नहीं चलेगी कि बताना चाहिए या नहीं, मतलब इट्स नेचुरल, उतना ही सामने वाले को उतना ही नेचुरल लगता है।
0: अब ये सोचेगा कि ये अहंकार है या वो सोचेगा ये अहंकार है,
1: तो यही दोनों
0: मतलब
1: को
0: परमिशन लेना है या सिर्फ बताना है। परमिशन लेना, आशीर्वाद लेना और पूछ के जाना कि जाना या नहीं जाना, और जाते जाते टाइम अच्छी दृष्टि लेके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ,
1: विच इज परफेक्ट ना। ये परफेक्ट है, ये पूरी लॉजिक है कि बच्चे को घर से जाने से पहले बताना चाहिए। बताना चाहिए क्यों? ताकि पेरेंट को पता होना चाहिए वो कहाँ है, ब्लेसिंग्स लेके जाना चाहिए, एंड जनरली एवरीबडी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज परफेक्टली फाइन। बट इम्पोर्टेंट इज कि सामने वाले के अंदर अभी वो संस्कार नहीं है, अभी नहीं है। वी कैन हेल्प देम टू क्रिएट द संस्कार ओनली आफ्टर एक्सेप्टिंग फर्स्ट दैट दे डोंट हैव दैट संस्कार राइट नाउ। अगर हम इस
0: बात हम ये सोचने लगे इतना भी संस्कार नहीं है, इतनी भी अकल नहीं,
1: हम ये नहीं सोचते,
0: इतनी भी थिंकिंग नहीं है, तब जाके प्रॉब्लम,
1: तब जाके प्रॉब्लम,
0: सेंसिटिविटी
1: नहीं, ये लगता है कि ये जान पूछ कर नहीं बताते, ये बता सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि बताना,
0: उनको ये लगता है कि बड़े हमको दबा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं।
1: एब्सोल्युटली, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई ना। अब जैसे ही अंडरस्टैंडिंग नहीं आई और जैसे ये दो थॉट्स आपने बताए कि छोटों को लगेगा कि वो हमें दबा रहे हैं और बड़े को लगेगा ये हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी म्यूचुअल फ्लो हो रही है ना दोनों तरफ से, दोनों थिंकिंग टोटली ऑपोजिट है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज एब्सोल्युटली नेचुरल। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब सामने वाला हमारे संस्कार की तरह नहीं चल रहा है, हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करें कि ये तो केयरलेस है, ये
0: एरोगेंट
1: है,
0: ये
1: ईगोइस्टिक है, यस, ये बताते नहीं है, ये बहुत इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट ऑल दीज थिंग्स, इट इज वो उनका अभी संस्कार है। जैसे ही एक साइड पेरेंट, और ये किसी भी संस्कार में किसी भी सिचुएशन में, जैसे ही एक साइड इस साइड को एक्सेप्ट करेगा कि ओके इनके अंदर अभी ये संस्कार नहीं है, वी विल कम्युनिकेट एंड ग्रेजुअली क्रिएट अ न्यू संस्कार देर। लेकिन राइट नाउ वो जो कर रहे हैं पर्पसली नहीं कर रहे। सी वन थिंग वी नीड टू नो, कोई भी जान पूछ के नहीं कर रहा होता, उसकी लॉजिक उसी डायरेक्शन में वर्क करती है। क्यों लॉजिक उस डायरेक्शन में वर्क करेगी? क्योंकि वो ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमने देखा बिलीफ सिस्टम, जो हमारे संस्कार से बनता है। आपका विंडोज है, मेरा मैक है, तो बहुत सारी चीजें मैच नहीं करने वाली है। लेकिन आप कहेंगे मैं जान पूछ के ऐसा कर रही हूं, तो नो, इट्स जस्ट दैट माय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट।
0: सपोजिंग आप जानती हैं कि मुझे फिक्र हो जाती है कि अगर पता ना चले कि मेरा बेटा है, बेटी है, बहू कहाँ है, कहाँ चले गए, सिर्फ फिक्र कंसर्न है, मालूम होते हुए भी आप नहीं बताओ, तो फिर ये जानबूझकर ही है ना? क्या कि हर बात उनको बतानी है क्या? मतलब मेरी जिंदगी में मेरी फ्रीडम नहीं है क्या? एज ऐसी है क्या? फिर बच्चे ऐसे भी तो सोचते हैं।
1: क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम उनके संस्कार को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे एंड हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए। जैसे हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, वो भी तो चाहते होंगे कि हम चेंज हो जाए। हम चाह रहे हैं कि सिस्टम चेंज हो जाए एंड वो बताना शुरू कर दे अपनी हर बात। वो भी चाह रहे होंगे कि सिस्टम चेंज हो जाए और ये वंस एंड फॉर ऑल ये अपना संस्कार खत्म करें और एक्सपेक्ट करना खत्म करें कि हम हर बात बताएंगे ताकि हम भी हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे। बोथ आर गोइंग टू बी ट्राइंग द सेम थिंग। इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ, इट्स मोर लाइक अ टग ऑफ वॉर कि कौन जीतेगा दूसरा मेरे संस्कार के साथ एडजस्ट कर ले। और दूसरा वाला भी यही सोचता है कि ये मेरे संस्कार को समझ ले।
0: मेरे मन में सिर्फ प्यार और कंसर्न हो या फिक्र हो तो उसको आप टग ऑफ वॉर बोलेंगे?
1: लेकिन मेरे मन में है कि मेरी जीवन इतनी सफोकेटेड नहीं चल सकती है। माय डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट इज डिफरेंट। आपकी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट ये होगी कि मैं अपनी हर बात आपको बताऊं, लेकिन मेरे लिए आपको अपनी हर बात बताना एक सफोकेशन है। मुझे याद भी नहीं रहता है बिकॉज मेरे लिए इट्स डजंट वर्क लाइक दैट। सी द थिंग इज, मुझे दिखाई नहीं देगा वो जो आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत, वी नीड टू रियली फिट इट इन कि आप जितनी लॉजिक देंगे आपकी वो लॉजिक सारी बात राइट है, लेकिन सामने वाले के पास भी उतनी ही लॉजिक है, उतनी लॉजिक है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट आता है? कॉन्फ्लिक्ट दो आत्माओं में इसीलिए आ रहा है ना, क्योंकि दोनों लॉजिकली 100% एक्यूरेट है, लेकिन दोनों को सिर्फ अपनी लॉजिक दिखेगी, दूसरे की नहीं। अब इसको रिजोल्व तो करना है ना, वी कांट गो ऑन लाइक दिस, हम ऐसे ही तो नहीं चल सकते। तो अब पहले दोनों में से एक, ये भी नहीं कि दोनों को करना है, दोनों में से एक को दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना है। एंड एक्सेप्ट मींस उस पर मनन नहीं करना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये इतना इंटरफेयर क्यों करते हैं, ये हमें बताते क्यों नहीं है, ये इतने डोमिनेटिंग क्यों, फुल स्टॉप। ये अभी संस्कार है, वन। जैसे एक साइड दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करेगी तो उसकी वो वाली थॉट्स, ये ऐसे हैं, ये इगोइस्टिक हैं, ये बताते नहीं, ये केयरलेस हैं, ये वाली थॉट्स सारे बंद होने लगेंगी। जैसे एक साइड की थॉट्स बंद होने लगेंगी, दूसरे साइड की थॉट्स भी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। जब ये रेजिस्टेंस की एनर्जी बंद हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस एनर्जी, कि मुझे आपका संस्कार पसंद नहीं, आपको मेरा संस्कार पसंद नहीं, दिस इज एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस। जब तक ये एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस बीच में है, दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव कभी समझ में नहीं आ सकता। इट्स लाइक ब्लैक नेगेटिव एनर्जी बीच में, जब तक वो है मुझे आपका नजरिया कभी नहीं दिखाई देगा। एंड हम वी कैन लिव इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर अ लाइफ टाइम, एब्सोल्युटली फॉर अ लाइफ टाइम।
0: जब तक वो है मतलब क्या है?
1: ये ब्लैक एनर्जी है ना आपकी तरफ से,
0: क्या है ये ब्लैक एनर्जी? क्या है?
1: आप रेजिस्ट कर रहे हैं मुझे, आपको लगता है मैं ईगोइस्टिक हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, इनडिफरेंट हूँ, केयरलेस हूँ, मैं जान पूछ कर आपको बता नहीं रही, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। कितनी हैवी एनर्जी है, एक एक थॉट कितनी हैवी एनर्जी है।
0: ये थॉट्स हैवी एनर्जी होती है?
1: ये हैवी नहीं है? आप मेरे लिए क्या क्या सोचा, मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही हूँ,
0: मनमानी,
1: हाँ मनमानी कर रही हूँ, अपनी तरह से अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रही हूँ।
0: पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार नहीं दिए?
1: मेरे पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये आपके मेरे बारे में कैसी सोच है? फिर मैं घर में डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने तरह से चलकर परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, एक एक थॉट कैसी है? अगर आप ये सारी बातें सिर्फ सोच में रखने की बजाय मुझे बोल दो एक बार, तो शायद मैं उसके बाद कभी बात नहीं करूं आपसे। लेकिन हम बोलते नहीं है, हम सोचते हैं। अब क्योंकि आप ऐसी सोच कर रहे हैं मेरे लिए, यू हैव नो आइडिया मैं आपके लिए कैसे सोच रहे होंगे। मैं कहूंगी कैसे लोग हैं, सारा दिन इंटरफेयर करते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, इधर नहीं बैठो उधर नहीं बैठो, इतने कैसे परिवार में आ गई मैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। आई गेट सफोकेटेड ओवर हियर इफ आई लिव लाइक दिस, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्टेड, दीज आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल आई कैन एडजस्ट विद, इम्पॉसिबल फॉर मी टू लिव हियर। एनर्जी, अब हैवी एनर्जी अगर एक तरफ से है तो उतनी ही या उससे कई गुना हैवी एनर्जी दूसरी तरफ से भी है। अब हमें ये नहीं पता कि दोनों में से किसने ये पहले स्टार्ट की थी, हो सकता है मैंने पहले आपके लिए स्टार्ट की हो, ये भी हो सकता है कि आपने प्यार से एक दो बार पूछा कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, ये कैसे बातें करते हैं, ये ऐसे सोचते हैं, ये तो हो सकता है मैंने ये स्टार्ट की थी, आपने नहीं स्टार्ट की थी, लेकिन क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी आप तक वो पहुंची, जैसे वो चंदन के फार्मर की राजा को पहुंची, तो राजा ने भी वही क्रिएट की, तो मैंने आपके लिए ऐसा सोचा तो आपके अंदर भी मेरे लिए ऐसी थॉट्स आने शुरू हो गई। अब एक बार आपके अंदर भी आने शुरू हो गई तो मेरी तो फिर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ दिस इज ब्लैक हैवी एनर्जी।
0: इसलिए जब मुझे किसी ने कहा था, मेरे समझ में नहीं आई थी बात, कि वो उसने कहा था कि हर एक इंसान के अंदर एक रावण भी होता है राम भी। अब ये मुझ पर है, मैं इनका रावण जगाऊं कि राम जगाऊं?
1: ब्यूटीफुल।
0: तो अभी आपकी बात से ये लग रहा है कि अगर मैं उसकी थॉट, अगर इसके संस्कार है भी, तो मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि भाई ये भाई पढ़े लिखे हैं, नए जमाने के लोग हैं, बच्चे हैं, शायद ऐसा होगा, समझ जाएंगे।
1: इम्पोर्टेंट है सिर्फ एक थॉट, इस क्षण ये इनका संस्कार है।
0: और दूसरी आपकी बात बहुत अच्छी लगी, इस क्षण दे आर राइट, इस समय वो सही है,
1: क्योंकि जब तक वो मेरा संस्कार है मैं सही हूँ। सी इट्स लाइक मैंने काला चश्मा पहना आपने लाल, तो मुझे काला दिखेगा। आप कितना भी मुझे लॉजिक सुनाए, मुझे दिखेगा काला जब तक काला पहना है, जैसे ही वो काला उतारा मुझे कुछ डिफरेंट दिखेगा। तो जब तक वो मेरा संस्कार है और जब तक मुझे रियलाइजेशन, बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज हुआ, जब तक मेरा बिलीफ सिस्टम ही नहीं चेंज हुआ, मेरे अंदर एक अलग थॉट क्रिएट ही नहीं हो सकती। आप कितना भी मुझे एक्सप्लेन करें, अच्छा ये भी होगा, आप बिठाएंगे मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू आई से चलो ठीक है, रिस्पेक्ट करना है, एक घर में रहना है, मैं इनके लिए इनकी खुशी के लिए
0: सुन लेती हूँ,
1: सुन भी लेती हूँ, मैं कर भी लूंगी, मैं करने का भी डिसाइड करती हूँ।
0: लेकिन फिर भूल जाते हैं,
1: भूलो मेरा संस्कार नहीं है ना, मेरा संस्कार नहीं है, चेंज थॉट लेवल पे नहीं आ पाता ना, मेरी थॉट्स मेरे संस्कार से निकल रहे, मेरे बिलीफ सिस्टम से। आपने कुछ कहा कि ऐसा करना चाहिए, देखो घर में कितना टेंशन हुआ, आज आप बता के नहीं गए थे तो हम लोगों को कितनी फिक्र थी, मैंने आपकी चिंता देखी, आपका कंसर्न देखा, उस क्षण के लिए मेरे को कितना अच्छा लगा,
0: मान भी लिया।
1: हाँ मुझे कितना अच्छा लगा कि ये पूरा परिवार मेरे लिए कितना केयर करता है, मुझे नेक्स्ट टाइम से इनको जरूर बता के जाना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में बता

0: इसी को कहेंगे एक्सेप्टेंस. यू नो पीपल से आप हर टाइम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, मींस कितना एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के दूसरे का संस्कार डिफरेंट है, फुल स्टॉप. एक्सेप्टेंस के संस्कार को चेंज करने में टाइम लगता है. इट डजंट हैपन लाइक दिस कि एक बार बोला संस्कार चेंज हो गया. एक्सेप्टेंस कि उनके लिए इस टाइम वो संस्कार कंफर्टेबल है.
1: सिस्टर एक लिमिट भी होती चेंज की. जब कौवे को मैं बोलूं कोयल तो नहीं बन जाएगा.
0: बट इम्पोर्टेंट है कौवा कौवा रहकर ही बहुत कंफर्टेबल भी है.
1: कंफर्टेबल है लेकिन उसकी भी लिमिट. समझो किसी इंसान को ज्यादा बोलने की आदत है, वो 10% 20% कर सकता है. ये लिमिट है उसकी चेंज होने की भी. और कब, बार बार भी नहीं हो सकता है, परिस्थिति में आके है ना.
0: इम्पोर्टेंट ये है कि हम सामने वाले को चेंज होने के लिए किस लिए कह रहे हैं ये चेक करना. जैसे आपने बहुत सुंदर बात कही, कौवा कौवे की तरह बोलेगा, कोयल की तरह नहीं बोलेगा. लेकिन कौवा बहुत कंफर्टेबल है अपनी उस आवाज से. लेकिन आपको कोयल की आवाज पसंद है तो आप कौवे को क्या कह रहे हैं कि ये कां कां अच्छा नहीं है, तुम्हें इस तरह से गाना चाहिए. लेकिन ये जो आप कौवे को चेंज होने के लिए कह रहे हैं, ये किसके लिए चेंज होने के लिए कह रहे हैं?
1: मेरे
0: ये
1: लिए.
0: आप अपने लिए चेंज होने के लिए कह रहे हैं. अगर आप मुझे अपने लिए चेंज होने के लिए कहेंगे, आई विल नॉट डू इट. ये वेरी इंपॉर्टेंट. वाई शुड आई चेंज बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल? इट्स लाइक दिस. सपोज आई एम सिटिंग लाइक दिस, मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ. अब मैं एक पैर पे एक पैर रख के बैठी हूँ, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ. लेकिन मुझे ऐसा बैठा हुआ देख आपको डिस्टर्बेंस हो रही है. इवन इफ द डिस्टर्बेंस इज ऑफ माई कंसर्न कि कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठेंगे तो पोस्चर ठीक नहीं है, दर्द हो जाएगा, ये कोई बैठने का तरीका है.
1: कंसर्न की भी हद हो जाती है ना. कंसर्न करते करते
0: कंसर्न इज ब्यूटिफुल,
1: इंटरफेरेंस हो जाता है.
0: इट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड सेड द राइट वे. मैं ऐसे बैठी हूँ, ये मुझे कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल है, इतना भी दर्द नहीं है बिल्कुल. एंड मैं ऐसे घंटों बैठ सकती हूँ, लेकिन आप एक मिनट भी नहीं देख पा रहे हैं. इस तरह से आपका माइंड कॉन्स्टेंटली जिसको कहेंगे इरिटेट हो रहा है देखकर ऐसे, या वरिड हो रहा है. चलो इरिटेट भी नहीं, हम कहते चिंता, वरी हो रही है ऐसे देख देख के. अब जब आप मुझे चेंज होने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी जो चिंता है वो आपके लिए अनकंफर्टेबल है. अगर मैं चेंज हो जाऊं तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी. आप अपनी चिंता खत्म करने के लिए मुझे ये कहते हैं चेंज होने के लिए. एंड जब इंटेंशन वो होता है तब सामने वाला चेंज होने के लिए रेडी नहीं होता. अब आप इसको थोड़ा सा चेंज करें कि मेरे ऐसे बैठने से आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आपका माइंड स्टेबल है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरा संस्कार है, मैंने ऐसे बैठना. जैसे आपने एक्सेप्ट किया, आपका माइंड स्टेबल है. अब ये स्टेबल होकर संस्कार को एक्सेप्ट करके अब आप मुझे बताएंगे, लेकिन मेरे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं. दिस इज द अंडरलाइन. आप अपने कंफर्ट के लिए नहीं मुझे चेंज करें, आई विल नॉट चेंज. लेकिन अब आप मेरे कंफर्ट के लिए मुझे बताएं.
1: ये मुझे इसका एक वो चाहिए
0: एग्जाम्पल.
1: हाँ.
0: ये एग्जाम्पल ही देखिए. पहले आप डिस्टर्ब मत होइए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आई एम फाइन. एंड नाउ सिट बैक, अपने आप से बात करें, इट्स ओके. वो कंफर्टेबल है ना, तो फिर इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं. वो इस संस्कार के साथ, इस व्यवहार के साथ ये कंफर्टेबल है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हमने देखा, ये इनका संस्कार है. स्टेबल हो गए, एनर्जी एक्सेप्टेंस की है. अब आप मुझे बताइए कि मेरा ऐसे बैठना मेरे लिए डैमेजिंग है. द टू थिंग्स वेरी डिफरेंट. मेरा ऐसे बैठना,
1: ये भी बोलो तो चिढ़ने वाला तो चिढ़ेगा कि भैया मुझे मालूम है मेरे लिए क्या डैमेज है कि नहीं है. आप बार बार हर चीज मुझे मेरे फायदे के लिए बताना छोड़ दीजिए भाई साहब.
0: नो प्रॉब्लम. बट आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप बिना डिस्टर्ब हुए सामने वाले को उसका फायदा बताएं.
1: मे बी बिना डिस्टर्ब हुए नहीं बताते,
0: मतलब एक्सेप्ट करके फिर बताएं. रेजिस्ट करके बताना वही बात बताना.
1: आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा
0: लगा. एक्सेप्ट करके फिर बताना, वो दोनों चीजों में बहुत फर्क है.
1: उनके संस्कार

0: हार को एक्सेप्ट किया।
1: एक्सेप्ट मीन्स आई एम फाइन, मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है। यू सिटिंग लाइक दिस, आई एम सिटिंग लाइक दिस, मेरे को ऐसा बैठे हुए देखकर आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो।
0: लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ही तकलीफ होगी। अच्छा, आज आपने ऐसा खाना खाया, आज आपने ये कपड़े पहने, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग क्या कहेंगे, कहीं और जाओगे तो क्या होगा, शादी हो जाएगी तब इन लॉज क्या बात करेंगे, यू नो। साथ ये भी बोलते हैं और वो भी करते हैं,
1: लेकिन हम बोल रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
0: पड़ता है।
1: अब जितना यहाँ फर्क पड़ता है, एनर्जी रेजिस्टेंस की है, रिजेक्शन की है, जिसको हम कहेंगे एक्सेप्ट नहीं किया और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कंफर्ट के लिए। ये बहुत सटल है, ये हमें जल्दी जल्दी पता नहीं चलेगा कि हम अपनी कंफर्ट के लिए औरों को चेंज कर रहे होते हैं। इवन इफ वी कॉल इट कंसर्न एंड लव एंड एवरीथिंग, प्योर लव विल बी जब उनके संस्कार को हमने एक्सेप्ट किया, हम पहले स्टेबल रहे, फिर हमने उनको चेंज जो उनके लिए अच्छा है वो बताया, व्हाट रिजल्ट दैट क्रिएट्स वी विल सी।
0: बहुत अच्छा लगा सिस्टर कि पहले मेरी एनर्जी पहले आपके पास जाती है, तब बाद में शब्द जाते हैं। पहले मतलब जो मैं सोचता हूँ, और बाद में भले मैं बोल दूँ नहीं नहीं मतलब, लेकिन वो ये नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा था, मेरा मतलब ये नहीं था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप कर लो। इसीलिए जब मैं गुस्से में भी बोलता हूँ छोटे बच्चे को प्यार वाली बात, तो बहुत खराब है, तो सही तो बहुत गंदा है, हैं, आई हेट यू, कितने देखो शब्द देखो जा रहे हैं, और मीनिंग मेरा वो बच्चा हंसता है आगे,
1: क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है।
0: ये बहुत अच्छी लगी आपकी बात, एनर्जी, डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, बैड एनर्जी एंड गुड एनर्जी। चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं एनर्जी लेवल्स पे ठीक होने की और एक दूसरे को अच्छी से अच्छी एनर्जी देने की।
1: थैंक यू
0: सो मच, नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू।
2: If there is a strain in any relationship, then definitely we are creating wrong quality of thoughts for them. We need to clean our thoughts, else even the best words and behavior will not get the right result. To begin healing any relationship, do not focus on their behavior, words, or what they think about us. Let us take care that we are creating the right thoughts and behavior towards them. If one person changes, it will influence the other and healing begins. When we are adjusting to sanskars of the other person, we need to remember they are also adjusting with our sanskars. Two souls will always have different sanskars and will find the other's sanskars uncomfortable. Accept the other person's sanskar, which means remain stable. Now help them to create a new sanskar and give them time to do it.
3: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
4: एक बहुत प्यारा इंसान है तलत महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इंसान तो मैं क्या बताऊं कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो तलत साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: खाबों का सफर आरजी सनी के साथ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ खाबो का सफर इस प्रोग्राम को। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज विशेष हम लोग ई अक्षर से गाने सुनेंगे, और इसका कलेक्शन पूजा के पास है जो हमारे साथ बैठकर आपको एक एक कलेक्शन के बारे में बताएगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी की तरफ से पूजा का बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर में।
1: थैंक यू सो मच सर, नमस्ते कि आपने मुझे फिर से अपने शो में इनवाइट किया है। तो इसी के साथ मैं अपना पहले जो मेरा पहला गाना है उसका नाम बताना चाहूँगी। तो मैं अपने पहले गाने से शुरुआत करती हूँ, और वो मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। तो वो मेरा पहला गाना है, वो है एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये गाना जो है मोहब्बत से रिलेटेड है। तो जो मोहब्बत करता है वो बोलता है सामने वाले को कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे अपने पलकों की छांव में रहने दो। और वो उनसे ये गुजारिश करता है कि आप हमें इसकी इजाज़त दो कि हम आपके साथ रह सकें। बड़ी ही अच्छी लाइन है इसके लिए मेरे पास एक, प्यार में कोई तो दिल तोड़ देता है, प्यार में कोई तो दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई तो भरोसा तोड़ देता है, जिंदगी जीना कोई गुलाब से सीखे, जो खुद टूट कर भी दो दिलों को जोड़ देता है।

ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया 1961 का, जंगली फिल्म का। हसरत जयपुरी साहब ने इसे लिखा है और लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है। शंकर जयकिशन का संगीत, जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर हिट गाना है। और जंगली फिल्म का नाम सुनते ही एक और गाना भी याद आता है, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। लेकिन आज उस गाने को नहीं, इस गाने को ही सुनेंगे। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज। पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है। अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: सर, अब जो मेरा दूसरा गाना है वो है एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। बड़ा ही अच्छा गाना है। जब हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं तो हम पे वो एक एहसान सा हो जाता है। अगर किसी को सच्चा दोस्त मानते हैं और वो हमारे पास नहीं होता तो बहुत याद आती है उसकी। मेरी भी एक फ्रेंड है जो भी बहुत दूर है मेरे से, जिससे एक अलग सी फीलिंग है उसके लिए मेरे दिल में। और जब वो पास में थी तो मैं उसे उतना बात नहीं करती थी, पर अभी वो मेरे साथ नहीं है तो बहुत याद आती है उसकी। इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी लाइन है जो मैं अपनी फ्रेंड के लिए बोलना चाहूंगी। तेरा एहसान हम कभी नहीं चुका सकते, तू अगर मांगे जान तो इनकार नहीं कर सकते। माना जिंदगी लेती है इम्तिहान बहुत, तू अगर हो साथ तो हम कभी हार नहीं सकते।

चलिए, एहसान मेरा दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया, गबन फिल्म का, 1966 का। गबन ये फिल्म जो है प्रेमचंद का एक उपन्यास का नाम था जिस पर ये फिल्म बना। जी हाँ, अब जो गाना हम लोग सुन रहे हैं वो हसरत जयपुरी साहब का ही लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। और कहा जाता है जब हम दोस्ती करते हैं तो एहसान की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम को और पूजा के पास बहुत ही सुंदर कलेक्शंस है जिसको हम लोग एक एक करके सुन रहे हैं। 50s और 60s का कलेक्शन। कहते हैं इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुन्दर कितना दूर है। तो पूजा बताइए, अब अगला गाना कौन सा है आपका?
1: ओके सर, अभी जो गाना है मेरा वो है एक लड़की भीगी भागी सी। सारे गानों के कलेक्शन में सबसे अच्छा जो गाना मुझे लगता है वो ये गाना है, एक लड़की भीगी भागी सी। ऐसा गाना है जिसको सुनते ही डांस करने का मन करता है। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं इसमें। और आजकल पुराने गानों की बात हो रही है तो ये जो गाना है एक लड़की भीगी भागी सी, ये गाना हम भी नए जमाने से हैं अभी के तो, पर ये गाना एक ऐसा है जिसे हर कोई सुना ही है और अभी भी बड़े ही अच्छे से सब सुनते हैं इस गाने को। बहुत ही अच्छा लगता है इसे सुनने में और इस गाने की बोल बड़े ही अच्छे से एक मोतियों में पिरोए गए हैं। इस गाने के लिए मेरे पास एक डायलॉग भी याद आता है, जैसे कि लड़की बोलती है, जानते हो जानू पापा ने बोला है कि फेल हुई तो रिक्शे वालों से शादी करा दूंगा। लड़का बोलता है, शांति रख शांति, मेरे पापा ने भी बोला है कि फेल हुआ तो रिक्शा ही खरीदूंगा। शायरी भी बोल देती हूँ एक, सच तुम्हें पाने के सिवा इस दिल की और हसरत नहीं कोई, दुनिया में हसीन तो बहुत है लेकिन तुमसे खूबसूरत कोई नहीं।

0: चलती का नाम गाड़ी 1958 का ये खूबसूरत गाना आपने याद करा, जिसे खास मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था और किशोरदा खुद एक्टिंग भी कर रहे थे और गाना भी उन्होंने ही गाया है। तो सचिन देव बर्मन साहब का ये म्यूजिक इस गाने में है, तो आइए सुनते हैं एक लड़की भीगी बागी सी।
1: लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी।

0: कहो ये कोई बात है।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार, खाबो का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कहते हैं शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है, जंगल में चुनाव नहीं होते। तो पूजा बताइए, आप आगे किस गीत की तरफ आप ले चल रहे हैं हम सभी को?
3: ओके सो सर, अब जो मेरा अगला गाना है वो है एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। बड़ा ही अच्छा सा गाना है। इसमें बुत एक पुतले से रिलेटेड मीन्स एक मूर्ति मूर्ति को बताता है कि इसमें वो जिससे अपनी महबूबा से प्यार करता है वो उसका मूर्ति बना करके मतलब बुत बना करके उसकी पूजा करेगा और उससे प्यार करेगा और उसके सिवा वो कुछ भी नहीं करेगा। इसके लिए बोलना चाहूँगी, अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ। घर से बाहर वो नकाब से निकली, सारी गली उसकी फिराक से निकली, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से और हमारी ही तस्वीर उनकी किताब से निकली।

ओके, एक भूत बनाऊंगा तेरे घर के सामने, गाना मैंने सुना था। एक घर बनाऊंगा, आपने एक भूत बनाऊंगा बताया। कोई बात नहीं, चलिए असली नकली फिल्म में तो ऐसा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, पूजा ने जिस गीत को याद करा है, 1962 में एक फिल्म आई थी असली नकली, उस फिल्म का ये गाना है, एक भूत बनाऊंगा तेरे घर के सामने और उसकी पूजा करूंगा। तो हर्षद जयपुरी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। और पूजा के पास बहुत ही सुंदर कलेक्शन है, एक एक करके गाने हम लोग सुन रहे हैं। तो ये कहते हैं, डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता नहीं है कि डाली कमजोर है, फिर भी वो उस डाल पर है। क्यों? क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंख पर भरोसा है। दोस्तों, तो चलिए, आशा करता हूँ आप भी अपने दिलो दिमाग से कार्यक्रम को सुन रहे हैं और यकीन है आपके पास कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूजा, बताइए आप कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को।
2: ओके सर, अब जो मेरा गाना है वो है तेरे घर के सामने मेरा घर बनाऊंगा। इस गाने में एक जो महबूब होता है वो अपने महबूबा से इतना प्यार करता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता और बोलता है कि तेरे घर के सामने मेरा घर बनाऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं कुछ बोलती हूँ। काश मेरा घर तेरे घर के करीब होता, मिलना तो ना सही देखना तो नसीब होता। उसका हाथ आ गया है मेरे हाथ में, कितना हसीन है जिंदगी उसके साथ में।

चलिए, आखिर आप 1963 का जिस गीत का जिक्र हमने थोड़ी देर पहले, उस गीत का आपने आखिर याद किया ही। हसरत जयपुरी साहब का लिखा, लता और रफी साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत गाना है, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा तेरे घर के सामने। तो आइए सुनते हैं, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दोनों।

0: खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, मस्ती भरा गीत था। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा गीत आपके पास है पूजा?
1: ओके सर, अब जो मेरा अगला गाना है वो है एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। सर ये गाने को सुन के इतना सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा गाना है और हमारे जीवन से रिलेटेड है। मेरे पास कुछ लाइनें हैं इसके लिए, तो मैं वो बोल देती हूँ। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार कर सकते हैं, एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा और बोल देती हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी जाएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।

ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया 1969 का। इस फिल्म का नाम ही है जीने की राह, ये खुद एक मोटिवेशन लाइन है। और चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया इस फिल्म का, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी हम लोग सुनेंगे। एक बंजारा गाए जीवन का गीत सुनाए। चलिए, बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन है इस गीत में और कहीं ना कहीं ये गाना आपके दिल को भी छू लेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस गीत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम को कहते हैं इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ए जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ गया मुझे। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, आपके इस गीत की तरफ आप हमें ले चल रहे हैं।
2: Okay, so sir, अब जो मेरा आगे का गाना है उसकी लाइन है, एक बेवफा से प्यार किया उसे नजर का चार किया। हम जिसे प्यार करते हैं जरूरी नहीं है कि वो भी हमसे प्यार करे। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ देखने को मिलता है कि उतार चढ़ाव आते हैं, जहाँ पे हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं पर वो हमें धोखा दे देता है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है और हम वहाँ के वहाँ ही रहते। इसके लिए थोड़ी सी लाइन है मेरे पास, उसको बोलती हूँ। चेहरे के लिए आईने कुर्बान किए हैं, इस शौक में आपने बड़े नुकसान किए हैं। महफिल में मुझे गालियाँ देकर है बहुत खुश, जिस शख्स पर मैंने बड़े एहसान किए हैं।

के 1951 का फिल्म। ओह बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और ये आवारा फिल्म का है, हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन साहब का ही संगीत। तो चलिए आवारा एस एल्बम का ये खूबसूरत नगमा अभी हम लोग सुनेंगे। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाना कौन सा है आपके पास?
1: ओके सर, जो मेरा अगला गाना है उसकी उस गाने की बोल है, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। तो इस गाने में शाम का जिक्र किया गया है, और जब कोई जिससे हम प्यार करें अगर वो हमारे साथ में हो या फिर नहीं भी हो या बाई चांस हमें दिख जाए, तो उस टाइम पे तो हमारे जो फीलिंग होते हैं वो अलग ही होते हैं और शाम का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। तो दिल तो खो ही जाना है, इसके लिए मेरे पास थोड़ी सी लाइन है। एक हसीन शाम को दिल की बात कहने को दिल करता है, दर्द ए जुदाई को सहने से दिल डरता है, क्या करे किस्मत में है दूरियां।
0: ओके, दुल्हन एक रात की, 1966 का ये एल्बम है, ये फिल्म है। राजा मेहंदी अली खान साहब ने इसे लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था, मदन मोहन जी ने इसे संगीत से संवारा था। तो आइए सुनते हैं, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। 1960s के और 50s के खूबसूरत गाने हम सुन रहे हैं पूजा से। तो चलिए पूजा, आखिरी गाना कौन सा आपके पास है जिसे आप सुनाना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को?
2: अब मैं अपने लास्ट गाने की ओर पहुंची हूँ, तो अब जो मेरा लास्ट गाना है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा है। और उस गाने की जो बोल है वो है, एक मंजिल राही दो फिर प्यार ना कैसे हो। इस गाने की बोल से ही पता चल रहा है कि दो लोग एक दूसरे से जब प्यार करने लगते हैं तो वो डायलॉग है ना, दो बदन एक जान, तो उसके साथ में जैसे कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर जब एक दूसरे के विचार एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो फिर कब उन्हें प्यार हो जाता है उन्हें खुद ही पता नहीं चलता। इसके लिए मेरे पास एक बड़ी अच्छी लाइन है जो हर कोई सुना ही होगा लगभग, जैसे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसले से उड़ान होती है। इस गाने में बड़ा ही अच्छा फिट बैठ रहा था इसलिए बोल दिया सर मैंने। और भी थोड़ा सा बोल देती हूँ, ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया, मंजिल ना दे चरांग ना दे हौसला तो दे, तिनके का ही सही तू मगर आसरा तो दे।

ओके ओके पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारे कलेक्शन आपने हम सभी को सुना, इसलिए दिल से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी जो आपने गीत हमें बताया है, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज में ये खूबसूरत गाना है, मदन मोहन जी का संगीत है, संजोग इस एल्बम से 1961 का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छी रचनाओं के साथ, अच्छे गीतों के साथ। हम आपके साथ होंगे ख्वाबों के सफर में, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम, नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लू, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयरएवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वांट, सो देन इट्स माय चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज शनिवार है, विशेष रूप से आप खास प्रोग्राम सुनते हैं करियर ऑप्शन, और खास विद्यार्थी मित्रों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और हर हफ्ते हम एक नए करियर के बारे में बातें करते हैं। तो आज जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया में विकसित हो रही है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ एआई का एक बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ रही है जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आप करते हैं। तो इसके साथ में जुड़ी हुई जो करियर है उसके बारे में बातें करेंगे, जिसका नाम है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। जी हाँ, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। एक उभरता हुआ शानदार करियर है ये मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। आज की डिजिटल दुनिया में मशीनें सिर्फ आदेश मानने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सीखने भी लगी है और वे डाटा को पढ़ती भी है, पैटर्न समझती है और बिना मानवीय दखल के निर्णय भी लेती है। इस पूरी प्रक्रिया के जो पीछे है, जिस विशेषज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे ही मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ और हाई डिमांड करियर है। प्यारे भाई और बहनों, विद्यार्थी मित्रों, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, आने वाला कल इसी का है। तो आपके लिए ये करियर का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। बात करें मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कौन होता है, तो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग वो टेक्निक विशेषज्ञ होता है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को डेटा से सीखने की क्षमता देता है। वो ऐसा मॉडल और अल्गोरिदम तैयार करता है जो बड़े डाटे में छिपे पैटर्न, ट्रेंड और व्यवहार को पहचान कर भविष्यवाणी प्रिडिक्शन करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, आज के समय में जैसे हम लोग यूट्यूब नेटफ्लिक्स पर उसको सुझाव कैसे मिलते हैं, बैंक धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन कैसे पहचानते हैं, गूगल मैप्स ट्रैफिक की भविष्यवाणी कैसे करता है, इन सभी के पीछे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया मॉडल काम करता है। इसलिए आप YouTube पे किसी विषय को लेकर आप देखते हैं तो दूसरे दिन आप YouTube अगर खोलते हैं तो वही चीजें उससे जुड़ी हुई चीजें वो आपको दिखा देता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, अगर Google में आप सर्च करते हैं तो दूसरे दिन आपको उसी तरह की चीजें वो दिखाता है। तो इस करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और क्यों मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसके लिए भी मैं अगर आपको बात करूं, एक सबसे बड़ा चीज यहाँ पर यह है कि तेजी से बढ़ता हुआ ये क्षेत्र है। एआई और एमएल का उपयोग हेल्थ केयर सेक्टर में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, ई कॉमर्स फाइनेंस के सेक्टर में, इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी ओर आकर्षक जो है वेतन है, यहाँ पर भारत और विदेश में मशीन लर्निंग इंजीनियरों को सबसे ज्यादा वेतन देने वाले करियर में गिना जाता है। अनुभवी प्रोफेशनल प्रति वर्ष लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। भविष्य प्रूफ स्किल है, यानी जैसे जैसे हमारा जीवन डिजिटल होता जा रहा है, एआई और एमएल की डिमांड और बढ़ती जाएगी, इसलिए ये स्किल लंबे समय तक उपयोग में आने वाली है। साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे विद्यार्थी मित्रों, आप सब के लिए एक सुनहरा करियर है ये मशीन लर्निंग। तो चलिए इसके बारे में आगे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात कर रहे हैं जीवन कौशल। इस कार्यक्रम में हम लोग आज मशीन लर्निंग के बारे में बातें कर रहे हैं। अब क्यों इस करियर को करना, इसके बारे में तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग क्या काम करता है। आइए इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहला तो डेटा को इकट्ठा करना और साफ करना, डेटा क्लींजिंग एंड प्रिपरेशन, ये उसका मुख्य काम है। मशीन को सीखने के लिए साफ, सही और व्यवस्थित डेटा की जरूरत होती है। दूसरा है अल्गोरिदम और मॉडल बनाना, ये तय करना कि किस ML मॉडल का उपयोग करना है, लीनियर रिग्रेशन या न्यूरल नेटवर्क या फिर क्लस्टरिंग एक्सेट्रा। तीसरी बात आती है यहाँ पर मॉडल को ट्रेन करना और टेस्ट करना, डेटा पर मॉडल को चलाकर उसके एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल को चेक करना होता है। जैसे कोई डाटा आपने दे दिया और उसको ये बता दिया कि इसको इस तरह की ये बातें हैं और ऐसे इसका उपयोग होता है, तो जब ये सारी चीज़ें जब उनको दे देंगे मशीन को, तो मशीन को फिर टेस्टिंग करने के लिए भी उसमें एक्यूरेसी है या नहीं इसके लिए फिर चेक करना होता है। चौथी बात होती है जैसे ऑटोमेशन सिस्टम बनाना, ऐसे सिस्टम तैयार करना जो लगातार सीखते रहे और नई सिचुएशन के अनुसार खुद को अपडेट करता रहे। पांचवी बात आती है मॉडल को प्रोडक्शन में तैनात करना, वास्तविक उपयोग के लिए मॉडल को ऐप, वेब और सर्वर पर लागू करना। छः, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, समय समय पर मॉडल को सुधारना ताकि वह सटीक परिणाम देता रहे। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें जो है एक जिम्मेवारी है, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का ये काम है। इसके साथ में बात आती है मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है और कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी कौशल की आपके अंदर ज़रूरत होनी चाहिए। तो सबसे पहला है मैथमेटिक्स आपका अच्छा हो, स्टैटिस्टिक आपका अच्छा हो, यानी गणित और संख्या की में आप होशियार होना ज़रूरी है। लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, कैलकुलस, ये सभी मशीन लर्निंग की नींव है। दूसरा आता है प्रोग्रामिंग स्किल्स, जिसमें आता है पाइथन सबसे लोकप्रिय है, आर, सीक्वल, जावा, C++ कभी कभी उपयोग में आता है। तीसरी बात आती है मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क, ट्रांसफर फ्लो, पाइटॉर्च, स्किकिट लर्न, केरास। फिर आता है डेटा हैंडलिंग स्किल्स, इसमें जो चीज़ें काम करती हैं वो आता है पंडास, नम्पे, हडूप, स्पार्क। और फिर आखिरी में डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क समझा जाता है, इमेज रिकॉग्निशन, NLP, चैटबॉट आदि के लिए बहुत ज़रूरी। फिर आखिरी बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान क्षमता, डेटा से मीनिंगफुल सॉल्यूशन निकालना, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की कला है। तो आइए इसके साथ ही पांचवी बात आती है जहाँ पर हम लोग अगर बात करें पढ़ाई भी क्या करना है, ये आपको बता दिया, और बहुत ज़रूरी क्या क्या चीज़ें वो मैंने बता दिया। अब स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आपको करनी है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं 8वीं 10वीं में हो, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को, जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, जिसमें हम बात कर रहे हैं डाटा लर्निंग, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बारे में। एक बहुत ही सुंदर करियर है जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होगी। तो सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आज के जीवन कौशल कार्यक्रम में। और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। अब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, दसवीं तक पहुंच गए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कैसे बन सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं। अब सीधा बारहवीं में सही विषय चुने, जैसे कि विज्ञान पीसीएम या पीसीएमबी लेते हैं, तो आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र से ही या साइंस लेकर आपको आगे बढ़ना है बारहवीं में। दूसरा, आपको किसी भी विषय को लेकर ग्रेजुएशन जरूर करना है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी, एमएससी या फिर एआईएमएल, बीसीए या फिर एमसीए भी कर सकते हैं, डाटा साइंस आईटी भी, इसमें भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ें हो गए, एक आपका जो है विज्ञान का विषय चुनकर आप आगे ग्रेजुएशन पूरा करें। फिर ऑनलाइन कुछ कोर्सेस होते हैं, आज कई सस्ते और अच्छे कोर्सेस उपलब्ध हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इन चीज़ों के लिए। कोर्सेरिया, यूडासिटी, ईडीएक्स, गूगल एमएल, क्रैश कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग, ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं। अलग अलग कंपनियां जो नाम मैंने आपको बता दिए, उसमें से आप किसी भी कंपनी के जरिए इन चीज़ों को कर सकते हैं। गूगल भी, माइक्रोसॉफ्ट भी, ईडीएक्स भी, बुड़ा सिटी और कुर्सिया भी सिखाता है। फिर चौथी बात आती है प्रोजेक्ट बनाए। अब कोई चीज़ आप सीख लेते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल, चैट बूट, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट उतनी ज़्यादा सीख आप सीख सकते हैं। फिर इसके बाद आप किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करें, अप्रेंटिस पर आप काम करें, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए, एमएल करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एमएल इंजीनियरिंग डाटा साइंटिस्ट की नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। गिटहब प्रोफाइल बनाना, केगल कंपटीशंस में हिस्सा लेना, रिज्यूम स्ट्रॉन्ग रखना, ये सारी चीज़ें आपको शुरू कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की मांग कहाँ कहाँ है, उसके बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो आईटी सेक्टर में आपको कहीं भी जॉब मिल सकता है और अच्छी जॉब मिल सकती है। फिर आता है हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन कंपनियां हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग वाला है, इसमें अच्छा आप कमा सकते हैं, इसमें अच्छा आपकी ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, स्टार्टअप में आप काम कर सकते हैं, रोबोटिक्स में आप काम कर सकते हैं, टेलीकॉम में आप काम कर सकते हैं, ऑटो इंडस्ट्री में, सेल्फ ड्राइविंग रिसर्च में काम कर सकते हैं। और आपका रोल इसमें होता है जैसे एमएल इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्चर, एनएलपी इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, डाटा एनालिटिक और रोबोटिक इंजीनियर, इन सारी चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे काम आपको करने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी कामों का वेतन कितना मिलेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूँ मैं उसी पर कितना वेतन मिलेगा ये भी बता देते हैं। अब शुरू में फ्रेशर को 6 लाख से 12 लाख रुपए मिल सकता है और ये वार्षिक है। इसके बाद अगर आप 2-3 साल अनुभवी हो जाते हैं तो पूरे साल में आपको 12 से 25 लाख रुपये मिल सकते हैं।

चल रही हैं, सेल्फ मूविंग कार्स होते हैं, मेडिकल एआई सिस्टम, स्मार्ट सिटी, रोबोट, सब में एमएल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में एमएल इंजीनियरिंग डॉक्टरों को बीमारी पहचानने में मदद करेगी, किसानों को मौसम और पैदावार की भविष्यवाणी देंगे, शिक्षा को व्यक्तिगत पर्सनलाइज लर्निंग बनाएंगे, सुरक्षा और साइबर प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आपको एक सुंदर कहानी मैं कोशिश करूंगा सुना पाऊं, ताकि आपका मोटिवेशन बरकरार रहे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए साथियों, कुछ सक्सेस स्टोरीज की मैं बात करूंगा। एमएल एआई की दुनिया में, मशीन लर्निंग और एआई की दुनिया में सफलता की कुछ कहानियां अभी तक कुछ लोगों ने प्राप्त की हैं, जैसे विराट मेहता की। डेटा से सपनों का सफर उन्होंने तय किया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे फालूदी में रहने वाला एक साधारण सा लड़का विराट मेहता, उसके पिता एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे और माँ गृहस्थी थी। घर में आर्थिक संसाधन कम थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। विराट को बचपन से ही कंप्यूटर से गहरी दिलचस्पी थी। वह हर समय समस्या को डेटा की तरह देखने की कोशिश करता, कितने ग्राहक आए, कितने समय भीड़ ज्यादा रहती है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिकती है। उसे लगता था कि अगर इन सब का कोई मतलब निकाल सकूं, तो दुकान भी ज्यादा चल सकती है। यही जिज्ञासा बाद में उसके करियर की बुनियाद बनी। जैसे वो स्कूल की पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष लगा विराट को, लेकिन स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर लैब में वो ज़्यादा टाइम बिताता था, लेकिन पुराने सिस्टम और धुंधला इंटरनेट था। बार बार सिस्टम हैंग होने के बाद भी विराट उस लैब में सबसे ज़्यादा समय बिताता था। दसवीं में उसे एक प्रोजेक्ट बनाना था। वो चाहता था कि एक ऐसा छोटा सा कोड बनाए जो सब्जियों की पिछले एक महीने की कीमत देखकर अगले हफ्ते की कीमत की भविष्यवाणी करे। शिक्षक ने हंसकर कहा, ये कॉलेज का विषय है बेटा, अभी तुमसे नहीं होगा। लेकिन विराट ने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया। इंटरनेट से सीखते हुए धीरे धीरे पाइथन समझना शुरू किया। पहली बार उसने एक साधारण सा प्रिडिक्शन मॉडल बनाया। एक्यूरेसी कम थी, लेकिन आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था। और फिर धीरे धीरे राजस्थान विश्वविद्यालय में बीटेक में एडमिशन मिलने पर विराट की मुलाकात मशीन लर्निंग नाम से हुई। इस नाम का विषय सुनकर उन्हें बड़ा दिलचस्पी लगा और शुरुआत में यह कठोर लगा। गणित, संख्या की एल्गोरिदम पर जैसे ही उसने मॉडल ट्रेन किया गया और मशीन को सीखते देखा, उस जगह जैसे उसने अपना भविष्य खोज लिया। वो रात भर का गल पर डेटा स्टेटस से खेलता, कभी डेटाबेस प्रिडिक्शन करता, कभी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, कभी इमेज क्लासिफिकेशन। धीरे धीरे वो कॉलेज में एआई वाला लड़का कहलाने लगा। अब पहला प्रोजेक्ट लोगों के काम आने वाला एआई विराट एक दिन उसको मिला। विराट एक दिन अपने पिता की दुकान पर बैठे बैठे सोच रहा था, पापा को अक्सर माल ज्यादा करके लाना पड़ता है, ये कभी कम पड़ जाते हैं, क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। इस पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। उसने एक छोटा सा ये एमएल मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल बनाया। पिछले दो साल के बिक्री का डेटा, मौसम का डेटा, त्योहारों के दिन, सप्लायर की डिलीवरी टाइमिंग, ये सब मिलाकर मॉडल को दे दिया और बता देता था कि किस दिन कौन सी चीज कितनी बिक सकती है। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तूने तो दुकान में भी कंप्यूटर की बुद्धि उतार दी। यही से उसकी प्रेरणा और मजबूत हुई। पिताजी के खुश चेहरे को देखकर वो आगे बढ़ने लगा और कॉलेज के फाइनल ईयर में विराट ने एक बड़ा काम किया। उसने एक एआई स्टार्टअप आइडिया बनाया, स्मार्ट कॉर्प सेंस, एक ऐसा एआई सिस्टम जो किसानों को फसल की बीमारी, पानी की जरूरत और अगले 10 दिन का मौसम पैटर्न बताता था। कई कॉलेज दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, भारत में किसान मोबाइल से एआई का उपयोग करेगा छोड़ दे, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। उसने ये प्रोजेक्ट प्रोपराइटर टाइप किया, बनाया और पास के गांव में किसानों के साथ ट्रायल भी किया। परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले थे। एआई की मदद से पानी की 20 से 30% बचत हुई, बीमारी की जल्दी पहचान हुई, सही खाद और दवाई का अनुमान मिलने लगा, किसान खुश होने लगे और उसकी बात फैलने लगी। पहली नौकरी और बड़ी चुनौती थी। कॉलेज खत्म होते ही विराट को बेंगलुरु में एआई कंपनी में मशीन लर्निंग इंजीनियर की नौकरी मिली। नया शहर, नई भाषा, नए लोग, लेकिन विराट की नजर एक ही चीज पर थी, एआई को आम लोगों की जिंदगी में आसान बनाना। कंपनी ने उसे फ्रॉड डिटेक्शन प्रोजेक्ट पर लगाया। दिक्कत यह थी कि मॉडल बार बार फॉल्स अलर्ट देता था। विराट ने महीनों तक डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग और न्यूरल नेटवर्क ट्यूनिंग किया। आखिरकार उसने मॉडल बनाया जिसकी एक्यूरेसी 93% थी। कंपनी में ये एक रिकॉर्ड बन गया और कंपनी के सीईओ ने कहा, विराट यू हैव चेंज्ड द गेम। तो इस तरह से विराट चमक गए और एआई स्टार्टअप की शुरुआत हुई और उनको राष्ट्रीय पहचान मिली। कुछ वर्षों के बाद अनुभव के बाद विराट ने हिम्मत करते हुए अपना स्टार्टअप स्मार्ट कॉर्प सेंस फिर से शुरू किया। इस बार वो ज्यादा परिपक्व था, तकनीकी रूप से मजबूत था और उसने अपने मशीन की स्पष्टता थी, मशीन लर्निंग की पूरी अनुभव उनके पास था। भारत सरकार के एग्रीटेक इनोवेशन प्रोग्राम में उसका प्रोजेक्ट चुन लिया गया और उसे फंडिंग मिली, टीम बनी और एक साल में उसका एआई सिस्टम 30,000 प्लस किसानों तक पहुंच गया। राष्ट्रीय स्तर पर उसे यंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो साथियों, कहानी यहाँ पर खत्म होती है। विराट हमेशा कहता है, डेटा से मत डरो, उससे दोस्ती करो। एआई का असली मकसद इंसानों को बदलना नहीं बल्कि उनकी मदद करना है। सीखना बंद मत करो, एआई रोज अपडेट होता है। तो ये विराट का जो एक मैसेज था वो मैंने आपको बताया। तो चलिए साथियों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, तब तक आप बने रहिए। और मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है जरूर अभी से शुरू कीजिए आप, और बहुत बड़ा जो है ड्रीम है, ये एक बहुत बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा अवसर है जहाँ पर अच्छी खासी कमाई आप करके लोगों को मदद करके दुआएं कमा सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: भुलाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात पुनेरी आवाज अर्थात 107.8 FM, आणि तुम्ही आता आरजे जगदीश सोबत।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
2: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: सिर झुमका गिरा दे, मैं क्या बोलूं बेकार में झुमका गिरा दे।
1: नमस्कार, मी मोनाली सावागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मत दुआ दे कि मैं बददुआ हूं, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपनी जीवन और अपनी मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में बहुत सी चीजें हमने देखी, समझी कि कैसे खुद अपने आप को हम मैनेज करना सीख सकते हैं। चाहे उसमें बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, रिश्तों को भी देखा कितने रोल्स हम निभाते हैं, और अब हम पहुंचे हैं रिसोर्सेज पर। ये हमें समझ में आया कि हमारे सामने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, हमारे सामने मेंटल रिसोर्सेज, हमारी अपनी जो संकल्प की शक्ति है, जो थॉट पावर है, वो कितना बड़ा रिसोर्स है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। आज रिसोर्सेज को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि कुछ और भी हमारे पास निधि है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब बात करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, रिसोर्सेस को थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि एक बार एक नए रूप में हमारे सामने आ रही है कि एक तो मेरी ये फिजिकल जो आपने बताया था कि ये मेरा रिसोर्स हुआ, और एक मेरी जो थॉट पावर है उसको मैं कैसे एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते।
1: थॉट पावर तो सबसे बड़ा रिसोर्स है ना, बिकॉज सारा दिन में हम जो कुछ कर रहे हैं इट्स स्टार्टिंग विद अ थॉट। सो एवरीथिंग दैट्स एंड वी आल्सो हैव अंडरस्टूड दैट मेरा थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट करता है, तो सबसे बड़ा रिसोर्स, मतलब चाहे आप अपने धन को रिसोर्स मानो, मैन पावर को रिसोर्स मानो, लेकिन उस सब को हैंडल करने वाला, उस सब को मैनेज करने वाला, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। बट द माइंड व्हिच इज गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग, हु इज गोइंग टू मैनेज द माइंड एंड वो रिसोर्स। जैसे अगर किसी के पास बहुत धन है लेकिन वो उसको राइट विधि से यूज न करे तो वो धन बढ़ने की बजाय या यू नो वो वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक स्टॉक ऑफ एनर्जी है, लेकिन सारा दिन में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। अब हम सबको पता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारी सबसे वैल्यूएबल जो रिसोर्स है दैट इज थॉट पावर, क्योंकि सब कुछ जो हम करते हैं सारा दिन में, चाहे वो हमारा वर्क है, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हैं, इट ऑल इज बिगिनिंग विद अ थॉट। अपनी थॉट्स को राइट विधि से यूज करना, दैट विल डिसाइड एवरीथिंग दैट हैपेंस विद मी इन लाइफ। क्योंकि माय थॉट देन माय फीलिंग, इट विल कम आउट इनटू एक्शन, एंड जो मेरा एक्शन होगा उसी का रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। सो एवरीथिंग इज बिगिनिंग विद द थॉट। तो थॉट पावर तो सबसे बड़ा रिसोर्स है।
0: इनफैक्ट कई बार हम ये भी कहते शिवानी कि मैंने सोचा और वो हो गया। अभी सोचा ही था और वो हो गया।
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि एनर्जी है ना, वो एनर्जी ही तो अब ये डिपेंड करता है कि हम कितनी पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमारे हाथ में है सब कुछ, लेकिन क्योंकि हम अवेयर नहीं है, जैसे धन है लेकिन मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ यूजफुल तरह से जाएगा, कुछ वेस्ट जाएगा। इसी तरह रिसोर्स है मेंटल पावर, थॉट पावर, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है। सारा दिन में कितने थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, किस किस के बारे में सोच रहे हैं, किस किस के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, अच्छा अपने बारे में कैसा सोच रहे हैं, मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, व्हाट इज ऑल दिस। वो ही एनर्जी कुड बी यूज्ड इन यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, बट नो, इंस्टेड ऑफ दैट फियर, इनसिक्योरिटी। एंड जितने पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं क्वांटिटी कम होती है, स्लो डाउन होते हैं, लेकिन नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स बहुत इतने फास्ट चलते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि कितने थॉट्स क्रिएट,
0: और वो उसके साथ लिंक जुड़ता जाता है, यू नो। और पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने में जो हम अभी करने की कोशिश भी करते हैं, जब हम करते हैं तो उसके आगे हमें नहीं आता ज्यादा।
1: क्योंकि आप पॉजिटिव थॉट कॉन्शियस एफर्ट करके क्रिएट करते हो, अवेयरनेस के साथ क्रिएट करते हो, लेकिन नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस नहीं चाहिए ना, इट जस्ट गोज वेरी वेरी वेरी वेरी फास्ट, पता भी नहीं चलता कितनी थॉट्स चली जाती है। जब हम रिएक्ट कर देते हैं वर्बली तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं जब गुस्सा आता है, लेकिन जो हम बोलते हैं इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ जो हमने एक्चुअली सोचा होता है उस व्यक्ति के लिए। बहुत कुछ अगर सोचा होता है ना किसी के बारे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब अगर गुस्सा आ गया या ट्रिगर हो गया वो, तो उसमें से कुछ एक परसेंटेज निकलता है।
0: वो जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो जो वही निकल जाती है फटाफट।
1: लेकिन जो निकलता है वो भी हमें इतना हैरान करता है, और हम कहते हैं मैं नहीं बोलना चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, या मेरा तो भाव ही नहीं था ये बोलने का। व्हाई वी आर नॉट अवेयर कि हमने ये सारी थॉट्स कब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करके, अक्यूमुलेट करके, और वो जो बाहर निकलती हैं तो वो दिखने में जैसे इतना सब कुछ आई सेड, बट व्हाट डिड आई थिंक, वो तो मुझे हो गए। तो थॉट के ऊपर कंटिन्यूअसली एक, इट्स नॉट यू नो टू गेट स्ट्रेस्ड के वो व्हाट एम आई थिंकिंग द होल डे, लेकिन बीच बीच में रुक कर अगर हम देखते जाएंगे, इट इज लाइक बीच बीच में स्टॉप जो हम करते हैं एक घंटे के बाद एक मिनट, दैट इज फॉर दिस, स्टॉप चेक, स्टॉप चेक. तो अगर बार बार ये होता जाएगा तो धीरे धीरे वो करना भी नहीं पड़ेगा ऐसे डेलिबरेटली, आपको सारा दिन में एक अवेयरनेस रहेगी. और ऐसा नहीं है कि एकदम से नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन अब जैसे ही आएंगी पता चल जाएगा. अब पता चल जाएगा, नाउ आई एम फीलिंग जेलस, यू विल कम टू नो, अब आई एम हर्ट, आपको पता चल जाएगा.
0: I'm insecure, you know, like,
1: yes, you can make out, yes. You can make out what is going on. And this is self-awareness. बीमारी पता चल गई एक बार, तो फिर इलाज करना तो बहुत इजी है. इफ आई कैन अंडरस्टैंड द मिनट इट स्टार्ट्स कि मुझे हर्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, देन आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ एंड स्टॉप. लेकिन पता ही नहीं चल रहा, हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और यही सोच रहे हैं दूसरे की वजह से हो रहा है, तो आप अपना इलाज नहीं करवाते. तो जिस दिन बीमारी का रूट कॉज पता चल जाता है, फिर इलाज करना इज नॉट डिफिकल्ट. तो अगर सुबह हम थोड़ी देर ऐसे अपने साथ टाइम स्पेंड करें, जस्ट टू सी वॉट इज हैपनिंग हियर, एंड देन कॉन्शियसली क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स. क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हम खत्म नहीं कर सकते. यू नो समटाइम्स पीपल जस्ट फील कि मेडिटेशन मीन्स सोचना बंद कर दो, यू नो जस्ट फोकस ऑन अ पॉइंट और आप सोचना बंद कर दो. वन, इट विल नॉट हैपन. एकदम से आप फिफ्थ स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और आप बोल रहे हो अब एकदम से उसको न्यूट्रल में ले आओ, तो वो झटका लगेगा. अब यहाँ झटका मतलब क्या कि बहुत फास्ट स्पीड पर आपकी थॉट्स है एंड सडनली अपने आप को कहते हो नो थॉट्स, आई एम नॉट टू थिंक, तो द हियर प्रेशर गेट्स बिल्ट अप. तो नो थॉट्स इज नॉट द सोल्यूशन. एंड अगर नो थॉट्स हम कर भी लिया, बट वेन वी गो इन टू एक्टिविटी, तो मुझे ऑफिस में आज प्रोजेक्ट है, लोगों से मिलना है, यू नो सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, कैन आई से नो थॉट्स?
0: थॉट्स तो क्रिएट करने ही पड़ेंगे,
1: है ना. तो मेरी मेडिटेशन जो मैं करती हूँ, इट इज सपोज टू बेनिफिट मी इन माई डे टू डे. अगर हम नो थॉट्स अभी कर भी ले, हमें अच्छा लगता है थोड़ी देर, क्योंकि कुछ वेस्टेज नहीं हुआ. लेकिन सारा दिन में वो मुझे कैसे बेनिफिट करेगा? तो राजयोग मेडिटेशन में हम थॉट्स को बंद नहीं करते, हम कॉन्शियसली एलिवेटेड पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं. सो इट्स बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी कि हम सुबह उठकर टाइम निकालकर अपने माइंड को एक अलग दिशा में, उसको आदत नहीं है उस दिशा में जाने की, उसको आदत है ये फास्ट फास्ट वाले, तो उसको धीरे से धीरे धीरे हर रोज उसके साथ बैठकर प्यार से उसको दूसरी दिशा में लेकर जाना है. अब जब हम उसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना शुरू करते हैं, इट डजंट गो इमिजिएटली, फिर वही थॉट्स आते रहते हैं ऑफिस में ये. तो वी हैव टू वर्क विद इट वेरी जेंटली, नॉट हार्शली, बट नॉट टू गिव अप. अब कई बार हम ट्राई करते हैं मेडिटेशन, फिर हम कहते हैं नहीं होता एंड वी गिव इट अप. It will not happen in one day, two days, 10 days. It will take its time. जो चीज को इतने सालों से या कहें इतने जन्मों से शायद एक पर्टिकुलर दिशा में जाने की आदत थी, उसको हम धीरे धीरे दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं. It will take little time. But we have to not be harsh. We have to be very gentle with ourselves. लेकिन होगा क्या कि आप अब एक frequency को change कर रहे हैं. You're tuning into a different frequency altogether. So, उसका जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ सुबह नहीं होगा,
0: हाँ, वो दिन भर में हो जाएगा फिर. Yes.
1: वो दिन भर में हो जाएगा कि आपने आदत डाली है अपने मन को अब पॉजिटिव सोचने की, तो फिर वो उसकी जो प्राप्ति है वो सिर्फ सुबह के 10-15 मिनट आधा घंटा नहीं, सारा दिन. अब आए सिचुएशन, अब आए लोग सामने जो कुछ कह रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं हमारे को, लेकिन मेरे मन को एक अलग दिशा में जाने की अब आदत पड़ गई है. फिर हमें सिचुएशन आने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा, आई हैव टू थिंक पॉजिटिव. सो मेंटल एनर्जी इज वेरी वैल्यूएबल. अब तीसरी जो हमारी चीज है, हमारी मेमोरी. मेमोरी तो बचपन से हमें पता है कि ये बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई में हर टाइम वी हैव बीन यूजिंग आवर मेमोरी. लेकिन मेमोरी हमारी पर्सनैलिटी जो है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आज हम जो हैं, हमारा जो व्यक्तित्व, नॉट फिजिकल पर्सनालिटी, बट मेरी जो व्यक्तित्व है, दैट्स अ लॉट बेस्ड ऑन माय मेमोरी. बिकॉज इस मेमोरी में हमारे हर थॉट, हर फीलिंग और हर एक्शन रिकॉर्ड होता है. एवरी थॉट आई क्रिएट, फीलिंग आई जेनरेट एंड एक्शन आई परफॉर्म गेट्स रिकॉर्डेड हियर. मेरी हर हैबिट, हर टेंडेंसी का रूट कहाँ पर है? मेमोरी में. तो लाइक कंप्यूटर में नहीं होता मेमोरी, तो मेमोरी में क्या करते हैं, जो प्रोग्राम आपको वर्क करना है उस कंप्यूटर में, आप उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर देते हैं. सो द प्रोग्रामर बेसिकली लोड्स द प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड देन द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग ऑन इट्स ओन. तो यहाँ भी हम एवरी थॉट जो सारा दिन क्रिएट करते हैं, इट गेट्स लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ माई कंप्यूटर हियर. एंड एवरी दिस थॉट एंड हैबिट दैट गेट्स फॉर्म्ड इज फाइनली माई पर्सनल यू नो प्रोग्राम, दिस इज हु आई एम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हैबिट्स होती क्या है, हर कोई भी चीज जो हमने
0: बार बार
1: कई बार रिपीट कर ली, वो बार बार करने से यहाँ सेव होती गई. नाउ दैट हैज बिकम माय हैबिट. अब जब नेक्स्ट टाइम इम्पल्स आएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल सिगरेट पीना, किसी ने जब बहुत बार स्मोकिंग कर ली है, अब नेक्स्ट टाइम उसको सिगरेट दिखे या उसको स्मृति आए या कोई उसके सामने पी रहा है, उसको सोचना भी नहीं पड़ता है. यू डू नॉट इवन हैव टू क्रिएट अ थॉट, आई वॉन्ट टू स्मोक अ सिगरेट. ये थॉट भी नहीं क्रिएट करना पड़ता. तो माइंड यूज नहीं हुआ, इंटेलेक्ट भी यूज नहीं होती कि सिगरेट पीना राइट है या रॉन्ग है, ये भी नहीं होता. तो क्या हुआ, माइंड और इंटेलेक्ट जो हमारी दो वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं, इसको बाईपास करके हम सीधा एक्शन में आ गए. इसको हम कहेंगे इम्पल्स, कि आउट ऑफ इम्पल्स आई कम इनटू एक्शन.
0: आई फेल्ट लाइक हैविंग अ सिगरेट, यू नो, इट्स लाइक दे डोंट इवन थिंक.
1: हाँ, दे डोंट इवन थिंक. सी, कि सोचना भी नहीं पड़ता कि मुझे पीना है, या किसको नहीं सोचना पड़ेगा जिसने कई बार वो कर लिया है. तो इम्पल्स इज बेसिकली जहां आपको ना सोचना पड़ता है ना समझना पड़ता है. सो माइंड एंड इंटेलेक्ट बोथ फैकल्टीज आर टोटली बाईपास्ड एंड इट जस्ट कम्स आउट इनटू एक्शन लाइक दैट. लेकिन इम्पल्स मीन्स क्या, एक एक्शन जो हमने कई बार रिपीट किया था. अब गुस्सा भी ऐसे ही हो गया, जैसे सिगरेट पीना या ये सब बाहर की आदतें हैं, लेकिन गुस्सा क्यों हमें नहीं पता चलता कि ये एक्चुअली हम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार करने के बाद इट हैज बिकम माय हैबिट. अब ना हम सोचते हैं उसके बारे में, ना उस पर इवैल्यूएट करते हैं कि करना है नहीं करना, इट जस्ट कम्स आउट. दिस इज हाउ इट इज कमिंग आउट. सो लॉट ऑफ माय हैबिट्स हैव बिकम सो डीप रूटेड कि नाउ आई वर्क बाय इम्पल्स. मैं आई एम नॉट, एंड व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग बाय इम्पल्स, तो क्रिएटिव प्रोसेस बंद हो गया,
0: ऑटोमेटेड हो गया,
1: ऑटोमेटेड हो गया.
0: लाइक इट्स अ रिएक्शन, यू नो,
1: क्योंकि मन और बुद्धि जो दोनों वो एनर्जीज हैं जो क्रिएटिविटी को लाएंगी कि एक नया रिस्पॉन्स करें, सोचें कि ये करूं या नहीं करूं, करूं तो कैसे करूं, वो तो दोनों फैकल्टीज बाईपास हो गई है एंड सीधा इट इज कमिंग आउट इनटू एक्शन. तो तब हमें पता नहीं चलता कि मैंने गुस्सा कर दिया, या तब हम बोलेंगे मैंने नहीं किया, उन्होंने दिला दिया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ना सोचा था ना डिसाइड किया था कुछ भी. तो ये जो हमारा पर्सनल प्रोग्राम यहाँ बन जाता है, यू नो, एक बार आपने प्रोग्राम कंप्यूटर में लोड कर दिया, आफ्टर दैट इट विल जस्ट वर्क ऑन इट्स ओन. तो इम्पल्स कैसे है, जैसे अगर कंप्यूटर पर आप काम करते हो, अगर आप कीबोर्ड पर कोई भी बटन प्रेस करो तो वो इमिजिएटली वो कैरेक्टर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा, लेकिन वो इम्पल्स से नहीं आया, उसका प्रोग्राम ऑलरेडी फीड किया होता है कंप्यूटर के अंदर कि ये की प्रेस होगी, दिस इज द कोड एंड दिस इज द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. लेकिन हमें वो प्रोग्राम नहीं पता चलता, हमें क्या लगता है यहाँ बटन प्रेस किया, यहाँ वो आ गया. इसी तरह आपने ये बोला, मैंने रिएक्ट कर दिया, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आपके वो बोलने में और मेरे वो रिएक्ट करने के बीच में एक प्रोग्राम यहाँ ऑलरेडी कोड हो चुका है, एंड योर saying that was just a trigger, कि आपने बटन प्रेस किया, लेकिन जो मेरा रिएक्शन था दैट वॉज बेस्ड ऑन जो प्रोग्राम. अब जैसे कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड और मॉनिटर के इंटरफेस में वो प्रोग्राम नहीं किया, आप कितनी भी कीज प्रेस करो उस कीबोर्ड पे कुछ नहीं आएगा. आज हमें लग रहा है दिस इज मैजिक, हम प्रेस करते हैं वहां वो आता है, इट्स नॉट, देर इज अ प्रोग्राम दैट हैज गॉन इनसाइड इट. तो एवरी थॉट दैट वी रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो हमारा प्रोग्राम यहाँ बन जाता है. हमें अब अवेयरनेस नहीं है कि वो प्रोग्राम ऑलरेडी बन गया, हमें क्या लगता है यहां से ट्रिगर आया, यहां से मैंने जेनरेट किया. तो जो हम रिस्पॉन्स जेनरेट कर रहे हैं, आई विल हैव टू रिमेम्बर आई हैव क्रिएटेड द प्रोग्राम एंड इफ आई वॉन्ट टू चेंज इट
0: आई कैन चेंज.
1: कोडिंग मैंने की थी.
0: वेरी ट्रू शिवानी की, जहां बात यह आई कि ये रियलाइज हो जाएगा कि की दबाने वाला और वो लिखने वाला जो जो पूरा प्रोग्राम था वो मैं था, तो मुझे पता है कि उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ.
1: की कोई भी दबा सकता है बाहर से, राइट? लेकिन मैं स्क्रीन पर क्या दूंगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन जो मैंने प्रोग्राम लिखा होगा. सो मेरे बटन्स प्रेस करने वाले आप हो एक्चुअली, सिचुएशंस जो बाहर से आती है, बट व्हाट आई विल फ्लैश ऑन माय स्क्रीन हियर विल बी बेस्ड ऑन व्हाट कोड आई हैव रिटन इनसाइड. नाउ अगर जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, इफ आई डोंट लाइक इट, आई कांट टेल यू आपने ये बटन क्यों प्रेस किया. आई कैन ओनली चेंज माई कोडिंग, तो वो कोडिंग मुझे कहाँ चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो यहाँ फीड हुआ हुआ है इसकी जो डीपेस्ट लेयर्स हैं वो है हमारी बिलीफ सिस्टम। बचपन से एक एक बिलीफ जो यहाँ बैठी हुई है, तो वो बिलीफ से हमारी एक एक थॉट, एक एक फीलिंग क्रिएट होती है। अब शुरू में तो इट विल जस्ट स्टार्ट फ्रेश, यू नो, एक एक थॉट, एक एक फीलिंग, लेकिन वही थॉट्स जब बार बार क्रिएट होने लगे, नाउ इट बिकम्स माय हैबिट। सो इफ वी लुक एट इट लाइक अ ट्री, तो जो जो पेड़ के जो रूट्स हैं, दैट इज आर बिलीफ्स एंड परसेप्शंस, जो ट्रंक है दैट इज आर थॉट्स एंड फीलिंग्स, एंड देन द ब्रांचेस आर आर एक्शंस। लेकिन ये जो सारे एक्शंस आ रहे हैं, ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं, हमारे बिलीफ से। अब ये जो वृक्ष है कि यहाँ बिलीफ्स एंड परसेप्शंस, द ट्रंक इज थॉट एंड फीलिंग, एंड देन इज द एक्शन। अब ये वृक्ष जब बड़ा होता जाता है तो इट बिकम्स लाइक अ क्रीपर, यू नो, जो अपने और ही फिर लपेट लेता है। तो ये मेरी पर्सनैलिटी बनती जाती है कि ऑल माई एक्शंस, ऑल माई थॉट्स एंड फीलिंग्स, इट जस्ट गोज ऑन। तो जैसे ही ये क्रीपर या बेल जो है लिपटती जाती है, माई ट्रू सेल्फ गेट्स हिडन समवेयर इनसाइड, एंड दिस माई हैबिट्स एंड टेंडेंसीज बिकम्स माई एक्चुअल पर्सनैलिटी। आई थिंक दिस इज हु आई एम, एंड माई ट्रू सेल्फ हियर, द ओरिजिनल सेल्फ गेट्स हिडन इनसाइड। तो ये जो बेल बन जाती है, इट्स ऑल्सो लाइक अ फेंस जो मेरे चारों तरफ बन गया, एंड दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोक्यूटेड। अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, इट इज लाइक आपने वो जो फेंस है जो मेरे चारों तरफ बन गई है, आपने आकर उसको छेड़ दिया, एंड आई विल रिएक्ट। मुझे ऐसा कहा, एक्चुअली आपने मुझे नहीं कहा, आपने किसको कहा, वो जो मेरे हैबिट्स बन गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किस चीज से किया कि मैं ये हैबिट्स हूँ। तो अगर आपने मेरी किसी हैबिट के बारे में, मेरी किसी आदत के बारे में कुछ कह दिया, आई टेक इट वेरी वेरी पर्सनली कि आपने मुझे कहा, एंड आई विल रिएक्ट। सो दैट इज व्हेन वी से पर्सनालिटी क्लैश, कि ये दो पर्सनालिटीज का क्लैश क्यों हो रहा है, जब वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, यू नो, दैट वायर जो इलेक्ट्रिक हो चुके है, इट विल जस्ट स्पाइक अगेंस्ट ईच अदर, एंड देयर विल बी फायरवर्क्स बिटवीन द टू पीपल।
0: आई थिंक वी नीड टू टेक इट बैक।
1: यस, वी नीड टू रियलाइज दैट दिस इज नॉट हु आई एम, जो ये लिपट चुका है इसके अराउंड, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने बिलीफ सिस्टम्स ये बनते जाते हैं कि कहीं वो जो बीज है वो तो बिल्कुल ही अंदर छुप जाता है, और ये सारी लेयर्स ऊपर से बनती जाती हैं। नाउ मेडिटेशन, व्हाट इट हेल्प्स मी टू डू, गोज टू द कोर, कि वो जो बिल्कुल बीज है उस पर जाना है, एंड अपने इस जो पूरे हमने हैबिट्स और टेंडेंसीज बनाए हैं, आई नीड टू रीप्रोग्राम। मुझे रीप्रोग्राम करना है। अभी क्यों रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि जब बटन यहाँ से प्रेस हो रहा है, जो मेरा यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे पसंद नहीं है, इट्स अ रिएक्टिव रिस्पॉन्स, मुझे अपने रिस्पॉन्स को चेंज करना है, तो मुझे रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी मतलब थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन थॉट्स का सोर्स क्या है,
0: बिलीफ सिस्टम।
1: तो मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अब ये बिलीफ सिस्टम सारे कहाँ हैं, दे आर इन द सबकॉन्शियस माइंड, दे आर नॉट इन द कॉन्शियस माइंड। मेजोरिटी ऑफ अस को पता भी नहीं है कि हम कैसे कैसे बिलीफ सिस्टम्स पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो मेडिटेशन में क्या होता, जब हम अपने माइंड को साइलेंस करते हैं, तो हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड पर चले जाते हैं। सो इट्स लाइक बेसिकली गोइंग इन द लोअर लेयर। अब वो लोअर लेयर पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग, कोडिंग पहले की हुई है बिलीफ सिस्टम। लेट्स से एंगर इज नेचुरल, ये वो लोअर लेयर पे कोड किया हुआ है। अब हम एक नया प्रोग्राम लिख रहे हैं, आई एम अ पीसफुल सोल। तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो हमारी सबकॉन्शियस में डीप रूटेड है, एंड दैट्स व्हाई वी से ये तो मेरी नेचर है, आई कांट चेंज इट, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि मैं कॉन्शियसली वो कर रही हूँ, क्योंकि वो एज एन इम्पल्स हो रहा है कि वो बिलीफ सिस्टम फिट किया हुआ है कि एंगर तो गुस्से के बिना काम नहीं होता। अब मन सोचता भी नहीं है कि गुस्सा करो या नहीं, बुद्धि तो बीच में आती ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि सो इट्स हैपनिंग इम्पल्स। सबकॉन्शियस लेयर प्रोग्राम फिटेड है, गुस्से के बिना काम नहीं हो सकता, जैसे ही कीबोर्ड से बटन यहाँ प्रेस किया, स्टिम्यूलस आया, गुस्सा, इट्स कम एज अ रिस्पॉन्स। अब जब हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मेनी पीपल ट्राई टू डू इट फ्रॉम आउटसाइड, गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा, इट विल नॉट वर्क. वो टेम्पररी होगा, फिर कुछ ना कुछ अपने माइंड को यू नो अपने आप को डेविएट करने की कोशिश करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं. दीज आर वेरी टेम्पररी थिंग्स. वो एक दो दिन काम करेंगे, उसके बाद नहीं काम करेंगे. प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा. रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड इज मेडिटेशन. सो उस प्रोग्राम को चेंज करना मतलब उस सबकॉन्शियस लेयर पे जाना और वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करना. तो उसको हम नहीं हटा सकते, वो है, लेकिन हम एक नया वाला क्रिएट कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हेन वी सिट इन मेडिटेशन एंड वी फीड इन दिस इनटू द बिलीफ सिस्टम. आई एम अ पीसफुल सोल, नॉट आई वांट पीस. आई वांट पीस इज नॉट द बिलीफ,
0: आई
1: एम. तो यहाँ जब वो बिलीफ सिस्टम फिट हुआ तो नेक्स्ट टाइम थॉट्स किस बेसिस पे क्रिएट होंगे, क्योंकि हमने देखा कि मन की शक्ति, थॉट पावर इज अ रिसोर्स, लेकिन उसका सोर्स क्या है?
0: बिलीफ्स,
1: हमारी पर्सनालिटी जो बनी है. तो मैं थॉट लेवल पर एकदम से चेंज नहीं कर पाऊंगी, वो जाता नहीं है, बिकॉज थॉट्स ग्रो कहाँ से हो रहे हैं? बिकॉज थॉट्स आर द ट्रंक.
0: बिलीफ सिस्टम इतना एम्बेडेड है कि वो हमने थॉट तो मैं चलो क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही सिचुएशन आती है वो एकदम से रिएक्शन जो है,
1: क्योंकि वो बना हुआ है ना बहुत टाइम से, तो इसलिए इतनी जल्दी अपने साथ वो हताश भी नहीं हो जाना. मैंने तो थॉट क्रिएट किया था आई एम अ पीसफुल सोल, फिर मुझे गुस्सा कैसे आ गया? वी आर रीप्रोग्रामिंग. इट्स लाइक रीफॉर्मेटिंग द होल कंप्यूटर. इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट डू नॉट स्टॉप, कंटिन्यू. तो जैसे ही हम ये बार बार अपने आप को ये बिलीफ सिस्टम डालते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, तो नेक्स्ट टाइम थॉट कौन से बिलीफ से ग्रो होगा? जो रूट्स हैं, हम रूट लेवल पर चेंज कर रहे हैं. अभी तक रूट्स वो सारे थे, एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नॉर्मल, वो सारे रूट्स थे. तो ट्रंक में थॉट्स भी कैसे आएंगे उस वृक्ष के? वैसे ही आएंगे. एक्शंस कैसे होंगे? गुस्से वाले होंगे. अब हम उसको जड़ों से, जिसको कहते हैं ना जड़ों से बदलना है, तो संस्कार

0: है मैंने अपने इस प्रोसेस में कि अगेन एंगर, हर्ट, ये जेलसी, ये सारी चीजें जो है, जो सारा ये नेगेटिव पूरा है, ये मुझे हटाना नहीं है. जैसे अंधेरे को बाहर नहीं निकालना, जैसे कई बार कहा जाता है कि अंधेरे को उठा उठा के बाहर निकालो तो उजाला आएगा. लाइक आई रियलाइज इट, यू नो, कि द मोमेंट आई एम एबल टू टेल माई सेल्फ आई एम अ लवफुल बींग, आई एम अ पीसफुल बींग, आई डोंट गेट एंग्री.
1: एब्सोल्युटली. अब ये आई एम अ लवफुल बींग, आई एम अ पीसफुल बींग, ये सिचुएशन आने के बाद थॉट नहीं क्रिएट करनी है. अभी क्या होता है, थॉट सिचुएशन आई से आई एम अ पीसफुल बींग, देन हम यही ट्राई कर रहे हैं. ये साइलेंस में बैठकर वो लोअर लेयर पे जाके बिलीफ को चेंज करना है पूरी तरह से. जब वो हो जाएगा, जब सिचुएशन आएगी सामने, तो आपको कुछ भी नहीं करना
0: और
1: पड़ेगा,
0: इनफैक्ट अब आपको पीसफुल बीइंग करना
1: ये भी
0: पड़ेगा,
1: नहीं
0: ये भी नहीं
1: क्रिएट
0: याद
1: करना
0: आएगा.
1: पड़ेगा.
0: हाँ, अच्छा, इट डजंट कम
1: इट
0: आल्सो.
1: डजंट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे कि जब परिस्थिति आई आप थॉट क्रिएट करेंगे आई एम अ पीसफुल बींग. नहीं, आपकी थॉट्स ऑलरेडी पीसफुल हो गई हैं. अब आपका एक्शन क्या होगा, यू विल नॉट से इन एक्शन आई एम अ पीसफुल बींग, यू आर अ पीसफुल बींग. नो, इट्स जस्ट दैट द एक्शन विल रिफ्लेक्ट पीस. वो एक्शन जो आपका व्यवहार आएगा उसमें अग्रेशन नहीं, तनाव नहीं, लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जड़ से चेंज कर दिया है आई एम अ पीसफुल सोल. एंगर इज नेचुरल, इसको हटा नहीं सकते, लेकिन एक लेयर तो चेंज कर सकते हैं ना. और जैसे ही ऊपर से एक लेयर आएगी आई एम अ पीसफुल सोल, नीचे वाली लेयर अपने आप चली जाएगी. अब कई बार क्या होगा, सुबह उठकर बोलेंगे आई एम अ पीसफुल सोल, फिर सारा दिन करते करते बोलेंगे रहन दो, होता तो है नहीं गुस्से के बिना. तो फिर क्या हो रहा है, एक तरफ से एक बिलीफ क्रिएट कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से पुरानी बिलीफ को रीअफर्म कर रहे हैं. सो थिंक अबाउट इट फर्स्ट, इवैल्यूएट वेदर यू आर लाइकिंग दिस बिलीफ एंड यू फील इट विल वर्क फॉर
0: Make
1: यू.
0: it your belief system,
1: यस
0: actually.
1: यस, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू टेक इट वंस, एक्सपेरिमेंट विद इट. अगर आपको उसका रिजल्ट पसंद आता है, देन इट बिकम्स द ट्रूथ फॉर यू. यस, आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ये पसंद है, दिस मेक्स मी फील कंफर्टेबल. गुस्सा करके कभी कंफर्टेबल नहीं. फिर अपने बिलीव्स को एक बार बना दिया, फिर उनको बार बार सारा दिन में चेंज नहीं करना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी आ जाए. आई एम स्टिल टू हैंडल इट पीसफुली, आई एम स्टिल टू बी, हो सकता है अभी भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाएगा कभी, लेकिन आई हैव टू सिट बैक एंड से ओके, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, नॉट से हाँ नहीं गुस्सा करना तो नेचुरल ही था. तो शिफ्ट नहीं करे अपने
0: अच्छा,
1: बिलीव्स
0: बट
1: के
0: हाउ
1: बारे
0: डू
1: में.
0: वी यूज इट एज अ रिसोर्स, यू नो?
1: इट इज अ रिसोर्स बिकॉज वो जड़ है, और जड़ से ही थॉट्स हैं, थॉट से एक्शन है. तो सारा दिन हमारे सारा कुछ जो हो रहा है वो हमारे एक्शन और थॉट्स से हो रहा है, लेकिन एक्शन और थॉट्स का सोर्स क्या है, ये बिलीफ्स हैं, ये संस्कार्स हैं, ये पर्सनालिटी है. तो अगर ये रिसोर्स राइट नहीं होगा तो बाकी वृक्ष भी हेल्दी नहीं हो सकता. जब तक रूट्स हेल्दी नहीं है, सीड हेल्दी नहीं है, तो पूरा वृक्ष हेल्दी नहीं होगा. इसलिए जड़ लेवल पर चेंज कर लिया तो फिर वृक्ष को कुछ नहीं करना पड़ेगा सारा
0: दैट्स
1: दिन.
0: वेरी ट्रू. इनफैक्ट जहां मेरे को फील अच्छा नहीं हो रहा, सो आई थिंक आई नीड टू चेंज द प्रोग्राम एंड आई हैव टू रियलाइज दैट. थैंक यू सो मच. शांति, आप तो यही कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आपका अपना है. कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. इस श्रृंखला में हमने बहुत कुछ जाना है अपने बारे में, और खुद को मैनेज करने का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने लिया है. आगे अभी बहुत सी बातें करनी बाकी हैं. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: मार गोरी।
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार और स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत शय वो होती है जब प्यार हो जाता है, ढाई आकर प्रेम के ये भी कहा गया है। लेकिन प्यार में अगर कभी आपको वो नहीं मिल पाता जिसे आप प्यार करते हैं, या लगता है कि धोखा हुआ, ऐसे में जो डिप्रेशन होता है वो काफी सीवियर होता है। कभी आपके किसी अपने को ये डिप्रेशन हो या फिर आप भी इससे गुजर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है जिंदगी। डिप्रेशन की जो हम पूरी बातचीत कर रहे हैं उसमें आज हमने आपसे वादा किया था, बात करेंगे कि अगर प्यार में आपको धोखा मिले या प्यार में लगे कि आप डिप्रेस्ड हो गए हैं तो फिर कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, फिर से जिंदगी जीने का एक नया अंदाज सीखना है और प्यार के जो सही मायने हैं उसको तलाशना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका हार्दिक स्वागत।
2: नमस्कार।
1: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। आज सबसे पहले डॉक्टर गिरीश, प्यार के सही मायने की बात करते हैं। सही मायने में अगर हम प्यार को जाने, खासकर यूथ के लिए, युवा जब होता है 17-18 साल में प्यार अमूमन हो जाता है और वो प्यार ही हम कई बार देखते हैं कि वो लंबा चलता है, कई बार बीच में ही रुक जाता है क्योंकि प्यार के नए रूप दिखने लगते हैं। क्या है ये ढाई आखर प्रेम का?
2: तो जैसे आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि भी सही मायने क्या है, अगर सही मायने को समझना है तो गलत मायने की चर्चा कर
1: देते। बिल्कुल।
2: यानी गलत क्या है वो समझ में आ जाएगा तो सही ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होगा। तो आज वर्तमान स्थिति क्या है कि जो वास्तव में गलत है, सबसे पहले तो आज जो प्यार है ना वो डोमिनेटिंग प्यार है। नहीं चाहते भी जिससे प्यार हो गया वो मेरा ही होना चाहिए,
1: पोजेस कर लूंगा।
2: हाँ, वो किसी से बात भी नहीं करे, अगर वो किसी से बात भी कर रहा है तो कहते हैं कि भी कुछ गड़बड़ है इसमें। तो एक डोमिनेटिंग स्टेज है कि विच इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। व्यक्ति किसी से बात तो करेगा ही, शेयर भी करेगा अपने व्यूज। जो दूसरी स्टेज है कि जिसके अंदर शर्त का प्यार है,
1: कंडीशनल।
2: हाँ, कि भाई तुम्हारे अच्छे रैंक आएगी तो हम आपको प्यार करेंगे ना, तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो हम आपसे प्यार करेंगे। तो जो भी शर्त है वो शर्त वाला प्यार है कि जो भी गलत है वास्तव में। तीसरा है कि हमने स्वार्थ से प्यार किया है, नहीं कि भी बहुत पैसे वाला लड़का है तो चलो उससे फ्रेंडशिप करो, तो वह शर्त है। जब भी शर्त वाला प्यार है तो भी यह सदा के लिए नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से यह सब गलत चीजें, शिवानी बहन भी शायद कुछ ऐड कर सकते हैं, गलत प्यार क्या है।
1: बिल्कुल नहीं, ये गलत प्यार के तीन आस्पेक्ट तो हमें समझ में आए कि भाई शर्त के साथ अगर आप प्यार करते हैं, कंडीशंस है कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे आप तो मैं आपसे प्यार करती हूँ। दूसरा आपने कहा कि लोभ के साथ, कि अगर वो इतना स्वार्थी, स्वार्थ के साथ जुटे। और तीसरा जो है
2: डोमिनेटिंग,
1: कि हाँ मैं, आप मेरे हैं तो आप किसी और के नहीं हो सकते। ये जो तीन आस्पेक्ट है ये तो नेगेटिव है। आपसे सवाल ये है कि हर बार हम आपसे इनर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, प्यार के सही मायने आज हम तलाश रहे हैं। प्यार अगर हम देखें, हमारी कविताओं में भी देखते हैं, पुराना देखते हैं, तो ये है कि प्यार मतलब आप समर्पण है। तो क्या मैं किसी व्यक्ति को इतना समर्पित हो सकती हूँ कि अपना सब कुछ खो दूंगी, अपना खो दूंगा या खो दूंगी? क्या मैं अपनी इतना अधिकार दे दूंगी? क्या हम ये बात करते जो आ रहे हैं पूरी एक इंटरनल जर्नी की, एक पूरे उसको खुद को पहचानने की, कि मैंने अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं खोऊंगा मैं या खोऊंगी किसी भी सिचुएशन में? प्यार एक ऐसा मोड़ है जिंदगी का जिसमें कुछ नहीं नजर आ रहा होता।
3: प्यार हम किसी और से कर नहीं सकते हैं जब तक हम पहले अपने आप से प्यार नहीं करते। प्यार मतलब क्या? एक्सेप्टेंस, यू नो, इट्स एनर्जी। प्यार इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी विच कैन बी देयर इन एनी रिलेशनशिप। लेकिन सबसे पहले अपने साथ, क्या हम अपने आप को प्यार करते हैं? इतना दर्द अपने आप को देते हैं हर रोज, इतने टॉर्चर अपने आप को करते हैं, सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देते हैं, सबसे ज्यादा चीटिंग अपने आप से करते हैं। तो जो हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, अपने अंदर इंटेग्रिटी नहीं ला सकते, तो और किसी से प्यार करना ये पॉसिबल नहीं है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो चाहते हैं दूसरे से वो चीज हमें मिल जाए, यू नो. और फिर उसके लिए हमें दूसरे से वांटिंग है हर टाइम. हम प्यार दे नहीं रहे हैं, हम प्यार मांग रहे हैं. अब दूसरे की मनोस्थिति क्या है,
1: वो भी उसी सिचुएशन.
3: हाँ, तो दो लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज जो उनके पास नहीं है. सो how will it be successful? You know, so we have to first love ourselves. अपने आप को जानते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम वो एनर्जी दूसरों को देना शुरू करते हैं, दूसरों से मांगना शुरू नहीं करते हैं. आई कैन नॉट गेट इट फ्रॉम एनीबडी. द ओनली सोर्स इज माई इनर सेल्फ एंड गॉड.
1: शुड आई चेंज माई सेल्फ? दिस इज अ मेजर क्वेश्चन, यू नो, लाइक खासकर आज युवा पीढ़ी के सामने ये सवाल है बहुत, जो आपने भी बात की कि पोजेस करना चाहते हैं हम, डोमिनेट करना चाहते हैं. लेकिन बात ये आती है कि हम जिसे प्यार करते हैं, हम एक वन उसको चेंज करना चाहते हैं, दो हम चेंज हो जाना चाहते हैं, हम उसकी तरह बन जाना चाहते हैं जो वो हमसे चाहता है उतनी देर में, जितनी देर हम उसके साथ हैं या जितनी देर वो हमारे पूरे दिमाग पर हावी है, हम अपना सब कुछ बदल देना चाहते हैं. शुड वी डू दैट और नॉट?
3: That's because again in both the cases, या तो वो जैसा मैं चाहूँ दूसरा व्यक्ति वैसा बन जाए, या दूसरा जैसा चाहता है मैं वैसा बन जाऊं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं किया है. यू सी, तो या तो आई एम फाइंडिंग द नीड कि दूसरे को चेंज कर दूं या दूसरे को इन्फ्लुएंस करूं. तो वेयर इज द लव? लव मीन्स के एक्सेप्टेंस. I accept you the way you are. If I say I like you but you do this, it's over.
1: That's what he said. That's not what love is.
3: That's
1: तो क्या है प्यार?
2: वास्तव में देखे तो प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए. प्यार में कोई भी स्वार्थ ना हो, प्यार में एक्सपेक्टेशन भी ना हो. अगर ये स्टेज बन जाए तो सदा के लिए टिक सकता है. और दूसरी एक बात, जो प्यार हो वह व्यक्ति की जो इनर क्वालिटीज है, वैल्यूज है, वैल्यूज के साथ आज व्यक्ति ना शरीर के साथ अटैच होता है, शारीरिक आकर्षण से प्यार होता है, वो वैल्यूज के साथ अटैच नहीं होता है. अगर वो वैल्यूज के साथ अटैच हो तो सदा काल के लिए वटी.
1: लेकिन अगर हम वो वैल्यूज के साथ अटैच हो जाते हैं, बहुत से हमारे यंगस्टर्स के सामने ये सवाल, जब 18-19 साल में हम होते हैं तो हम बड़े फुल ऑफ आदर, हमारे पास बहुत सारे आदर्श होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज की हम बात कर रहे होते हैं, हम दुनिया बदल, शरीर के भी परे जाके वो वैल्यूज और वो सारी बातें जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. एंड वी जस्ट यू नो लाइक की हाँ, बहुत मोहब्बत है, प्यार है. आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट, समाज के साथ इंटरेक्शन, और जिंदगी की जब मुश्किलें सामने आती हैं उसमें वो वैल्यूज टूटती हैं, तब क्या मेरा प्यार खो जाना चाहिए? क्या मेरा प्यार भी बदल जाना चाहिए? अगर मेरा पार्टनर बदल गया है तो क्या मुझे बदल जाना चाहिए?
2: नहीं, वो खोना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज एडजस्टमेंट. शुरू में अगर वैल्यूज से आप अटैच हुए हैं ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी.
1: लेकिन अगर उनकी वो वैल्यूज गिर गई,
2: हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जैसे शरीर से अटैच हुए ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब, क्योंकि वो आकर्षण थोड़े ही समय रहेगा, वैल्यूज वाला लंबा, फिर भी उसमें ऊपर नीचे हो सकता है. तब अगर आप वैल्यूज से अटैच हुए तो यू हैव अ पावर टू एडजस्ट एज वेल, और अल्टीमेटली लाइफ इज फुल ऑफ एडजस्टमेंट.
1: सिस्टर शिवानी, इस सफर में चलते हुए वैल्यूज से अगर हम अटैच हुए थे और अगेन एक्सेप्टेंस के साथ, दोनों की एक्सेप्टेंस है, आगे चल के वो वैल्यूज गिरी आपके पार्टनर की या जिससे आप प्यार कर रहे हैं, हाउ डू आई रिएक्ट? अगेन आई गो इनटू अ डिप्रेशन?
3: नो, आई डोंट. आई हेल्प द पर्सन टू एम्पावर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यू नो. इट्स लाइक वो, ये तो फिर कंडीशनल हो गया ना कि आई लाइक यू, अ पेरेंट, अ टीचर, अ फ्रेंड, एनीबडी, इट कैन बी इन एनी रिलेशनशिप, कि आई लाइक यू टिल यू आर लाइक दिस, यू नो, द डे यू चेंज टू समथिंग एल्स, Now I don't like you. तो इसका मतलब हमने उस व्यक्ति से नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर इमेज जो हमने उस व्यक्ति की बनाई हुई थी उससे प्यार किया. तो वो इमेज तो बदलती जाएगी. एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ चेंज. तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं है. हमने उनके बारे में अपने लाइकिंग के अनुसार कोई इमेज बनाई है और उस इमेज से अटैच्ड हो गए हैं. तो जैसे ही वो इमेज चेंज होने लगती है, यू नो, जैसे ही वो व्यक्ति चेंज होने लगता है, एंड इट क्लैशेस विद द इमेज दैट आई हैव, that there is a disturbance of energy.
1: So that image has to be constantly changed?
3: There is no image. I first of all understand what the person is. And I accept the person. Wo jo hai, जैसा है। परमात्मा का प्यार इसीलिए अनकंडीशनल होता है। परमात्मा कहता है तुम जो हो जैसे हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो,
1: मुझे बहुत
3: मेरे बहुत प्यारे हो। और फिर वही प्यार हमें वैसे भी इम्पावर कर देता है, वही प्यार हमें परिवर्तन कर देता है उसकी तरह बनने की कोशिश करने का, क्योंकि उसने पहले हमें एक्सेप्ट किया। अगर वो हमें डांट दे और कहे नहीं अभी अच्छे नहीं हो, ऐसे बन जाओगे तो अच्छे मुझे लगोगे, वी विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गॉड्स लव। इट्स दैट एक्सेप्टेंस विच मोटिवेट्स टू चेंज ऑल्सो, दैट एक्सेप्टेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: ब्यूटिफुल डॉक्टर पटेल, इस पड़ाव पर एक मेल मैं लेना चाहूंगी, और ये मेल हमें लिखा है विकास ने, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और ये लिख रहे हैं कि मैं एक लड़की से फर्स्ट ईयर से ही प्यार करता था और मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब मैं इन दिनों बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि मैंने उसे कहा कि मुझे लगता था कि मैंने सारी जिंदगी अपनी उसके आसपास अपनी बुन ली थी एक, और मुझे लगता था कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पूरी तरह से मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मुझसे ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, मेरी जिंदगी का कोई एम नजर नहीं आता है। अब ये क्या है सर, ये डॉक्टर पटेल टेम्पररी फेज है या इट कैन लीड टू अ मेजर डिप्रेशन का जो रूट कॉज हो सकता है?
2: इट कैन, इट इज मोस्टली अ टेम्पररी फेज, बट इट कैन लीड टू मेजर डिप्रेशन एज वेल। अब इसमें करना क्या चाहिए? वास्तव में सारी बुद्धि की बात है। आजकल का जो यूथ है दे आर ओवर इमोशनल, इनफैक्ट और वो हेड को यूज नहीं करते, हार्ट को यूज करते।
1: एक्चुअली कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पूरी बात ये करते आ रहे हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता, वक्त नहीं मिल रहा होता, अकेलापन इतना ज्यादा है, तो शायद जहां उन्होंने सपना देखा वहीं मान लिया। तो क्या करें विकास?
2: अब यहाँ पर उन्हें बुद्धि का उपयोग करना है। अगर बुद्धि का सही उपयोग करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही वो इट वॉज वन साइडेड थिंग एज अ मैटर ऑफ टाइम, और फिर जैसे उन्होंने वो बात कही और सामने से रिजेक्शन आया, उसका अर्थ यह है कि भी सामने वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी 5% भी वो इमोशंस नहीं है। और ये तो अच्छा हुआ, अगर ये बात और आगे बढ़ती तो फिर तो नेचुरली वो मिसमैच होना था।
1: एक इनका आगे ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कभी वो मुझसे प्यार करेगी?
2: नहीं, नहीं करो।
1: हाँ, ये जो उम्मीद एक छोटी सी लगाए रखते है ना। हाँ।
2: नहीं, जब फर्स्ट सेट ये हुआ रिजेक्शन हुआ है तो फिर एफर्ट नहीं करनी चाहिए। उल्टा यू ट्राई टू यूज योर टैलेंट्स, है ना, और कोई क्षेत्र में, जैसे बीटेक कर रहे हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करें, अच्छे से करें, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाए, ही कैन गेट बेटर पर्सन आल्सो इन हिज लाइफ। तो इसलिए जब भी ऐसी वन साइडेड बात है तो वहां एफर्ट करने से फायदा नहीं, उल्टा ही विल लूज हिज एनर्जी।
1: लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इनकी सिचुएशन जिसमें है, जिस तरह के हालात में होंगे, क्या पता हॉस्टल में रह रहे हों, जैसे अभी ये नहीं बताया इन्होंने, तो ऐसे में अकेलापन, और जब डिप्रेशन की बात आ गई, पीयर प्रेशर भी होता है कई बार। सो व्हाट इज इट यू वुड लाइक टू टेल हिम, दैट हाउ टू टॉक टू, सेल्फ काउंसलिंग की हम हर बार बात करते आ रहे हैं।
3: यहाँ जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो रिजेक्शन की हुई है, तो वो उससे हमारी अपनी सेल्फ वर्थ कम होने लगती है, हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं कि ऐसा क्या मेरे अंदर इनको नहीं, मतलब क्या है मेरे अंदर प्रॉब्लम जो द अदर पर्सन डिड नॉट एक्सेप्ट मी। यू नो, इवन दिस इज टू बी कंसिडर्ड कि आपने बिना जाने, बिना पहचाने, बिना कुछ भी पता हुए आपने डिसाइड कर लिया कि सामने वाले व्यक्ति के साथ आप अपनी पूरी जीवन बिताना चाहते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि आप जानते ही नहीं है दूसरे व्यक्ति को, तो आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया? यू नो, सो द वर्ड लव आई डू नॉट थिंक वुड बी द राइट वर्ड टू फिट इन हियर। तो आपने डिसाइड कर लिया, अब आपके डिसीशन से तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी सेम चीज को एक्सेप्ट करेगा। टू पीपल टुगेदर शुड वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर, यू नो, देन द जर्नी इज मीनिंगफुल, अदरवाइज इफ इट कैन नॉट बी वन पर्सन। तो हमने किसी से जाके ऑफर किया, लेट्स से कि हम किसी से जाकर कहते हैं हम यहां से शिमला जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलेंगे? इफ द पर्सन एंजॉयज माई कंपनी, सेज चलो हम आपके साथ चलेंगे, बट इफ आई डोंट एंजॉय समबडीज कंपनी, आई से नो, यू नो, आई एम थैंक यू बट आई डोंट वॉन्ट टू गो। अब उसमें रिजेक्शन की कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट टू पीपल डोंट वेरी एंजॉय टूगेदर,
1: दैट्स परफेक्टली फाइन, एक्चुअली
3: दैट्स, इट्स जस्ट नेचुरल। सो इफ द अदर पर्सन हैज, यू नो, इट्स नॉट अ रिजेक्शन, इट्स जस्ट दैट द अदर पर्सन इज नॉट कम्फर्टेबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है या कुछ हो सकता है, इट्स जस्ट दैट आप उस व्यक्ति के साथ एक राइट कंपनी नहीं शेयर करते।
1: और अभी तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड 18 इयर्स, अभी तो अच्छा है कि अभी नहीं मिला, हो सकता है 25 साल में कोई और मिलता तब प्रॉब्लम ज्यादा आती है, या 30 साल में कोई और मिल जाता जो ज्यादा कंपैटिबल होता,
2: और डेफिनेटली हो सकता है।
1: हाँ, तो इतनी
2: जल्दी तर्क से भी समझाना चाहिए। वास्तविक चीज तीन है शक्तियां, ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छी बात बताते जो मुझे भी टच कर, जब मैंने पहली बार 18 साल का था ब्रह्मा कुमारी की बातें सुने तो सबसे अच्छा यही लगा कि भी अपने आप को मैनेज करने के लिए हमें तीन सूक्ष्म शक्तियों को मैनेज करना है, जो एक है मन, दूसरी है बुद्धि और तीसरे है हमारे संस्कार। और तीनों का मैनेजमेंट डिफरेंट है। जब भी मन को प्यार से समझाना, कहा कि भी मन वह जंगली घोड़े जैसा है,
1: डांटना नहीं है।
2: हाँ, जंगली घोड़े को आप फोर्स से कंट्रोल नहीं कर सकते, प्यार से करना पड़ेगा। हाँ, उसको बहुत पानी पिलाओ, बहुत घास खिलाओ, हाथ फेरो, तो एकदम आप जैसे कहेंगे वैसे जंगली घोड़ा करने लगेगा। मन का भी ऐसा ही है ना, मन को अभी इस केस में भी प्यार से समझाए कि देख शांत हो जा, अभी पढ़ाई में ध्यान दे, जितना तू पढ़ाई में आगे बढ़ेगा और अच्छा पार्टनर तुझे मिल सकता है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ऐसे बहुत सारी बातें मन को प्यार से समझाए। बुद्धि व तर्क की भाषा समझती है, बुद्धि जज जैसी है, आपने खून भी किया, अच्छा एडवोकेट मिल जाए, जज को कन्विंस कर दे कि निर्दोष है तो आप छूट जाए,
1: सुंदर बात जी।
2: तो ऐसे बुद्धि भी तर्क से समझती है, जज जैसी है। तो यहाँ भी अगर तर्क से अच्छी तरह से बुद्धि को समझा दे तो ये बात खत्म हो जाएगी। और संस्कार न तो प्यार से समझते न तर्क से समझते, संस्कार वो फोर्स की भाषा समझते। संस्कार के ऊपर फोर्स करना पड़ता है कोई भी बात का, यहाँ पर भी फोर्स करे। और उदाहरण, सवेरे जल्दी उठना है, आप नहीं उठ पाते तो फोर्स करो कि 5 बजे उठना ही है, कुछ
1: फोर्सफुली काटना पड़ेगा,
2: एक बार काटना। तीनों चीजें करनी पड़ेगी, प्यार से भी समझाओ, तर्क से समझाओ, और अल्टीमेटली फोर्स से भी अपने आप को उससे जुदा कर लो। थोड़े समय में बिल्कुल भूल जाएंगे इस बात को,
1: क्योंकि भूलना बहुत जरूरी है आगे, क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इतना लंबा इतनी लंबी जर्नी है। बहुत उम्मीद करते हैं कि विकास अगर आप सुन रहे हो तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, लेकिन बाकी और जो दर्शक जो इससे गुजरते होंगे इस उम्र में, उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। अब बात हम करते हैं, क्योंकि हमने रिश्तों की बात करनी थी इस बार, आज इस कड़ी में, और प्यार की बात करनी थी, पेरेंट्स और जो बच्चों का प्यार है, वहां जब रिजेक्शन होती है, क्योंकि प्यार वहां पे भी कंडीशनल हो जाता है, अगर तुम इतना परसेंट लेके आओगे तो मैं तुम मुझसे प्यार करते हो या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम फर्स्ट आओगे क्लास में तो तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो, मेरे राजा बेटा हो, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं और उस उम्मीद पर नहीं खरे उतर पाते बच्चे, तो वो जो रिजेक्शन है वो एक डिप्रेशन में लेके जाती है। हाउ टू हैंडल दैट रिजेक्शन?
2: सबसे पहले तो पेरेंट्स की गलती है,
1: वो तो है,
2: अगर वो कंडीशन डाल रहे हैं, और वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव तो बच्चों पर पड़ेगा ही। हो सकता है कि भी कुछ बच्चे उससे बाहर भी आ जाए और कुछ डिप्रेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले तो हर माता पिता को यह जरूर ध्यान देना है कि उनके अगर दो बच्चे हैं तो उसमें भेदभाव नहीं करो, दोनों को इक्वल प्यार दो। माइकल जैक्सन ने बहुत अच्छी बात कही है, उसने कहा कि मेरी माँ तो बहुत गरीब थी, नहीं, हम गरीबी में बड़े हुए, कि उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने सबको स्पेशल रखा, हम सभी जो भाई बहन थे सभी को ये लगा कि मैं स्पेशल हूँ, किसी को भी उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया, इसलिए हम सभी भाई बहन जीवन में आगे बढ़ पाए। तो यह सचमुच करना चाहिए, भले आप पैसे नहीं दे सको कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को इक्वल प्यार जरूर दो। कई बार हो सकता है भेदभाव भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तब व्यक्तिगत बात करके उनको समझाया जाए कि किसी को हमने थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, कोई बच्चे को तुम्हें कहीं कम दिया, बट यू आर ऑल्सो स्पेशल। ये बताना चाहता था मैं कि भी उस बच्चे को भी ये समझाए कि भी समझो एजुकेशन में भले आप थोड़े कमजोर हो, तुम्हारा बड़ा भाई तेज है, हमने कहीं उसकी प्रशंसा की, बट यू आर स्पेशल इन सर्टन अदर एरियाज, और उस एरियाज में आप आगे बढ़ो, हम माने उसके लिए आपका हमारा पूरा सपोर्ट है।
1: लेकिन कई बार शिवानी बहन अनजाने ही हो जाता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तो अगर उनसे बात करेंगे तो वो तो ये कहेंगे कि हम तो कभी उम्मीद नहीं करते, हम तो कभी बच्चे पे प्रेशर नहीं डालते। आप किसी पेरेंट से बात करके देख लीजिए, वो हर पेरेंट यही सोचता भी है, कहता ही नहीं है, सोचता भी है कि हमने तो अपने बच्चे पे कुछ कोई उम्मीद नहीं लगाई, हमने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया, उसे पूरी आजादी है और वो जो करना चाहता है। अनजाने में ही जब ये हो जाए, बच्चा कैसे हैंडल करे इस रिजेक्शन को या इस एक्सपेक्टेशन को?
3: एक्चुअली आई फील के पेरेंट्स लव चिल्ड्रन अनकंडीशनली, दिस इज व्हाट आई फील, कि माता पिता ही एक संबंध है जो बच्चों को बिना कोई एक्सपेक्टेशन के प्यार दे सकते हैं। अगर इस संबंध में भी वो नहीं है तो फिर और किसी संबंध में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्यार तो आप करते हैं, प्यार के साथ साथ आप उनके ही भले के लिए, अपने लिए नहीं, वो अगर डॉक्टर बन जाए उसमें आपको उनके लिए खुशी है कि वो पदवी तक पहुंच जाए, तो आप उसको पुश करते रहते हैं कि आप ये बन जाओ, आप मेहनत करो, आप ये अचीव करो। कई बार जब वो नहीं अचीव कर पाता, आप थोड़ा सा विड्रॉ हो जाते हैं, आपका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका थोड़ा सा बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। दैट इज ऑल्सो टू मोटिवेट हिम एक्चुअली, और टू शो दैट आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट यू आर डूइंग, यू नो यू शुड डू दिस, बट एक्चुअली The methodology is probably not right. लेकिन वो भी भाव ये नहीं है कि मेरे को नहीं लगता पेरेंट्स एक बच्चे को ज्यादा प्यार करेंगे अगर वो डॉक्टर बन जाए, नहीं, इट्स जस्ट अ वे ऑफ पुशिंग, बट मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ द चाइल्ड परसीव्स इट। बच्चा ये फील करने लगता है कि आज इन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, आज ये मुझे, मैं खुश नहीं कर पाया इनको,
1: वल्नरेबिलिटी।
3: हाँ, तो ये एक्चुअली पेरेंट के दृष्टिकोण से नहीं, आई फील बच्चे के दृष्टिकोण से आता है कि उसे ऐसे लगने लगता है कि ये मुझसे अब प्यार नहीं करते क्योंकि मैं वो नहीं बन पाया जो ये चाहते थे। देन ही फील्स दैट रिजेक्शन। इफ ही जस्ट रिमूव्स दैट इमेज, सी ज्यादा हमारे अपने बिलीफ सिस्टम, अगर वो अपने बिलीफ सिस्टम को हटाए, वो देखेगा पेरेंट इज एज द पेरेंट वॉज, पेरेंट विल नॉट चेंज टूवर्ड्स द चाइल्ड। पेरेंट बच्चे की ही अच्छाई के लिए शायद उनको पुश कर रहे हैं, विधि समवेयर इज डिबेटेबल कि क्या यू नो विड्रॉ करके या डांट के आप मोटिवेट कर सकते हैं या और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन के साथ आप मोटिवेट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और आज के वक्त में जैसा हम कह रहे हैं,
2: मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, मैं लोगों के साथ, बच्चों से, पेरेंट्स से भी डील करता हूँ, कई पेरेंट्स आते हैं, पहले काफी ऐसे होंगे आप जो स्पिरिचुअल अप्रोच ले रहे हो, अच्छा ही है, परंतु आज देखा है पेरेंट्स ने अपनी एम्बिशन बच्चों पर डालना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना है, जो नहीं बना तो आई माइट फील डिप्रेस्ड और फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन उस पर भी होगा।
3: या बट विल द लव फॉर द चाइल्ड रिड्यूस?
2: लव में नॉट, दैट इज द इशू।

0: हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार पेरेंट्स डिप्रेशन में चले
1: हाँ
0: जाएंगे कि बच्चा वो नहीं कर पाया। अभी इस केस में जैसे आपने कहा पेरेंट डॉक्टर है तो वो चाहता है बच्चा भी डॉक्टर है। कई केसेस ऐसे हैं पेरेंट अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाए तो उनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन क्या उनका स्नेह और प्यार उस चीज पर आधारित है?
1: नहीं, प्यार शायद कम नहीं होगा, लेकिन वो व्यवहार बदली है
0: हाँ
1: क्या?
0: वही बात हो रही
1: तो
0: थी,
1: लेकिन इसका
0: व्यवहार
1: मतलब
0: बदले
1: बच्चा तो
0: कि
1: उसे
0: आज के
1: परसीव करता है ना।
0: आज के इस दौर में जब हम कह रहे हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आज के इस वक्त में ये बात तो हम मानेंगे कि विजडम हो या ना
1: ना
0: हो,
1: हो
0: वाइज है या नहीं, इंटेलिजेंस लेवल, अवेयरनेस लेवल्स
1: डेफिनेटली
0: टू
1: सर
0: बच्चों में बहुत
1: बहुत
0: ज्यादा
1: है।
0: है। तो अगर वो बच्चे जो देख रहे हैं प्रोग्राम, माँ बाप जो देख रहे हैं वो तो समझेंगे, और माँ बाप अपनी तरफ से आज के बाद इतनी बात की जाती है माँ बाप के लिए कि माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए, माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये परसीव करना है, ये डिफरेंट तरह से
1: बिल्कुल
0: अगर परसीव कर लें तो शायद इतनी मुश्किलें ना या
1: आए।
0: इट्स आवर वे ऑफ लुकिंग एट
1: इट्स
0: इट।
1: इधर 50% है बच्चों को भी। और शिवानी बहन ने तो राइट कहा, क्योंकि भी आई एम लाइक नो ऑब्जेक्ट, मैं सफर कर रहा हूं तो मुझे चेंज करना है। दूसरे चेंज करे या ना करे, तो ऐसे अगर यूथ इससे अफेक्टेड है तो अगर यूथ को हम ये ठीक से मैसेज दे सके कि अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज
0: और
1: करे।
0: हम जैसे बात करते हैं कि खुद ही हमारा एक हर पॉजिटिव थॉट रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा,
1: हाँ
0: अगर हमें ये लगे ना कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, हम पॉजिटिव रहे, बच्चा भी
1: जरा
0: पॉजिटिव रहेगा, तो
1: रहेगा।
0: पेरेंट्स विल एक्चुअली मे बी यू नो नॉट फील दैट आई
1: बैड
0: थिंक
1: ऑल्सो।
0: व्हाट विद द पेरेंट्स इज ऑल्सो, क्योंकि पेरेंट्स भी तो किस दौर से वर्तमान समय गुजर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। जब आप खुद भरे हुए होंगे तब आप औरों को दे सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी तो शायद वो डिप्रेशन या टेंशन और एंग्जाइटी के दौर से गुजर रहे हैं, तो जहां उनकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती है तो वो उनके व्यवहार में तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाता है,
1: बिल्कुल।
0: और वो रिफ्लेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है
1: और
0: दूसरी
1: यहाँ
0: तरफ।
1: एक और साथ में मुद्दा खड़ा हो जाता है, वो है पीयर प्रेशर। पेरेंट्स के लिए भी पीयर प्रेशर है, प्रेशर है
0: लेकिन उससे बड़ा पीयर प्रेशर है बच्चों के
1: बच्चों के
0: पास।
1: पास।
0: एक मेल मेरे पास आया है मानविका का, और वो कह रही है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरी क्लासमेट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मतलब वो अगर फर्स्ट आती है तो मैं सेकंड आती हूँ, लेकिन मैं उस वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं फर्स्ट आऊँ, तो क्या ये कॉम्पिटिशन हो जाएगा? क्या वो मुझे मेरी दोस्ती नहीं रहेगी अगर मैं फर्स्ट आ गई? इस डर से मैं फर्स्ट भी नहीं आना चाहती। तो ये जो प्रेशर ऑफ रिजेक्शन है इस बच्चे का, अगर हम देखें, ये नहीं पता किस क्लास में है, लेकिन इस बच्चे का जो प्रेशर ऑफ रिजेक्शन है कि अपने पीयर प्रेशर, मेरी फ्रेंड है तो क्या अगर मैं उससे ज्यादा अचीव कर गई तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी?
1: नहीं करे तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज़ यू विल गेट अनदर फ्रेंड,
0: नो बट
1: बट हियर यू आर नो प्रोग्रेसिंग।
0: नो बट देन शुड शुड शी फियर कि वो फिर वो लूज
1: नो
0: आउट कर
1: शी
0: जाएगी उसके,
1: शुडन्ट, नो
0: देन शी
1: शी
0: डजेंट
1: शुड पुट
0: ट्रस्ट द
1: एफर्ट।
0: फ्रेंडशिप। हाँ, यू सी वेयर इज इट अ फ्रेंडशिप? अगर इफ आई से कि आप मेरी फ्रेंड हैं, देन योर सक्सेस शुड गिव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इफ यू आर गोइंग टू से इट गिव्स
1: लेकिन
0: हैप्पीनेस,
1: हो
0: बट
1: सकता
0: इट
1: है कि ये परसीव ये कर रही है, अगेन
0: हाँ
1: परसेप्शन ये आ
0: दूसरे के
1: गया।
0: दृष्टिकोण में शायद कुछ भी नहीं होगा, ये हमारी अपनी इनसिक्योरिटी है कि दूसरा मुझे छोड़ के ना चला जाए। हम वे संबंधों पर विश्वास नहीं करते हैं आज, हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने पे ट्रस्ट नहीं है, अपने को सारा दिन में इतनी बार धोखा देते हैं तो सारा दिन एक डर में रहते हैं कि दूसरा मुझे धोखा देने वाला है, और वो डर हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से लेकर जाता है। इफ आई ट्रस्ट कि दूसरा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे धोखा क्यों देगा, बट ये मैं ट्रस्ट आप पर तभी कर सकूंगी अगर मैं खुद अपने आप को बहुत ज्यादा धोखा नहीं दूं।
1: हाँ, खुद अपने ऊपर भी कंप्लीट ट्रस्ट होगी।
0: यस
1: अच्छा, और दूसरी एक और बात, ये आपने कहा कि आप पर मैं पूरी ट्रस्ट करूं, एक और उम्मीद होती है कि आप मुझ पर पूरी ट्रस्ट करें। ये जो विश्वास का एक गेम है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज के वक्त में हम इतने धोखों में जी रहे हैं कि विश्वास के कहीं पूरी परिभाषा ही बदल चुकी है। तो वो जो विश्वास का एक एस्पेक्ट है, खासकर यंगस्टर्स में, ये जो विश्वास टूट के, अगर हम दोस्ती की बात करते हैं, वो जो डिप्रेशन आता है वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो वो जो पूरी हैंडलिंग है कि विश्वास वो कायम रहे या वो मुझ पर विश्वास करे, वो कैसे किया जा सकता है? पहले तो हम अपने आप पर विश्वास करें और फिर लोगों पर भी विश्वास करें, है ना? बेसिकली पीपल आर रियली गुड, ये दोनों अगर स्टेट हुई तो सामने वाला व्यक्ति जरूर आप पर फेथ रखेगा, और अगर नहीं रख रहा है तो उसकी गलती है। लेकिन एक बात ये कही जाती है सिस्टर शिवानी और डॉक्टर साहब कि आज के इस वक्त में अपने आप को बचा के विश्वास करना चाहिए, आप आंख बंद करके विश्वास नहीं, एक आंख खोल के विश्वास करना चाहिए, ये भी कही जाती है, एडवाइस दिया जाता है. हाउ गुड इज दैट एंड किस तरह का फेथ होना चाहिए?
2: ये एडवाइस भी वो ही देंगे जो खुद उस डर में रहते हैं. जैसे यू हैव टू हैव द करेज टू ट्रस्ट. विश्वास करने के लिए आज के समय में एक्चुअली बहुत नेचुरल है विश्वास करना, लेकिन आज के समय में थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी दूसरे के ऊपर संपूर्ण विश्वास करने में. उसी से डर लगता है और डर भी इस बात का है कहीं आप मुझे धोखा ना दे दे, इसलिए मैं विश्वास नहीं करती. क्यों मैं पहले करूं फिर आप धोखा दे, फिर मैं दर्द से गुजरूं, इससे अच्छा मैं विश्वास नहीं करूं, सेफ चलूं. Why? Because I live with the belief you can hurt me. Okay? जहां से ये belief बाहर गया कि you cannot hurt me. So where is the harm if I trust you? No loss. दर्द अगर मुझे ये belief है ना कि आप मुझे दर्द दे सकते हैं तब मैं trust करने में डरती हूँ. क्योंकि एक बहुत लोग एक बहुत लंबी यात्रा से गुजर जाते हैं, trust करते हैं, दूसरा धोखा देता है, फिर सालों साल दर्द से गुजरते हैं. Experience teaches them किसी पर विश्वास नहीं करो, बहुत तकलीफ होने वाली.
1: कदम कदम फूंक कर रखना चाहिए, तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक
2: उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहते. लेकिन जब ये सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा कि दूसरा मुझे तकलीफ नहीं देता, अब विश्वास करना नहीं करना ये मेरी चॉइस है, दूसरा उसको कैसे रेसिप्रोकेट करे वो उसकी चॉइस है, लेकिन वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता. सो आई लाइक टू ट्रस्ट पीपल देन बिकॉज दैट लाइकिंग मेक्स मी फील गुड, इट मेक्स लाइफ वेरी सिंपल. नहीं तो सारा दिन एक डाउट में चलते जाते,
1: वो पूरी जर्नी फिर हमारी.
2: ट्रस्टिंग पीपल मेक्स लाइफ वेरी ब्यूटिफुल.
3: बोले प्रोटेक्ट करो जो आपने बात कही उसमें कि भी कहीं जैसे फाइनेंशियल बातें आज बहुत सारी होती है, लाखों का नुकसान होना इफ यू ट्रस्ट समबडी, तो तब प्रोटेक्ट करो नहीं, उसको प्यार से बताओ कि भी ये स्टेट है, ऐसा हो सकता है, एंड नो देन इफ यू हैव ट्रस्ट देयर इज नो हार्म.
1: तो डॉक्टर साहब आज पूरे रिश्तों को हमने जानने की कोशिश की, खासकर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हमने प्यार की बात की, हमने पेरेंट्स के साथ रिश्तों की बात की, वहां जब रिजेक्शन मिलता है या फिर जो पीयर प्रेशर है, पीयर ग्रुप का जब रिजेक्शन है, तो वो तीनों रिजेक्शन ही हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं. उनसे कॉम्बैट एक बार फिर जल्दी से रिकैप करते हैं कि हाउ टू रियली हैंडल दैट.
3: तो यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ, इफ देयर इज लिटिल टाइम, कि सच में परमात्मा के प्रति प्यार को छोड़ो. यह एक बहुत बड़ी बात है. और वो कैसे हो सकता है अगर परमात्मा के प्रति प्यार को जोड़ना है? आज लोग भी कहीं मुझे भी प्रश्न पूछते हैं कि भी हम सब ध्यान करना चाहते हैं, कोई ना कोई रीति से कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन मन भटकता है, नहीं और चीजें याद आती है, व्यक्ति याद आते हैं, वैभव वस्तुएं याद आती है. तो वहां यह बात है, यह सोचो कि भी लोग भी आपको रिस्पेक्ट देते, प्यार देते हैं, और परमात्मा प्यार देते, उसमें फर्क क्या है? जहां से मैंने शुरुआत ही की थी कि जो लोगों का प्यार है उसमें स्वार्थ है, उसमें कंडीशंस है, उसमें डोमिनेशन है, कि परमात्मा जो प्यार देते उसमें कोई स्वार्थ नहीं, भगवान ही हमें निस्वार्थ प्यार देते हैं. नहीं आज हर व्यक्ति, इवन चाइल्ड साइकोलॉजी में भी माना गया है कि हर बच्चे की आशा होती है कि माता पिता मैं जो हूं जैसा हूं मुझे प्यार करे, कोई मेरी स्पेशलिटी के लिए प्यार ना करे. वो ये सिर्फ परमात्मा के लिए पॉसिबल है. परमात्मा ही आपको आप जो हो जैसे हो अनकंडीशनल प्यार दे सकते. तो ये सोचो तो ऑटोमेटिकली मन भगवान की ओर जाएगा. और तीसरी बात भी कि डोमिनेशन तो भगवान का है ही नहीं. और एक बात, कोई ये भी कहे एक इमेजिनरी एग्जांपल, इट्स नॉट पॉसिबल, फिर भी इमेजिनरी एग्जांपल, कि कोई कहे कि भी कोई एक व्यक्ति है जीवन में जो मुझे बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार देता है, कोई उसकी शर्त नहीं है, तो क्यों नहीं मैं उससे प्यार करूं? भले आप करिए, परंतु ये सोचिए कि रिश्ते को निभाना है. वास्तव में परमात्मा ही एक ऐसे है कि जिससे कभी आपको जुदा नहीं होना है. उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और कहीं वो आपसे दूर चला जाएगा तो आपको उससे दूर जाना पड़ेगा, तो और डिप्रेशन आएगा. परंतु आत्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है, इसलिए अगर परमात्मा से प्यार जुटाएंगे तो सदा के लिए टिक सकते.
1: वही अल्टीमेटली बात वही आती है कि समर्पण की, जो हमने शुरू में बात की कि गिवन इट हैज टू बी टू दैट सुप्रीम सोल, यू नो, जो 100% गिवन की बात है, आज मैं समर्पित होना भी चाहती हूँ, तो वो सुप्रीम सोल को ही समर्पण जो है वो सफल है. क्योंकि वही मुझे अनकंडीशनल दे रहा है. अदरवाइज आत्मा से आत्मा का मिलन कंडीशनल रहेगा. आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वही एक है जो एक शाश्वत सच है.
3: जिम्मेवारी निभानी है इसमें भी. ये कई बार ये बातें सुनते हैं लोग, समझते हैं हम डिटैचमेंट हो गए, वैराग आ गया. नहीं, वैराग नहीं लाओ, जिम्मेवारियों को जरूर निभाओ, वो जरूरी है. ये समझो कि मेरे बच्चे हैं, माता पिता है, जो भी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा हूँ, परंतु बस एक ट्रस्टी के रूप में कर रहा हूँ.
1: एक प्यार का रिश्ता है
3: वो भी ठीक है, लेकिन मैं ट्रस्टी हूँ और कर रहा हूँ. ट्रस्टी तो करोड़ों का कारोबार संभालता है, लेकिन वो सोचता है ये मेरा नहीं है. ब्रह्मा कुमारी इसमें ये बात बहुत अच्छी है कि कुछ भी करो ना ट्रस्टी के रूप में करो तो उससे बिल्कुल न्यारे रहे.
2: और एक और चीज होती है, जब परमात्मा से प्यार मिलता है तो फिर दूसरों को देना शुरू करते हैं, दूसरों से मांगना नहीं
1: रहता.
2: बिकॉज समबडी इज फिलिंग यू, जो सोर्स है वो आपको भरता जा रहा है. तो आप भरे हुए हैं, आपको देना भी नहीं है, लेकिन आप भरे हुए हैं तो वो नेचुरली आपसे फ्लो होता जाएगा. देन योर रिलेशनशिप्स बिकम यू नो वेरी लवफुल बिकॉज यू आर एक्सचेंजिंग यू नो द एनर्जी दैट यू हैव गॉट. आप जहां जा रहे हैं वो आपसे औरों तक ऑटोमेटिकली पहुंचती जा रही है. मांगने की चीज खत्म हो जाती है क्योंकि दूसरे के पास है नहीं देने के लिए. तो why ask somebody for something they don't have?
1: And when we know that there is somebody who has,
2: absolutely.
1: Why not take it from there? बहुत अच्छा लगा इस प्यारे से और खूबसूरत से मुद्दे पे आज हमने इतनी अच्छी बात की. सिस्टर शिवानी और डॉक्टर पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. ढाई आकर प्रेम के हमने शुरुआत इसी से की थी. आज प्रेम के उस स्वरूप को जाना जो शाश्वत है, जो सच है, और वो यही कि परमात्मा से किया गया प्रेम सचमुच अनकंडीशनल है और कहीं ना कहीं हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है. डिप्रेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स लेकर फिर आपसे मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में. लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर आप हमारे से कोई बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है. आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, करेंगे फिर मुलाकात. नमस्कार.

दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: पंडित परमानंद अमेरिका की गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। उनमें ये विशेषता थी कि वे अपनी वाणी के जादू और व्यक्तित्व के प्रभाव से फौजियों को अपनी ओर मिला लेते थे और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए भड़का देते थे। उन्होंने जापान में भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित किया था। सिंगापुर में भी विद्रोह की चिंगारी सुलगाकर वे आगे बढ़े तो पलटनों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। भयंकर रक्तपात के परिणाम स्वरूप सिंगापुर में भारतीय झंडा फहरा दिया गया। 21 दिन तक सिंगापुर ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त रहा। भारत पहुंचकर उन्हें पुलिस थानों और शस्त्रागारों पर हमला करके हथियार प्राप्त करने थे और अंग्रेजों के साथ भारत की आजादी की लड़ाई लड़नी थी। पंडित परमानंद गदर वीरों के साथ भारत जा पहुंचे। पंजाब पहुंचकर वे विप्लव यज्ञ की तैयारी में जुट गए। सारे पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों के क्रांति के ताने बाने तैयार कर लिए गए। क्रांतिकारियों के साथ मिले हुए एक गद्दार कृपाल सिंह ने विद्रोह के विस्फोट की सूचना ब्रिटिश हुकूमत को दे दी और सारी तैयारियों पर पानी फिर गया। पंडित परमानंद भी गिरफ्तार हुए और उन्हें आजीवन कारावास का दंड देकर अंडमान की कालकोठरियों में डाल दिया गया। 1937 का समय आ पहुंचा और देश के कुछ प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित होने की पहल प्रारंभ हो गई। आंदोलन की शर्तों के अनुसार अधिकांश क्रांतिकारी जेलों से मुक्त कर दिए गए। पंडित परमानंद भी मुक्त होने वालों में से एक थे। देश की आजादी के लिए जेल जाना और जेल के अंदर भी बगावत फैलाना उनके जीवन क्रम का हिस्सा बन गया था।

0: अरे राजू चाय लेके आओ जल्दी से।
1: टेबल ठीक में लगा ना भाई,
0: ट्रक को किनारे लगा दो।
2: कुछ भी कह लो यार शामू, ये गजबी काका के खाने की बात ही कुछ और है।
3: सही कह रहा है शामू, खाना भले ही सादा हो वो भी स्वादिष्ट लगता है।
2: हाँ ये बात तो ठीक है, पर यहाँ आकर मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलता है।
4: आओ आओ बेटा आओ, अरे बहुत दिनों बाद आए।
3: काका गजबैया काका, अब जिसने तुम्हारे हाथ का लजीज खाना खा लिया वो भला यहाँ आने से कैसे बच सकता है, क्यों रामू?
2: हाँ शामू।
4: अरे ये क्या कह रहे हो बेटा,
5: दो कट जाना गजबी दादा।
4: कमाल हमारे हाथ का नहीं है, कमाल तो तुम सब के प्यार और मोहब्बत का है जो यहाँ चले आते हो।
2: अरे वो सब तो ठीक है काका, अब शहर से इतनी दूर आकर थोड़ी शांति भी मिल जाती है, फिर तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें और स्वादिष्ट खाना। ये सब मिलकर ही तो हमें आने के लिए मजबूर करते हैं, क्यों चामू?
3: बिल्कुल सही कह रहा है रामू।
4: धन्यवाद धन्यवाद, तुम लोग सब बैठो, हम अभी तुम्हारे लिए खाना लगवा देते हैं।
6: बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम।
4: ए राजू, जरा बैंगन का भरता और दाल रोटी लगवा।
7: हाँ लगा रहा हूँ।
4: छोटू पानी दे उधर।
7: जी
2: बैठ तो जाए, पर तुम ये देशभक्ति के गाने क्यों क्यों लगा कर रखते हो? अरे कोई नए तड़क भड़क वाले गाने लगाओ काका।
4: अरे नए गाने तो है नहीं बेटा, वो तो हम रखते ही नहीं।
3: अरे काका ऐसा क्या है इन गानों में?
4: इन गानों में माटी की महक है बेटा।
2: ये क्या कह रहे हो काका, आज के जमाने में भला कौन समझता है तुम्हारी ये माटी वाटी की खुशबू।
4: वही तो हम समझाना चाहते हैं बेटा।
3: इन देशभक्ति गीतों से आप क्या समझाना चाहते हो काका?
4: हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमें जो आजादी मिली है ना, उसे पाने के लिए न जाने कितनों ने अपना खून बहाया है, कितनी माताओं ने अपने लाल खोए हैं, कितनों ने भाई और न जाने कितनों ने अपने माँ बाप खोए हैं बेटा। ये सब हम कैसे समझाएं? इसलिए हम इस तरह के गाने लगा देते हैं ताकि कोई तो समझे इस देश को।
2: बात तो आप पते की कर रहे हो काका,
5: पर है काका की बात।
2: दम तो है, पर किसके पास इतना समय है कि आपकी भावनाओं को समझे?
4: ना समझे, दिन भर में 100 ग्राहक आते हैं और उनमें से 2 ही समझ लेते हैं तो हमारा काम तो हो गया।
5: सही बात
3: काका,
5: अच्छे विचार है काका।
3: देशभक्ति का संदेश देने का आइडिया अच्छा लगा, क्या जानते हैं आप क्रांतिकारियों के बारे में?
4: अरे हम तो बहुत कुछ जानते हैं बेटा।
5: एकाध के बारे में बताओ ना काका हमें भी।
4: अरे पर जानना चाहता कौन है?
2: अरे ऐसी बात नहीं है काका, तुम बताओगे तो हम जान भी लेंगे। बताओ
5: काका।
4: अच्छा अब तुम सब कहते हो तो ठीक है,
3: आज तुम किसके बारे में बता रहे हो?
4: आज हम बता रहे हैं पंडित परमानंद जी के बारे में।
3: पंडित परमानंद जी?
4: हाँ, ये ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनकी वाणी में ऐसा जोश था कि ठंडे खून में भी उबाल आ जाए। वाणी की ताकत को बहुत कम लोग जानते हैं, जो जानते हैं उन्हें पता है कि एक ऐसी शक्ति है जिससे बीमार भी ठीक हो सकता है।
3: अच्छा,
4: पंडित परमानंद ऐसे दृढ़ क्रांतिकारी थे जिनकी वाणी लोगों में रक्त का संचार कर देती थी।
3: अच्छा,
4: उन्हें सुनकर हर कोई अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए तत्पर हो जाता था।
3: ऐसा क्या?
4: बासी खून में भी उबाल आ जाता था।
3: क्या बात करते हो दादा, क्या
4: अंग्रेज तो उनसे ऐसे खौफ खाते थे कि उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं देते थे।
3: बाप रे,
4: भारत के इतिहास में ऐसे क्रांतिकारी बहुत कम हुए, जिन्हें अंग्रेजों की यातनाएं किसी भी तरह से झुका नहीं पाई।
2: वाह वाह वाह वाह।
4: क्रांति किसे कहते हैं, ये पंडित परमानंद जी से ही सीखा जा सकता है। काला पानी की काल कोठरियों में एक दिन एक सनसनी फैल गई।
1: तुम ब्लडी इंडियन बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, साला रिवोल्यूशनरी बच्चा है, तुम सबको 30-30 बैंड का सजा सुनाता है।
8: सुना तुमने, अभी अंग्रेज हम पर बैंड बरसाएंगे।
9: अरे भाई, ये जो ना करें वो थोड़ा है, अत्याचार करना तो इनका परमो धर्म बन गया है,
10: और विरोध करना हमारा।
8: यार, ये बैंतों की मार बड़ी पीड़ादायी होती है,

0: शुरू हो गया बेत बरसाने का अभियान।
1: वो देखो हमारे साथी कितने धैर्य और संयम के साथ बेतों की मार सह रहे हैं। हाँ, पर हर बेत के साथ सिस्कारी भी तो निकल रही है। वो तो निकलेगी ही ना।
0: और वो तो देखो हमारा वो साथी कितना चिल्ला रहा है।
2: यही तो अंग्रेज चाहते हैं कि उनकी चीख जेल की दीवारों को भी हिला दे ताकि फिर कोई ऐसी हरकत ना करे। अब हमारे पंडित जी की बारी है।
1: हाँ,
2: देखते हैं उनके साथ कैसा सलूक होता है।
1: लो, पड़ गया पंडित जी पर पहला भेद।
2: पर देखो तो हमारे पंडित जी ने सी तक नहीं की।
0: यार देख, अब दूसरा पड़ने वाला है और पंडित जी पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं।
2: लो, वो जल्लाद थोड़ा पीछे हटा और फिर जोरदार मार।
1: अरे, पर उधर तो देखो जिलर जल्लाद के हाथ से बैत छीनकर किस तरह पंडित जी की पीठ उधेड़ रहा है।
0: हाँ, लगता है उस साले अंग्रेज जेलर पर भूत सवार हो गया है।
1: लो, अब जल्लाद ने फिर बैत उठा लिया है और अब तो हद हो गई, वो मारे ही जा रहा है।
2: हाँ, पर हमारे पंडित जी के मुंह से अभी तक सी की आवाज भी नहीं निकली।
0: अरे अरे, पर वो तो अब उन्हें बेतहाशा मारे जा रहा है, अब उसका क्या करें?
2: अरे तुम जल्लाद का गुस्सा मत देखो, हमारे पंडित जी का धैर्य देखो, वो कितनी शालीनता से बेतों की मार सह रहे हैं।
1: हाँ। ओ, उनकी पीठ की हालत तो देखो, पीठ की खाल जगह जगह से उधड़ गई है। ओह, मुझसे तो देखा नहीं जाता।
2: लो, अब उनके पैरों से तिपाई खोली जा रही है।
0: तुमने देखा नहीं जेलर वारी कितनी दूर जाकर खड़ा हो गया है।
2: धन्य है हमारे पंडित जी, इतनी मार सहकर भी शांत हैं।
1: शांत नहीं है, वे जेलर से कुछ कहने जा रहे हैं।
2: हाँ,
3: बस मार चुका। आप कभी अगर मेरे दांव में आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, ध्यान रखना।
4: तो ये था पंडित परमानंद जी की जांबाजी का एक छोटा सा नमूना।
5: सुना श्यामू?
4: इससे स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जी कितने साहसी और धैर्यवान थे।
6: ये बात तो है।
4: इतनी मार खाने के बाद भी वे उसी तरह दृढ़ रहे जितना पहले थे। हमारे पंडित जी ने इन सभी सजाओं को पूरे संयम के साथ झेल लिया।
5: क्या बात है।
4: इसके बाद जहां एक ओर क्रांतिकारियों में पंडित जी लोकप्रिय हो गए, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज उनसे डरने लगे। उनकी बहादुरी कहानियों का रूप धारण करने लगी।
7: हमारे पंडित जी भी गजब के इंसान हैं। काले पानी की इतनी भीषण यातना झेलने के बाद भी कमजोर नहीं पड़े।
2: कमजोर हो भी कैसे सकते हैं? अभी तुमने उनकी वाणी का जादू नहीं देखा, इसलिए ऐसा कह रहे हो। अरे उनकी वाणी सुनोगे तो ठंडा खून भी उबलने लगेगा।
5: अरे भैया, कब आएगा वो दिन?
2: अधिक इंतजार की आवश्यकता नहीं है, अगले महीने ही सिंगापुर में वो क्रांति की चिंगारी अपनी वाणी से फेंकेंगे।
7: अच्छा।
2: पिछले महीने ही उन्हें क्रांतिकारियों के दल ने जापान भेजा था।
7: तो क्या उनकी सेवाएं विदेशों में आजादी का पैगाम सुनाने के लिए ली जाती हैं?
2: गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को लेकर कोरिया जहाज जापान पहुंचा। तब वहां पंडित जी क्रांतिकारियों से जा मिले। वहां से वो सिंगापुर जा पहुंचे हैं और वहीं एक मीटिंग करने वाले हैं। उसके पहले गीता के प्रवचन भी देंगे वो।
7: अच्छा,
5: तो क्या पंडित जी गीता का प्रवचन भी करते हैं?
2: हाँ, जब वो गीता के प्रवचन करते हैं तब भी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं।
7: अरे वाह, तब तो किसी भी तरह सिंगापुर पहुंचना ही होगा।
2: लो भैया लो, किसी तरह धक्के खाते खाते आखिर हम सिंगापुर पहुंच गए।
7: हाँ, पहुंच गए।
2: यहाँ देखने को मिलेगा पंडित जी की वाणी का जादू।
7: हाँ।
2: ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे इनके पीछे पीछे चलकर ही पता चलेगा।
7: अरे वाह, इतने सारे भारतीय और ये अंग्रेज सेना में शामिल हमारे साथी ही तो हैं।
5: अरे हाँ भाई, आज इन सबको पंडित परमानंद जी संबोधित करेंगे।
7: हाँ भाई, अरे जरा संभाल के निकलिए भाई साहब। हाँ, अरे उन्हें ही तो सुनने के लिए भारत से किसी तरह यहाँ पहुँचा हूँ मैं।
2: बड़े किस्मत वाले हैं आप।
7: वो भला कैसे?
2: अरे भाई, एक तो भारतीय,
7: हाँ,
2: दूसरे क्रांतिकारियों को सुनने की चाहत, ये दोनों ही बातें आपको कुछ अलग करती हैं।
7: हाँ।
5: अरे भाई, आज यहाँ पंडित जी किन्हें संबोधित करने वाले हैं?
2: एक मिनट, काम तो निकल जाने दो। क्या है कि ये सिंगापुर है। क्या ऊंची ऊंची इमारतें हैं भाई। वाह, ये अंग्रेजी साम्राज्य का सिंह द्वार है। यहाँ के तमाम वो सिपाही जो अंग्रेजों की सेना में तो हैं किंतु भारतीय हैं, उन्हें संबोधित करेंगे।
7: भैया, ये तो एक तरह का ब्रेन वॉश ही होगा।
2: अब ये तो पंडित जी के भाषण पर निर्भर करता है।
5: तो भैया, तो फिर चलो, फिर देर किस बात की। चलो,
7: हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चलो, चलो, चलो आ जाओ।
5: अरे
7: अरे बाप रे, इतना सारा जन सैलाब।
6: अरे दादा, अरे दादा, ये सभी पंडित जी का भाषण सुनने जा रहे हैं।
5: भैया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे। हैं?
6: ये इनकलाबी मीटिंग है बंधु, इतने लोग तो आएंगे ही।
8: भाइयों, आप सभी भारत के सिपाही हैं।
7: अरे अरे, सुनो सुनो, पंडित जी का भाषण शुरू हो गया है।
8: भारत माता के वीर पुत्र हैं। आपकी भुजा में बल है और दिलों में साहस का तूफान है। आप लोग उन वीरों की संतान हैं जिनको अंग्रेजों ने दिल्ली से पटना तक दरख्तों से लटका लटका कर फांसी पे झुलाया था। आज आपके वो ही पूर्वज भारत माता की आजादी के लिए आपका आवाहन करते हैं।
7: अरे वाह, इतनी ओजस्वी वाणी भैया मैंने तो कभी नहीं सुनी।
2: अरे आप केवल सुनते ही रहेंगे, इधर तो असर भी होने लगा है। उसे देखो, उसे देखो, कैसे उसकी भुजा बड़बड़ा रही है।
7: अरे भैया, धीरज धरो,
5: उनकी आवाज का जादू लोगों के दिलो दिमाग पर चढ़ता ही जा रहा है। उनके स्वर और भी मनोवैज्ञानिक ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहे हैं।
8: तो अपने उन वीर पूर्वजों का रक्त हमारी और आपकी धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। अगर हमारा खून असली है तो वह भावनाओं की टक्कर लगते ही उछल पड़ेगा। अगर वह नहीं उछलता है तो समझना चाहिए कि हमारे रक्त में अवश्य कुछ फर्क पड़ गया है।
2: क्या बात,
7: वाह, क्या बात कही। वाह,
8: बस आप सिपाही हैं और वीरता के सब साधन आपके पास हैं। अपने पूर्वजों का बदला लेकर उनके ऋण से मुक्ति प्राप्त कीजिए। अपने देशवासियों को गुलामी से मुक्त कीजिए।
2: ये बात तो ठीक है।
7: क्या बात कही है।
8: मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आपसे कुछ कहता हूँ।
6: तो पंडित जी क्या कह रहे हैं?
8: हमको लगता है भटक गए उनके बेटे, इतने स्वार्थी निकले हम माँ को भूल गए। कुछ हम हैं जिनको अपने मतलब से मतलब, कुछ लाज बचाने भारत माँ की झूल गए।
2: वाह,
8: क्यों लाल खून अपना सफेद होता जाता, मर गया हमारी आंखों का क्यों पानी है, क्यों भरी जवानी में हम मुर्दों से ठंडे हैं, है आग कहाँ क्यों ठंडी हुई जवानी है।
2: वाह वाह,
8: हमको सबूत देना है वही खून हम में, हम भारत माँ के ही बेटे कहलाएं। अभिषेक दूध से पानी से होता आया, हम लोग खून से अपनी माँ को नहलाएं।

0: विद्रोह की चिंगारी सुलगाकर क्रांतिकारियों का जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया।
1: अरे फिर क्या हुआ काका?
0: उधर अंग्रेजी पलटनों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। भयंकर रक्तपात हुआ। हमारे अनेक साथी अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हुए, पर पंडित जी के ओजस्वी शब्दों ने ऐसा कहर बरपाया कि सिंगापुर में भारतीय झंडा फहरा दिया गया।
2: वाह क्या बात है!
3: भारत माता की
4: जय!
0: पूरे 21 दिनों तक सिंगापुर ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त रहा। और इधर पंडित जी अपनी आवास के जादू और अपने साथियों के साथ भारत वापस आ पहुंचे।
5: क्या बोलते हैं पंडित जी, मानो आग बरस रही हो।
1: अरे यही कारण है कि अंग्रेज भी उनसे डरने लगे।
5: हाँ।
1: इसलिए अमेरिका और कनाडा से आए हुए गदर पार्टी के कुछ लोग भारत पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिए गए।
6: हमारे पंडित जी का क्या हुआ भैया?
5: हाँ, क्या हुआ?
1: अरे भैया, इस बार वो नहीं बच पाए। उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
7: अरे आलो आलो, अपना परमानंद भाई पणाइया आवी गया छे।
8: हाँ, अहमदाबाद में जेल छे, अहिया तो बधाए आवे छे।
7: अरे ई बात नहीं बापू, तमे आ परमानंद भाई ने सारी रीते ओखरता नथी, एटले आवु कहो छो। बधाए तो देश सेवा नु काम छाना माना करे छे, पण आपना परमानंद भाई जे पण करे छाती ठोकी ने करे छे।
8: केम छे मोटा भाई, केम छे?
7: अरे अरे अरे अरे, तमे पण गुजराती जानो छो?
8: थोड़ी थोड़ी धाणी तो आवेने। अंडमान जेल में मेरे साथ दो गुजराती भाई थे, उनसे थोड़ी थोड़ी सीख ली है।
7: तमे तो हमारा मोटा भाई छे, मतलब हम आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं।
8: बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, बड़ा तो केवल खाने वाला होता है। यदि मूंग बड़ा हुआ तो वही सच्चा बड़ा कहलाता। वो कहते ना मूंग बड़ा।
7: आप सचमुच मजाक अच्छा कर लेते हो मोटा भाई।
9: आपके ऐसे स्वभाव के कारण ही आप पूरी जेल में वखाए जाते हैं।
8: मेरा काम है दिलों को जोड़ना, जो भाषण प्रवचन और कविता से हो जाता है।
7: पर उस दिन जो आपने गजब कर दिया मोटा भाई,
8: अब सर पर कफन बांध लिया है तो फिर आराम हमें नहीं सुहाता।
6: पहले ये कोई जेल है जहाँ कैदियों को खाने में कंकड़ नहीं निकलते, बेतों की सजा नहीं मिलती, उन्हें अंधेरी कोठरियों में नहीं रखा जाता।
7: तो क्या हुआ, यहीं पड़े रहो मोटा भाई?
8: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसी सुविधापूर्ण जीवन। मैं तो मौका तलाश रहा हूँ, जिस दिन मौका मिलेगा मैं यहाँ से निकल लूंगा।
7: अरे क्या गजब करते हो मोटा भाई, आप तो बड़े जीवट हो।
8: तुम नहीं जानते, तुम्हारा ही एक भाई है पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है। देखना, वह एक दिन इन अंग्रेजों को इस देश से भगा कर ही रहेगा।
7: आप गांधी जी की बात तो नहीं कर रहे मोटा भाई?
8: हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं भी उनसे ही प्रेरणा लेकर जेल से ही सत्याग्रह चलाऊंगा।
0: पंडित जी ने जेल में बंद क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। जेल में कहीं भी आने जाने की सुविधा का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया।
7: अच्छा।
0: और कहीं से रंग लेकर कैदियों के कपड़े आदि को रंगवा कर उसके तिरंगे बना लिए।
2: अरे वाह!
0: और जेल की दीवारों पर जगह जगह चिपका दिए। कई कैदियों ने ये काम जेल में लगे पेड़ों पर आकर भी दिखाया। अंग्रेज समझ गए कि इसके पीछे पंडित परमानंद ही हैं। उनसे बुनाई मास्टर का पद छीन लिया गया।
7: अरे?
0: और टाट के कपड़े, डंडा, बेड़ी और अंधेरी कोठरी की सजा दी गई। पंडित जी ये चाहते थे, लेकिन दुख इस बात का था कि आए दिन किसी न किसी साथी को फांसी की सजा दी जाती थी। एक एक करके कई साथी उनसे बिछुड़ गए। 1937 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन की खबर आई, तब अधिकांश कैदियों को रिहा कर दिया गया। उनमें से पंडित परमानंद भी थे।
6: अच्छा
1: ये अच्छा ये तो
0: अच्छा। अब वे भूमिगत आंदोलन में शामिल हो गए।
7: ये ब्रिटिश हुकूमत ने हम पर गलत आरोप लगाए,
6: पर प्रचार के सारे संसाधन तो उन्हीं के पास हैं।
7: इसका समाधान योगेश चंद्र चटर्जी के पास हो सकता।
8: इसका समाधान यही है कि दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाए और अपना पक्ष रखा जाए।
6: फिर तो आपकी गिरफ्तारी तय है।
8: ये तो होगा ही, पर पंडित जी है ना, मेरे बाद वही दल का नेतृत्व संभालेंगे। क्यों पंडित जी?
3: हाँ हाँ हाँ, कर लूंगा मैं, कर लूंगा।
8: तो तय रहा, कल सार्वजनिक सभा में मैं अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखूंगा। भाइयों, ये अंग्रेज अब अपनी औकात पर आ गए हैं। हमारे देश में ये एक व्यापारी की तरह आए और हम पर ही शासन करने लगे। हमारे देश का वैभव इन्हें रास आया और वे उसे लूटकर अपने देश ले जाना चाहते हैं। पर अब इनके दिन पूरे हो रहे हैं। हम पर गलत आरोप लगाकर वे अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते। मैं अंग्रेजी शासन।
6: लो भाई, चटर्जी का भाषण पूरा होने के पहले ही वे पुलिस से गिर गए। हो गया बंठाधार।
7: हाँ।
6: अब वे क्या बोल पाएंगे?
7: नहीं बोल पाएंगे।
6: अपना पक्ष रख भी नहीं पाए और गिरफ्तार कर लिए गए।
3: भाइयों, ये ना समझे कि एक योगेश चंद्र चटर्जी की गिरफ्तार होने से ब्रिटिश हुकूमत की धज्जियां उड़ाने वाला कोई नहीं है। मैं पंडित परमानंद आप लोगों के सामने हूँ।
5: तो पंडित जी क्या कह रहे हैं?
3: मैं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करूंगा जहाँ योगेश चंद्र चटर्जी को बात कहने से रोका गया था। आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग अपने स्थान पर खड़े रहें और मेरा वक्तव्य सुने तथा ब्रिटिश हुकूमत को बता दें कि क्रांतिकारियों की जुबान बंद नहीं की जा सकती।
0: और फिर पंडित जी ने अपनी ओजस्वी वाणी और आग बरसाने वाले शब्दों का प्रहार शुरू कर दिया। कई लोगों को सिंगापुर याद आ गया, लोगों में जोश आ गया। उनके वक्तव्य के बीच से पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि पंडित जी को गिरफ्तार कर लें। पंडित जी ने जैसे ही अपना भाषण समाप्त किया और मंच से नीचे उतरे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल जाना तो उनके लिए एक खेल था, लेकिन इस बार जब वो जेल गए तो आजाद भारत में ही उन्हें मुक्ति मिल पाई। आजादी के बाद भी उनके बागी तेवर कम नहीं हुए। कई बार उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों लिया। इस तरह से वे विरोध का पर्याय बन गए और कब चुपचाप इस दुनिया से चले गए कि किसी को खबर भी नहीं हुई। ऐसे क्रांतिकारियों को देशवासियों की तरफ से शत शत नमन।
4: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. सिस्टर शिवानी इज विद अस. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस.
3: थैंक यू
2: सिस्टर. हमारी बातें हो रही थी रिश्तों पर, कैसे किसको एनर्जी एक्सचेंज होती है. भले मैं ऊपर से अच्छी बात करूं और मैं ये बोलूं भी, देखो मैंने तो बिल्कुल यही बोला था एग्जैक्टली. और यूजुअली लोग एक्ट आउट करके, एनएक्ट करके बताते हैं, जैसे एक्टर करते हैं ना. मैंने तो सिर्फ एग्जैक्टली ऐसे ही बोला. उनका रिएक्शन कितना बुरा था आपको मालूम है? पता नहीं इनके दिल में मेरे प्रति क्यों इतना गुस्सा है, इनके दिल के अंदर पता नहीं क्या है. ये जो अंदर वाली बात है, क्या हमको खुद को नहीं मालूम होती?
3: थॉट्स जो हमारी है वो इतनी सटल है कि कई बार हमें भी नहीं पता कि हमने क्या क्या सोच के किसी के लिए रखा हुआ है. मे बी जस्ट नाउ आई एम थिंकिंग वेरी नाइसली अबाउट यू एंड स्पीकिंग ऑल्सो नाइसली
2: जी,
3: राइट. तो इस समय इस परिस्थिति में मेरी सोच भी ठीक है, मेरे बोल भी ठीक है. तो अगर मैं अपनी चेकिंग भी करूं तो ऐसे nice thoughts, nice words, nice action, सब ठीक था, लेकिन फिर भी उनका रिएक्शन ऐसा क्यों था? पता नहीं, जैसे आपने कहा, पता नहीं वो उनके मन में मेरे प्रति क्या भरा हुआ है. इस क्षण मेरी सोच ठीक थी, लेकिन काफी बार मेरे मन में उनके प्रति क्या भरा हुआ होता है, ये मुझे चेक करना होगा. नॉट सिर्फ इस क्षण मेरे मन में उनके प्रति क्या चल रहा है, क्योंकि जो थॉट्स एक्सचेंज है वो सिर्फ उस मिनट की नहीं है ना, कि अभी मैंने ये सोचा, आपने ये सोचा, फिर मैंने ये सोचा, आपने ये सोचा. थॉट्स एक्सचेंज मींस ओवरऑल मैं आपके बारे में जो सोचती हूँ वो आप तक पहुंचने वाला है.
2: लेकिन सिस्टर ये इतना पक्का होता है कि मैंने तो ऑनेस्टली मैं कसम खाने को तैयार हूँ और अब मुझे महसूस भी होता है कि मैंने रियली प्यार से बात किया.
3: बिल्कुल प्यार से बात,
2: और लगता भी नहीं कि मेरे अंदर कुछ है, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ.
3: हमें चेक करना होगा इसको. अगर हमारा किसी के साथ भी रिश्ता स्मूथ नहीं है, जितना एक हार्मनी, एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है. अगर हमारा किसी के प्रति एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे मन में उनके प्रति कुछ चलता है या उनके मन में हमारे प्रति चलता है और वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं, There's just absolutely no way कि हमारे मन में भी उनके प्रति नहीं चल रहा है. It's not possible. ये नहीं हो सकता है. सिर्फ ये है कि थोड़ी सी बैठकर गहराई में जाकर अपनी सोच को देखना होगा.
2: पहले किसने शुरू किया?
3: We don't know. हमें नहीं पता. मैंने आपके बारे में गलत

0: पॉजिटिव को धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, अगर हमें उस रिश्ते को ठीक करना है तो उनको देखने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना है हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इसकी चेकिंग कर लें, इसको क्लीन करते जाएं।
1: हम क्या बोलते हैं, लगता ऐसे कि हम तो बहुत ही क्लीन हैं, हम तो देखो कितना प्यार करते हैं, बट ऐसे क्यों लगता है कि जब मैं, अब जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस कैसे करेंगे जब लगता है कि आई एम राइट।
0: अंडरस्टैंडिंग, सपोज आपके अंदर भी कई संस्कार है, मेरे अंदर भी कई संस्कार है, मुझे मेरे संस्कार कंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि वो मेरे संस्कार है। अब आपके किसी संस्कार के साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, एडजस्ट मतलब वो संस्कार मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, बट आई विल से ओके आई एडजस्ट। नाउ व्हेन आई एडजस्ट इट क्रिएट्स सम डिस्कम्फर्ट, मतलब आई एम नॉट एक्सेप्टिंग बट आई हैव टू लिव विद दैट संस्कार, कि मुझे वो संस्कार सामने वाले का पसंद नहीं है, पर हम अपने आप को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, परिवार है, रहना है इकट्ठे, कोई बात नहीं, ये संस्कार है। लेकिन जितनी बार हम ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने आप से कह रहे हैं मुझे उनकी इस बात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे आजकल घर पे बता के नहीं जाते, मुझे इस बात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है।
1: कई बातें पसंद नहीं है, फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है, क्या
0: करें। एक्सेप्टेड, ये बात सच है कि मुझे कई बातें उनकी
1: पसंद
0: नहीं है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन उतनी ही वो बात दूसरे के दृष्टिकोण से भी उतनी ही सच है कि उनको भी हमारी कई बातें पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ता है।
1: ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, यही पूछ रहा था,
0: हमें ये नहीं लगता। सी, जब हम चेकिंग करते हैं एंड इफ वी से कि हाँ मुझे उनकी कई बातों में एडजस्ट करना पड़ता है, हम ये कहते हैं लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैंने कभी उनको कुछ नहीं बोला।
1: एडजस्ट किया उस दिन, ये बोला तो भी सुन लिया, ये किया तो भी सुन लिया, ये किया तो, हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट रहती है।
0: yes.
1: और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उधर से हमको दिखता नहीं, वो कौन दिखाए?
0: वी डोंट हैव टू सी इट, वी हैव टू नो दैट इट विल ऑलवेज बी देयर। मुझे ये देखना नहीं है,
1: बिकॉज़ आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स, उधर होना ही होना है।
0: इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कोई भी दो आत्माएं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, इम्पोर्टेंट इज इट्स टू सोल्स, दो आत्माएं, दो डिफरेंट सेट ऑफ संस्कार। तो एक संस्कार को दूसरा संस्कार थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये कैसी चीज है, क्योंकि इसके पास वो नहीं है, तो इसको वो वाला संस्कार अजीब लगेगा। और वैसे ही इनके पास भी अलग संस्कार है, इनको ये संस्कार अजीब लगेंगे। लेट्स से एक के अंदर संस्कार है कि हर बात बतानी है, कहीं जा रहे हैं बता रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं बता रहे हैं, कुछ भी घर में हो रहा है शेयर कर रहे हैं। दूसरे के अंदर संस्कार है कि हर बात थोड़ी बतानी है, इसमें क्या है बताने जैसा, वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा, उसके अंदर वो संस्कार ही नहीं है। अब जो हर चीज बताता है, ठीक से इन्फॉर्म करता है, कम्युनिकेट करता है, उनको ये संस्कार कि कोई कम्युनिकेट ही ना करे ठीक से, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जो नहीं कम्युनिकेट कर रहा, उसके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है कि हर छोटी छोटी चीज कम्युनिकेट करते रहते हैं एक दूसरे को।
1: सिस्टर एक बात बताइए, इसमें कई बातें तो ऐसी लगती हैं कि ये तो नेचुरल है कि वे कहीं गेट के बाहर जा रहे हैं, लंच पे नहीं आ रहे हैं, वो तो बोलना ही है ना,
0: वो आपके लिए नेचुरल है क्योंकि
1: मतलब फिर उनके लिए खाना बनवा दें, एक्स्ट्रा बना के वेट करें, पता ही नहीं आ रहे जा रहे, तो फिर घर का मतलब हॉस्टल तो नहीं है ना।
0: सी, ये सारी चीजों के पीछे कितनी लॉजिक होती है, लेकिन ये लॉजिक उसके लिए लॉजिक है जिनका वो संस्कार है, जिनका वो वे ऑफ लिविंग है, जिसका वो है ही नहीं अभी। हाँ, हम एक नया क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। वे नॉट सेइंग कि अगर बच्चे के अंदर ये संस्कार नहीं है कि बताता ही नहीं है तो हम उसको छोड़ दे जीवन भर, उसको सिखाए नहीं ये चीज, हमें सिखाना है। लेकिन पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो संस्कार उसके अंदर मिसिंग है। See, we have carried past संस्कार्स, we have created present संस्कार्स, दोनों आत्माओं पे संस्कार का बंडल अलग अलग है। जितना नेचुरल आपको ये लग रहा है कि बताना ही होता है, कितना नेचुरल लगता है, मतलब इसमें दो थॉट भी नहीं चलेगी कि बताना चाहिए या नहीं, मतलब इट्स नेचुरल।

0: उतना ही सामने वाले को उतना ही नेचुरल लगता है।
1: अब ये सोचेगा कि ये अहंकार है या वो सोचेगा ये अहंकार है,
0: तो यही दोनों
1: मतलब ये
0: को
1: परमिशन लेना है या सिर्फ बताना है। परमिशन लेना, आशीर्वाद लेना और पूछ के जाना कि जाना या नहीं जाना, और जाते जाते टाइम अच्छी दृष्टि लेके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ।
0: विच इज परफेक्ट ना, ये परफेक्ट है, ये पूरी लॉजिक है कि बच्चे को घर से जाने से पहले बताना चाहिए। बताना चाहिए क्यों? ताकि पेरेंट को पता होना चाहिए वो कहाँ है, ब्लेसिंग्स लेके जाना चाहिए, एंड जनरली एवरीबडी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज परफेक्टली फाइन, बट इम्पोर्टेंट इज कि सामने वाले के अंदर अभी वो संस्कार नहीं है, अभी नहीं है। वी कैन हेल्प देम टू क्रिएट द संस्कार ओनली आफ्टर एक्सेप्टिंग फर्स्ट दैट दे डोंट हैव दैट संस्कार राइट नाउ। अगर हम इस
1: अगर
0: बात
1: हम ये सोचने लगे इतना भी संस्कार नहीं है, इतनी भी अकल नहीं
0: हम
1: है,
0: ये नहीं
1: इतनी भी
0: सोचते,
1: थिंकिंग नहीं है, तब जाके प्रॉब्लम
0: तब
1: होता है,
0: जाके प्रॉब्लम
1: इतनी
0: आता है।
1: सेंसिटिविटी
0: हमें
1: नहीं।
0: ये लगता है कि ये जान पूछ कर नहीं बताते, ये बता सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि
1: और
0: बताना
1: उनको ये
0: चाहिए।
1: लगता है कि बड़े हमको दबा रहे हैं,
0: दिस इज
1: कंट्रोल
0: इट,
1: कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई ना। अब जैसे ही अंडरस्टैंडिंग नहीं आई और जैसे ये दो थॉट्स आपने बताए कि छोटों को लगेगा कि वो हमें दबा रहे हैं और बड़े को लगेगा ये हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी म्यूचुअल फ्लो हो रही है ना दोनों तरफ से। दोनों थिंकिंग टोटली ऑपोजिट है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज एब्सोल्युटली नेचुरल। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब सामने वाला हमारे संस्कार की तरह नहीं चल रहा है, हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करें कि ये तो केयरलेस है,
1: माँ बाप
0: ये
1: ने
0: एरोगेंट
1: सिखाया
0: है,
1: स्कूल में
0: ये
1: क्या सिखाते हैं?
0: ईगोइस्टिक है, यस, ये बताते नहीं है, ये बहुत इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट ऑल दीज थिंग्स, इट इज वो उनका अभी संस्कार है। जैसे ही एक साइड पेरेंट, और ये किसी भी संस्कार में किसी भी सिचुएशन में, जैसे ही एक साइड इस साइड को एक्सेप्ट करेगा कि ओके इनके अंदर अभी ये संस्कार नहीं है, वी विल कम्युनिकेट एंड ग्रेजुअली क्रिएट अ न्यू संस्कार देर। लेकिन राइट नाउ वो जो कर रहे हैं पर्पसली नहीं कर रहे। सी वन थिंग वी नीड टू नो, कोई भी जान पूछ के नहीं कर रहा होता, उसकी लॉजिक उसी डायरेक्शन में वर्क करती है। क्यों लॉजिक उस डायरेक्शन में वर्क करेगी? क्योंकि वो ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमने देखा बिलीफ सिस्टम, जो हमारे संस्कार से बनता है। आपका विंडोज है, मेरा मैक है, तो बहुत सारी चीजें मैच नहीं करने वाली है। लेकिन आप कहेंगे मैं जान पूछ के ऐसा कर रही हूं, तो नो, इट्स जस्ट दैट माई ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट।
1: सपोजिंग आप जानती हैं कि मुझे फिक्र हो जाती है कि अगर पता ना चले कि मेरा बेटा है, बेटी है, बहू कहाँ है, कहाँ चले गए, सिर्फ फिक्र कंसर्न है। मालूम होते हुए भी आप नहीं बताओ तो फिर ये जानबूझकर ही है ना? क्या कि हर बात उनको बतानी है क्या? मतलब मेरी जिंदगी में मेरी फ्रीडम नहीं है क्या? ऐसे है क्या? फिर बच्चे ऐसे भी तो सोचते हैं।
0: क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम उनके संस्कार को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे एंड हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए। जैसे हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, वो भी तो चाहते होंगे कि हम चेंज हो जाए। हम चाह रहे हैं कि सिस्टम चेंज हो जाए एंड वो बताना शुरू कर दे अपनी हर बात, वो भी चाह रहे होंगे कि सिस्टम चेंज हो जाए और ये वंस एंड फॉर ऑल ये अपना संस्कार खत्म करें, एक्सपेक्ट करना खत्म करें कि हम हर बात बताएंगे ताकि हम भी हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे। बोथ आर गोइंग टू बी ट्राइंग द सेम थिंग। इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ, इट्स मोर लाइक अ टग ऑफ वॉर कि कौन जीतेगा दूसरा मेरे संस्कार के साथ एडजस्ट कर ले, और दूसरा वाला भी यही सोचता है कि ये मेरे संस्कार को समझ ले।
1: मेरे मन में सिर्फ प्यार और कंसर्न हो या फिक्र हो तो उसको आप टग ऑफ वॉर बोलेंगे?
0: लेकिन मेरे मन में है कि मेरी जीवन इतनी सफोकेटेड नहीं चल सकती है। माय डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट इज डिफरेंट। आपकी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट ये होगी कि मैं अपनी हर बात आपको बताऊं, लेकिन मेरे लिए आपको अपनी हर बात बताना एक सफोकेशन है। मुझे याद भी नहीं रहता है बिकॉज मेरे लिए इट्स डजंट वर्क लाइक दैट। सी द थिंग इज, मुझे दिखाई नहीं देगा वो जो आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत, वी नीड टू रियली फिट इट इन कि आप जितनी लॉजिक देंगे आपकी वो लॉजिक सारी बात राइट है, लेकिन सामने वाले के पास भी उतनी ही लॉजिक है, उतनी लॉजिक है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट आता है? कॉन्फ्लिक्ट दो आत्माओं में इसीलिए आ रहा है ना, क्योंकि दोनों लॉजिकली 100% एक्यूरेट है। लेकिन दोनों को सिर्फ अपनी लॉजिक दिखेगी, दूसरे की नहीं। अब इसको रिजोल्व तो करना है ना, वी कांट गो ऑन लाइक दिस, हम ऐसे ही तो नहीं चल सकते। तो अब पहले दोनों में से एक, ये भी नहीं कि दोनों को करना है, दोनों में से एक को दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना है। एंड एक्सेप्ट मीन्स उस पर मनन नहीं करना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये इतना इंटरफेयर क्यों करते हैं, ये हमें बताते क्यों नहीं है, ये इतने डोमिनेटिंग क्यों, फुल स्टॉप। ये अभी संस्कार है, वन। जैसे एक साइड दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करेगी तो उसकी वो वाली थॉट्स, ये ऐसे हैं, ये इगोइस्टिक हैं, ये बताते नहीं, ये केयरलेस हैं, ये वाली थॉट्स सारे बंद होने लगेंगे। जैसे ही एक साइड की थॉट्स बंद होने लगेंगी, दूसरी साइड की थॉट्स भी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। जब ये रेजिस्टेंस की एनर्जी बंद हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस एनर्जी, कि मुझे आपका संस्कार पसंद नहीं, आपको मेरा संस्कार पसंद नहीं, दिस इज एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस। जब तक ये एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस बीच में है, दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव कभी समझ में नहीं आ सकता। इट्स लाइक ब्लैक नेगेटिव एनर्जी बीच में, जब तक वो है मुझे आपका नजरिया कभी नहीं दिखाई देगा। एंड हम वी कैन लिव इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर अ लाइफ टाइम, एब्सोल्युटली फॉर अ लाइफ टाइम।
1: जब तक वो है मतलब क्या है?
0: ये ब्लैक एनर्जी है ना आपकी तरफ से,
1: क्या है ये ब्लैक एनर्जी? क्या है?
0: आप रेजिस्ट कर रहे हैं मुझे, आपको लगता है मैं ईगोइस्टिक हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, इनडिफरेंट हूँ, केयरलेस हूँ, मैं जान पूछ कर आपको बता नहीं रही, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। कितनी हैवी एनर्जी है, एक एक थॉट कितनी हैवी एनर्जी है।
1: ये थॉट्स हैवी एनर्जी होती है?
0: ये हैवी नहीं है। आप मेरे लिए क्या क्या सोचा, मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही हूँ,
1: मनमानी,
0: हाँ मनमानी कर रही हूँ, अपनी तरह से अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रही
1: हूँ। पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार नहीं दिए,
0: मेरे पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये आपकी मेरे बारे में कैसी सोच है? फिर मैं घर में डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने तरह से चलकर परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, एक एक थॉट कैसी है? अगर आप ये सारी बातें सिर्फ सोच में रखने की बजाय मुझे बोल दो एक बार, तो शायद मैं उसके बाद कभी बात नहीं करूँ आपसे। लेकिन हम बोलते नहीं है, हम सोचते हैं। अब क्योंकि आप ऐसी सोच कर रहे हैं मेरे लिए, यू हैव नो आइडिया मैं आपके लिए कैसे सोच रहे होंगे। मैं कहूंगी कैसे लोग हैं, सारा दिन इंटरफेयर करते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, इधर नहीं बैठो उधर नहीं बैठो, इतने कैसे परिवार में आ गई मैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आई गेट सफोकेटेड ओवर हियर इफ आई लिव लाइक दिस, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ आई वांटेड, दीज आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल आई कैन एडजस्ट विद, इम्पॉसिबल फॉर मी टू लिव हियर। एनर्जी, अब हैवी एनर्जी अगर एक तरफ से है तो उतनी ही या उससे कई गुणा हैवी एनर्जी दूसरी तरफ से भी है। अब हमें ये नहीं पता कि दोनों में से किसने ये पहले स्टार्ट की थी, हो सकता है मैंने पहले आपके लिए स्टार्ट की हो, ये भी हो सकता है कि आपने प्यार से एक दो बार पूछा कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, एंड आई वाज लाइक ये कैसे बातें करते हैं, ये ऐसे सोचते हैं, तो हो सकता है मैंने ये स्टार्ट की थी, आपने नहीं स्टार्ट की थी, लेकिन क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी आप तक वो पहुंची, जैसे वो चंदन के फार्मर की राजा को पहुंची, तो राजा ने भी वही क्रिएट की, तो मैंने आपके लिए ऐसा सोचा तो आपके अंदर भी मेरे लिए ऐसी थॉट्स आने शुरू हो गई। अब एक बार आपके अंदर भी आने शुरू हो गई तो मेरी तो फिर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ दिस इज ब्लैक हैवी एनर्जी।
1: इसलिए जब मुझे किसी ने कहा था, मेरे समझ में नहीं आई थी बात, कि वो उसने कहा था कि हर एक इंसान के अंदर एक रावण भी होता है राम भी। अब ये मुझ पर है, मैं इनका रावण जगाऊं कि राम जगाऊं?
0: ब्यूटीफुल।
1: तो अभी आपकी बात से ये लग रहा है कि अगर मैं उसकी थॉट, अगर इसके संस्कार है भी, तो मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि भाई ये भाई पढ़े लिखे हैं, नए जमाने के लोग हैं, बच्चे हैं, शायद ऐसा होगा, समझ जाएंगे।
0: इम्पोर्टेंट है सिर्फ एक थॉट, इस क्षण ये इनका संस्कार है।
1: और दूसरी आपकी बात बहुत अच्छी लगी, इस क्षण दे आर राइट, इस समय वो सही है,
0: क्योंकि जब तक वो मेरा संस्कार है मैं सही हूँ। सी इट्स लाइक मैंने काला चश्मा पहना, आपने लाल, तो मुझे काला दिखेगा। आप कितना भी मुझे लॉजिक सुनाए, मुझे दिखेगा काला जब तक काला पहना है। जैसे

0: काला उतारा, मुझे कुछ डिफरेंट दिखेगा। तो जब तक वो मेरा संस्कार है और जब तक मुझे रियलाइजेशन, बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज हुआ, जब तक मेरा बिलीफ सिस्टम ही नहीं चेंज हुआ, मेरे अंदर एक अलग थॉट क्रिएट ही नहीं हो सकती। आप कितना भी मुझे एक्सप्लेन करें, अच्छा ये भी होगा, आप बिठाएंगे मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू, आई से चलो ठीक है, रिस्पेक्ट करना है, एक घर में रहना है, मैं इनके लिए, इनकी खुशी के लिए
1: सुन लेती हूँ,
0: सुन भी लेती हूँ, मैं कर भी लूंगी, मैं करने का भी डिसाइड करती हूँ।
1: लेकिन फिर भूल जाते हैं।
0: भूलो, मेरा संस्कार नहीं है ना, मेरा संस्कार नहीं है, चेंज थॉट लेवल पे नहीं आ पाता ना। मेरी थॉट्स मेरे संस्कार से निकल रहे, मेरे बिलीफ सिस्टम से। आपने कुछ कहा कि ऐसा करना चाहिए, देखो घर में कितना टेंशन हुआ, आज आप बता के नहीं गए थे तो हम लोगों को कितनी फिक्र थी, मैंने आपकी चिंता देखी, आपका कंसर्न देखा, उस क्षण के लिए मेरे को कितना अच्छा लगा,
1: मान भी लिया।
0: हाँ मुझे कितना अच्छा लगा कि ये पूरा परिवार मेरे लिए कितना केयर करता है, मुझे नेक्स्ट टाइम से इनको जरूर बता के जाना है। अच्छा ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बता के जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए कॉन्शियस रिमेम्बरेंस है कि कल शाम को ये हुआ था, फिर अगले दिन भी बता के जाऊंगी,
1: फिर हफ्ता दस दिन निकल गए फिर भूल गए,
0: फिर क्योंकि संस्कार नहीं अभी बदला है।
1: अच्छा मैं ये सोचूंगा ये भूले नहीं, देखो फिर से शुरू कर दिया वो नाटक।
0: yes.
1: नाटक फिर से शुरू हो गया ना।
0: yes.
1: देखो कैसे नाटक है,
0: ये जो थॉट्स,
1: अगर करना नहीं होता तो बीच में कैसे किए,
0: बिल्कुल
1: अब किए कैसे, कैसे एक दूसरे के
0: कैसे
1: प्रति,
0: कैसे एक दूसरे के प्रति थॉट्स आती है, बस यही तो है सारा कुछ। कैसा कैसा सोचते हैं हम एक दूसरे के प्रति, अगर यही उस टाइम चाहे कुछ भी सामने वाला कर रहा है, हम अपनी सोच उनके प्रति, इसी को कहेंगे एक्सेप्टेंस। यू नो पीपल से आप हर टाइम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, मींस कितना एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कि दूसरे का संस्कार डिफरेंट है, फुल स्टॉप। एक्सेप्टेंस कि संस्कार को चेंज करने में टाइम लगता है, इट डजंट हैपन लाइक दिस कि एक बार बोला संस्कार चेंज हो गया। एक्सेप्टेंस कि उनके लिए इस टाइम वो संस्कार कंफर्टेबल है।
1: सिस्टर एक लिमिट भी होती है चेंज की, जब कौवे को मैं बोलूं कोयल तो नहीं बन जाएगा।
0: बट इम्पोर्टेंट है कौवा कौवा रहकर ही बहुत कंफर्टेबल भी है,
1: कंफर्टेबल है लेकिन उसकी भी लिमिट, समझो किसी किसी इंसान को ज्यादा बोलने की आदत है, वो 10% 20% कर सकता है, ये लिमिट है उसकी चेंज होने की भी, और कब, बार बार भी नहीं हो सकता है, परिस्थिति में आके है ना।
0: इम्पोर्टेंट ये है कि हम सामने वाले को चेंज होने के लिए किस लिए कह रहे हैं, ये चेक करना। जैसे आपने बहुत सुंदर बात कही, कौवा कौवे की तरह बोलेगा, कोयल की तरह नहीं बोलेगा, लेकिन कौवा बहुत कंफर्टेबल है अपनी उस आवाज से, लेकिन आपको कोयल की आवाज पसंद है, तो आप कौवे को क्या कह रहे हैं कि ये कांव कांव अच्छा नहीं है, तुम्हें इस तरह से गाना चाहिए। लेकिन ये जो आप कौवे को चेंज होने के लिए कह रहे हैं, ये किसके लिए चेंज होने के लिए कह रहे हैं,
1: मेरे
0: ये
1: लिए।
0: आप अपने लिए चेंज होने के लिए कह रहे हैं। अगर आप मुझे अपने लिए चेंज होने के लिए कहेंगे, आई विल नॉट डू इट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। वाई शुड आई चेंज बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल, इट्स लाइक दिस, सपोज आई एम सिटिंग लाइक दिस, मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, अब मैं एक पैर पे एक पैर रख के बैठी हूँ, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बैठा हुआ देख आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। इवन इफ द डिस्टर्बेंस इज ऑफ माई कंसर्न कि कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठेंगे तो पोस्चर ठीक नहीं है, दर्द हो जाएगा, ये कोई बैठने का तरीका है,
1: कंसर्न की भी हद हो जाती है ना, कंसर्न करते करते करते
0: कंसर्न इज ब्यूटीफुल,
1: इंटरफियरेंस हो जाता है,
0: इट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड सेड द राइट वे। मैं ऐसे बैठी हूँ, ये मुझे कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल है, इतना भी दर्द नहीं है बिल्कुल, एंड मैं ऐसे घंटों बैठ सकती हूँ, लेकिन आप एक मिनट भी नहीं देख पा रहे हैं इस तरह से, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली जिसको कहेंगे इरिटेट हो रहा है देखकर ऐसे, या वरिड हो रहा है, चलो इरिटेट भी नहीं, हम कहते हैं चिंता, वरी हो रही है ऐसे देख देख के। अब जब आप मुझे चेंज होने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो चिंता है वो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, अगर मैं चेंज हो जाऊं तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, आप अपनी चिंता खत्म करने के लिए मुझे ये कहते हैं चेंज होने के लिए, एंड जब इंटेंशन वो होता है तब सामने वाला चेंज होने के लिए रेडी नहीं होता। अब आप इसको थोड़ा सा चेंज करें कि मेरे ऐसे बैठने से आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आपका माइंड स्टेबल है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरा संस्कार है, मैंने ऐसे बैठना। जैसे आपने एक्सेप्ट किया, आपका माइंड स्टेबल है। अब ये स्टेबल होकर संस्कार को एक्सेप्ट करके अब आप मुझे बताएंगे, लेकिन मेरे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। दिस इज द अंडरलाइन। आप अपने कंफर्ट के लिए नहीं मुझे चेंज करें, आई विल नॉट चेंज, लेकिन अब आप मेरे कंफर्ट के लिए मुझे बताएं।
1: ये मुझे इसका एक वो चाहिए
0: एग्जाम्पल।
1: हाँ।
0: ये एग्जाम्पल ही देखिए, पहले आप डिस्टर्ब मत होइए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आई एम फाइन, एंड नाउ सिट बैक, अपने आप से बात करें, इट्स ओके, वो कंफर्टेबल है ना, तो फिर इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इस संस्कार के साथ, इस व्यवहार के साथ ये कंफर्टेबल है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हमने देखा, ये इनका संस्कार है, स्टेबल हो गए, एनर्जी एक्सेप्टेंस की है। अब आप मुझे बताइए कि मेरा ऐसे बैठना मेरे लिए डैमेजिंग है। The two things very different. मेरा ऐसे बैठना,
1: ये भी बोलो तो चिढ़ने वाला तो चिढ़ेगा कि भैया मुझे मालूम है मेरे लिए क्या डैमेज है कि नहीं है, आप बार बार हर चीज मुझे मेरे फायदे के लिए बताना छोड़ दीजिए भाई साहब।
0: नो प्रॉब्लम, बट आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप बिना डिस्टर्ब हुए सामने वाले को उसका फायदा बताएं।
1: मे बी बिना डिस्टर्ब हुए नहीं बताते,
0: मतलब एक्सेप्ट करके फिर बताएं, रेजिस्ट करके बताना वही बात बताना।
1: आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा
0: लगा, एक्सेप्ट करके फिर बताना, वो दोनों चीजों में बहुत फर्क है।
1: उनके संस्कार को एक्सेप्ट किया,
0: एक्सेप्ट मींस आई एम फाइन, मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है, यू सिटिंग लाइक दिस, आई एम सिटिंग लाइक दिस, मेरे को ऐसा बैठे हुए देखकर आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो।
1: लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ही तकलीफ होगी। अच्छा, आज आपने ऐसा खाना खाया, आज आपने ये कपड़े पहने, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग क्या कहेंगे, कहीं और जाओगी तो क्या होगा, शादी हो जाएगी तब इन लॉज क्या बात करेंगे, यू नो, साथ ये भी बोलते हैं और वो भी करते हैं।
0: लेकिन हम बोल रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
1: पड़ता है,
0: पड़ता है। अब जितना यहाँ फर्क पड़ता है, एनर्जी रेजिस्टेंस की है, रिजेक्शन की है, जिसको हम कहेंगे एक्सेप्ट नहीं किया और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कंफर्ट के लिए। ये बहुत सटल है, ये हमें जल्दी जल्दी पता नहीं चलेगा कि हम अपनी कंफर्ट के लिए औरों को चेंज कर रहे होते हैं। इवन इफ वी कॉल इट कंसर्न एंड लव एंड एवरीथिंग, प्योर लव विल बी जब उनके संस्कार को हमने एक्सेप्ट किया, हम पहले स्टेबल रहे, फिर हमने उनको चेंज जो उनके लिए अच्छा है वो बताया, व्हाट रिजल्ट दैट क्रिएट्स वी विल सी।
1: बहुत अच्छा लगा सिस्टर कि पहले मेरी एनर्जी पहले आपके पास जाती है, तब बाद में शब्द जाते हैं। पहले मतलब जो मैं सोचता हूँ, और बाद में भले मैं बोल दूँ नहीं नहीं मतलब, लेकिन वो ये नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा था, मेरा मतलब ये नहीं था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप कर लो। इसीलिए जब मैं गुस्से में भी बोलता हूँ छोटे बच्चे को, प्यार प्यार वाली बात, तो बहुत खराब है, तो सही, तो बहुत गंदा है, हैं, आई हेट यू, कितने देखो शब्द हो जा रहे हैं और मीनिंग मेरा, वो बच्चा हंसता है आगे,
0: क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है।
1: ये बहुत अच्छी लगी आपकी बात, एनर्जी, डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, बैड एनर्जी एंड गुड एनर्जी। चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं एनर्जी लेवल्स पे ठीक होने की और एक दूसरे को अच्छी से अच्छी एनर्जी देने की।
0: थैंक
1: यू सो मच, नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू।
2: इफ देयर इज अ स्ट्रेन इन एनी रिलेशनशिप, then definitely we are creating wrong quality of thoughts for them. We need to clean our thoughts, else even the best words and behavior will not get the right result. To begin healing any relationship, do not focus on their behavior, words, or what they think about us. Let us take care that we are creating the right thoughts and behavior towards them. If one person changes, it will influence the other and healing begins. When we are adjusting to sanskars of the other person, we need to remember they are also adjusting with our sanskars. Two souls will always have different sanskars and will find the other's sanskars uncomfortable. Accept the other person's sanskar, which means remain stable. Now help them to create a new sanskar and give them time to do it.
3: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पास और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है सहनशीलता सफलता का आधार है। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि किसी भी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहनशीलता का दिव्य गुण धारण करना अति उपयोगी तथा आवश्यक है। विश्व इतिहास बताता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति, विभिन्न धर्मों की स्थापना, महान प्राप्तियों आदि में आने वाली कठिनाइयों, कष्टों, विघ्नों, रुकावटों आदि को सहन करके ही महान सफलताएं प्राप्त हो सकी है। महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, सुकरात व मीरा आदि ने विरोधियों द्वारा डाले गए विघ्नों, अत्याचारों, अपमान आदि को सहन करके ही अपने अपने लक्ष्य को हासिल किया। कुछ ही को तो अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी शुभ भावना व एक रस अवस्था होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमाइया सबसे महान व सर्वश्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त बने हैं, तो हमें अपेक्षाकृत अधिक विघ्नों, कष्टों, विरोध, अपमान आदि को सहन करके ही आगे बढ़ना है और हमें सहन करने की मानसिक स्थिति विकसित करनी चाहिए। हम स्वयं के 5 विकारों पर जीत पाकर निर्विकारी बनते हैं। फिर निराकार परमात्मा का सरल ज्ञान तथा सहज राजयोग दूसरों को सिखाते हैं। यह नया निराला अलौकिक अनुपम तथा सामान्य सोच से परे का ज्ञान होने के कारण परिवार व समाज इसका डट कर विरोध करते हैं, परंतु शिव परमात्मा के सहयोग के चलते हमें इतना कष्ट महसूस नहीं होता कि हम सहन ना कर सके। वैसे भी अल्पकाल की सुख शांति के लिए हम भक्ति के कष्टों, लौकिक परिवार व समाज के दुखदायी बंधनों आदि को भी सहन करते ही हैं। भले ही दुखी होकर करें, परमात्मा पिता ने सहनशीलता का वास्तविक अर्थ बताया है कि जब दुख, अशांति, तनाव, क्रोध आदि पैदा करने वाली विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति दुखी, अशांत न हो तथा सर्व के प्रति अपनी शुभ भावना व एक रस अवस्था बनाकर रखे, हाँ तभी वह सहनशील कहलाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि सहनशीलता के क्या लाभ है, इससे लाभ भी है जैसे शक्ति। हमें कष्टों को सहन करते देख अन्य लोगों की शुभ भावना व कामनाएं, सहानुभूति व सहयोग प्राप्त हो सकता है। हमारे सत्य मार्ग को देख अन्य लोग हमें मन वचन व कर्म से सहायता भी देते हैं। जैसा कि यज्ञ की स्थापना में हम देखते हैं होता रहा है कि इससे हमारी आत्मशक्ति, आत्मबल व हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है जो हमें सफलता प्राप्त कराता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसके एक और लाभ है पवित्रता। सहन करने से हमारा जो है, हमारी जो सहनशीलता है अर्थात पवित्रता भी बढ़ती है। यदि कोई हमसे घृणा करता है, हमारे प्रति अपशब्द बोलता है, हमारी आलोचना आदि करता है, और यदि हम सहन नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में अपमान, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार उत्पन्न होंगे ही होंगे। इन सब को सहन करके हम अपनी आत्मा को निर्विकारी बनाकर अपनी पवित्रता अर्थात शील को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है सहनशीलता ही सफलता का आधार है। एक तरफ हम देखते हैं कि संतुष्टता तथा प्रसन्नता भी होनी चाहिए। परस्पर बातचीत में यदि किसी ने हमारा भद्दा मजाक या अपमान कर दिया तो तुरंत हमारे अंदर असंतुष्टता तथा दुख की महसूसता आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम सहनशीलता का गुण धारण करके यह समझे कि उस व्यक्ति का ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, ऐसे पार्ट के लिए वह दया व रहम का पात्र है, इस प्रकार ज्ञान युक्त सहनशीलता के आधार पर अपने दुख व असंतुष्टता की फीलिंग को समाप्त करते हुए हम सदा संतुष्ट व प्रसन्नचित रह सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि इसके लिए शांति भी बहुत जरूरी है। सहनशीलता को अगर इसका गुण अगर आने से क्यों क्या रूपी संकल्प समाप्त होते जाते हैं तथा मन शांत रहने लगता है। शांति आने से सहन करने की शक्ति अपने आप वृद्धि को पाती रहती है। सहन शक्ति आने से समाने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति व अंतर्मुखता आदि सभी शक्तियां अपने आप आ जाती है। इस प्रकार सहनशील आत्मा शीघ्र ही मास्टर सर्वशक्तिमान बन बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकती है। एक और हम देखते हैं सहनशीलता कैसे प्राप्त करें, यह भी हमें देखना है। तो इसके लिए एक मुख्य आधार है अमृत वेला। अमृत वेला यानी कि एकदम सुबह का जो समय होता है वो होता है अमृत वेला। सहनशीलता के महत्व को ध्यान में रखते हुए अमृत वेले में शिव बाबा से इस गुण की दिव्य किरणों को आत्मा में महसूसता के साथ भरते रहें। जब तक कि आत्मा इसका स्वरूप न बन जाए, इसके साथ संकल्प भी लें कि आज सारा दिन सहनशील बनकर रहना है और सायंकाल में बैठकर चार्ट में चेक भी करें कि कितनी सफलता मिली। सर्वशक्तिमान आत्मा बाप की याद से ही सहन शक्ति व कोई भी शक्ति आत्मा को प्राप्त हो सकती है, इसलिए याद को बढ़ाते रहना चाहिए। जब तक कि निरंतर याद ना बन जाए, यदि हम याद में हैं तो किसी भी परिस्थिति को सहज ही सहनशील होकर पार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है सहनशीलता ही सफलता का आधार है। एक तरफ हम देखते हैं कि सहनशीलता में ये भी हमें देखना हिसाब किताब का चुकतू होना। कोई भी व्यक्ति हमें कटु वचन बोलता है, अपमानित करता है, तो समझना चाहिए कि पीछे का कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। यदि हम सहन नहीं करते बल्कि क्रोध में आकर के उल्टा बोल देते हैं तो हिसाब किताब बढ़ जाएगा। इसलिए निंदा आदि को समझना चाहिए कि हम पर फूल बरस रहे हैं, और यह भी समझना चाहिए कि वह माया की जो है माया के वशीभूत है। क्रोध अहंकार आदि के प्रभाव में आकर यदि हम उसकी आलोचना करते तो हमने माया से हार खा ली। हाँ, यहाँ पर हमें देखना है हमारा कर्तव्य तो उस व्यक्ति तथा अपने को माया से मुक्त करना है। याद रहे कि लड़ाई तो माया से है ना, हाँ, ना कि किसी व्यक्ति से। इस प्रकार हम माया पर जीत पाते जाए तो सहनशीलता का गुण अपने आप ही आएगा। शिव बाबा कहते हैं कि मरजीवा अर्थात पुरानी देह व दुनिया से जैसे मर चुके हैं, मरा हुआ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मरजीवा बनना मरना नहीं बल्कि माननीय बनना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है कि कब तक हम सहन करें। कुछ लोग बार बार तंग करते व सताते रहते हैं। प्रश्न आता है कि कब तक सहन करें। यदि अपने आपने अगर उसे 9 बार सहन किया परंतु 10वीं बार सहन नहीं किया तो बाप दादा कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। बाबा हमें क्या कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। अतः हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम संगम योग पर सहन करना ही हमारा क्या है कि हम समझे कि हम महान कार्य हमारा संपन्न हो रहा है, सहन करना पड़ता है। यह न समझकर हमें समझना है कि मैं बाप दादा यानी कि हम बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बाबा ने मुझे सहन करने में आज्ञाकारी रहने का हमें स्वमान दिया हुआ है, मैं उस स्वमान रूपी तिलक को धारण कर रही हूँ। समस्याओं को ड्रामा का नजारा समझ उड़कर पार करना होता है, यह झुकना नहीं उड़ना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है पूर्वज आत्मा जो होते हैं वो मानव सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग के शुरू में ही हम आत्माएं धरा पर देवी देवता के रूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस कारण तुम अन्य सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हो। लौकिक में जब बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ शरारत करते हैं तो वे नाराज नहीं होते तथा कोई बात नहीं बोलकर सहन करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सदा स्वमान में रहो, मैं पूर्वज आत्मा हूं, इससे आप ही सबका सब में अपने आप सहन होता रहेगा। सबकी बातें आप सहन करते रहोगे और सहनशीलता आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: यथाई तकतदुम तकतदुम तकतन्य।
1: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
3: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नए कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए वहां, वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसण भांडण आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
1: तेरे जैसा यार कहां,
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जात.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकत. त्याच सोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: डिटेक्टिव गोपीचंद. गोपीचंद के खास दोस्त सलीम की बेटी का आज जन्मदिन था. वह शहर का बड़ा रईस, व्यापारी और प्रसिद्ध व्यक्ति था. रीटा गोपीचंद से इस बारे में बात कर रही है.
5: सर, हमें सानिया की जन्मदिन की पार्टी में जाना है, आप तैयार है ना? सलीम जी ने खास तौर पर हमें बुलाया है.
4: वहाँ शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, वाकई यह अमीरों की पार्टी थी.
6: आइए आइए, चाहे कितने व्यस्त क्यों ना रहे, पर मुझे मालूम था आप आएंगे.
5: सानिया, आज तो तुम पूरे 10 साल की हो गई हो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई. अरे वाह, तुम्हारी अंगूठी तो बड़ी सुंदर है.
4: थोड़ी देर बाद सानिया हैरान परेशान रोती हुई अपने पापा सलीम के पास आकर उन्हें कुछ बताती है.
7: सलीम, क्या हुआ? कुछ देर से तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है?
6: सानिया की कीमती अंगूठी अचानक गायब हो गई, वो बच्चों के साथ खेल रही थी. गोपी, अंगूठी की कीमत 5 लाख है.
5: सर, सानिया ने मुझे बताया था कि उस अंगूठी में सोने पर हीरे का नग चढ़ा था, वह बड़ी भारी थी.
4: गोपीचंद की नज़र चारों ओर थी, अधिकतर लोग घर जा रहे थे. तभी सलीम की इंडस्ट्री के सुपरवाइजर मिस्टर शर्मा हड़बड़ाते हुए आते हैं.
8: सलीम साहब, आपको तो मालूम है मैं आज बैंगलोर जा रहा हूँ. मैंने केक का पीस रख लिया है, सोनिया ने बड़े प्यार से मुझे दिया है, मेरी ट्रेन ठीक 15 मिनट बाद ही है.
7: शर्मा जी, क्यों ना हम मिलकर केक खाएं? केक तो मैंने भी नहीं खाया है.
8: अरे भाई, यह सोनिया ने मुझे बड़े प्यार से दिया है, यह मैं आपको नहीं दे सकता.
7: अरे साहब, ऐसी भी क्या जल्दी, जरा अपना केक मुझे भी तो दीजिए.
4: सभी हैरत में थे कि अचानक ही गोपीचंद केक पीस छीन लेते हैं और उससे वे अंगूठी निकालते हैं.
7: सलीम, मैंने देखा शर्मा ने सानिया से कुछ अलग अंदाज में ही हाथ मिलाया था और इसी बीच इन्होंने अंगूठी पर हाथ साफ कर लिया होगा और अंगूठी को केक पीस के बीच में छिपाकर ले जा रहे थे. मैंने देखा कि इनके हाथ के केक पीस में एक कट था, तभी मुझे शक हो गया था.
5: कीमती अंगूठी के लिए इस लालची आदमी का मन डोल गया और यह चोरी पर उतर आया. 5 लाख की बड़ी रकम ने इसे चोर बना दिया.
4: चाहे चोरी कितनी भी हेरा फेरी से की जाए, पर अपना निशान जरूर छोड़ती है और इस निशान के जरिए ही डिटेक्टिव गोपीचंद चोर को पकड़ लेते हैं.
9: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
10: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे. हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा. इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी. लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ. सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी. ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू. आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन. कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद.
9: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी। हाँ समझा था मैं ये है खड़ी, लेकिन वहाँ कोई और थी। इनके लिए है मोहतरम।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो, वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

कहां गम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

उलझन, सच बन गया अगर उलझन, फिर कहिए जनाबे मन मेरी क्या खता। मुझ पर यकीन अब कम सही, मैं सादा दिल मुझ दिम सही, इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए।

आलम मोहब्बत का कहीं डर के रुका है। दरबार में शाहों के कहीं इश्क झुका है।

0: किथे जाने मैम साहब टैक्सी पकड़ी कॉलेज पहुंची सुन लिया लेक्चर राधा पढ़ते पढ़ते याद आ गया किसी से लंच का वादा खिसक के पहुंचे रेस्तरां जान में आई जो
1: हाय बेबी हाय बेबी हाय बेबी
2: हाय हाय
1: हाय हनी मैं तो बोर हो गया

ना मिले न मेकअप कदम कदम पर धोती वाले मोटी कोंधों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश खान चलेंगे।

तालियों के शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में वो खामोशी यूं ठहर गई थी जैसे कह रही हो, अब के न सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के न सावन बरसे।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो

0: ताली तक जुम्मे तक ताली तक जुम्मे तक धलाम तो तक जग तक ताली के नक तक नक तक जुम्मे तक नक नक जुम्मे तक नक नक जुम्मे तक नक नक जम तारीता जग तारीता जन जाने को गुदारी दागु तारी के ताली जम तारीता जग तारीता जन जाने को गुदारी दागु तारी के जम तारी जग तारी तक तक तक तक जुम्मे तक जुम्मे तक जुम्मे तक जम तारी जग तारी जाने जाने को तक जुम्मे तक जुम्मे तक जुम्मे तक तक जंग जुम्मे कड़े जग जुम्मे तक जुम्मे तक
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूका रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।